एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की श्रावण मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 5 अगस्त 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। दो दिन की बैठक में तीन प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं।

0: देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्ण प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेगी। पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही हैं। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्य भारतीय टीम हिस्सा लेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी समाचार दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आइए ईश वंदना से पहले करें देश वंदना समूह स्वरों में।

0: लता मंगेशकर के गाए इस भजन के साथ ही आज की आराधना आप संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है खेती की बात। आज खेती की बात में सामयिक सुझाव दिए जाएंगे शलजम की खेती के बारे में। वाचन स्वर है नंद कुमार यादव के।
1: किसान भाई हो बिहनिया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो आज हमन खेती किसानी के गोठ बात मा लेके पहुंचे हवन सलजम के उन्नत खेती के बारे मा जानकारी। आप मन तो जानते हो बरासी केसी परिवार ले आते सलजम हर जौन मा विटामिन ए विटामिन सी और विटामिन के ज्यादा मात्रा पाए जाते। हमर शरीर पर अब्बड़े सुघर होते जी और एकर खेती ना अब्बड़ कन राज्य में करे जाते। बिहार पंजाब हिमाचल प्रदेश हरियाणा तमिलनाडु हमर छत्तीसगढ़ और हमू मन करबो तो एक चेत रखना है 12-33 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आवश्यकता हर रहे। संगवारी हो माटी के घलाव चेत करे बर पड़ते। कई प्रकार के किस्म में तो हमन लगाथन फिर चेत रखना है भारी माटी है घनी है हल्का माटी है एकर ले बचाव कर लेन थोरकुन तो बने रही। माटी के पीएच मान हर 5.5-6.5 रहना चाहिए। अब सलजम लगाथन तो संगवारी हो चेत रखना है कौन प्रकार के किस्म लगाइन के तो उन्नत किस्म आते पूसा कंचन पूसा स्वेती पूसा चंद्रीमा गोल्डन बाल स्नो बाल पूसा स्वाणीमा ए नाव के किस्म मनना अब्बड़ सुघर होते। संगवारी हो आप मन सलजम की खेती के बारे में आज की गोठ बात सुना था तो भूया के तैयारी के चेत रखे बर पड़ते हमनला। खेत के बढ़िया ले 2-3 पैत जोताई ल कर लिहिन सरहा गलहा गोबर के जौन खातु है तेला 60-80 क्विंटल प्रति एकड़ के दर ले देवा थन तो बने रही थी। बुआई के बेरा हर जी अभी के बेरा हर सुघर हवय। आप मनला चेत रखना है पंक्ति के बीच जौन दूरिया है तेला 30-40 सेंटीमीटर के और पौधा के बीच दूरिया ला 6-8 सेंटीमीटर रख के बीजा ला 1.5 सेंटीमीटर के गहिला मा लगाना चाहिए। सलजम ला हमन सीधा चाहे मेढ़ मा कतार मा बोवाई ला कर सकथन। संगवारी हो बीजा के घलाव चेत रखना है। बीजा के मात्रा बर 2-3 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले सलजम के बीजा के आवश्यकता होते। जेला लगाए के पहले थीरम 3 ग्राम ला प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करके लगात हो तो सुघर रही। ऐसने खातू माटी के घलाव चेत करथन तो बढ़िया रही। जेमा जलवायु माटी के किस्म और उपजाऊ शक्ति के अनुसार हमन सरहा गलहा गोबर के खातू के संग मा नाइट्रोजन 25 किलोग्राम फास्फोरस 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले डालथन तो बनी रही थी। संगवारी हो खरपतवार के रोकथाम करे बर अंकुरण के 15 दिन के बाद छटाई के काम बुतला कर लेवे जेकर ले माटी मा हवादार बने रहते। कसी के संग मा हमन निंदाई गुड़ाई के काम बुतला कर सकथन। बोवाई के 2-3 हफ्ता के बाद 1 पैत निंदाई गुड़ाई ला जरूर करे। ऐसने संगवारी हो सिंचाई बर 3-4 पैत सिंचाई के आवश्यकता हर सलजम की खेती मा होते। जराई गलन के बीमारी के बचाव करे बर चेत रखना है। थीरम 3 ग्राम ला प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित कर लेवे। बुवाई के बाद 7-15 दिन नवा पौधा के आसपास माटी मा केप्टान

0: 200 ग्राम ला 100 लीटर पानी में मिला के छींचे जाते। संगवारी हो, ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके फसल ला लगाथन तो उपज हर और आमदनी हर ज्यादा बढ़ी। एकरे संग यही कहबो, जैसे किसान तय लेहे देहे वैसे झोक आशीष जी, अन्न धन से तुम्हार घर भरे जुग जीव लाख। बरीश जी राम राम, जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। रामचरित मानस गान प्रस्तुत है, गायक स्वर हैं रविंद्र सेठ का और संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषादराज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषादराज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फ्लैगशिप के अंतर्गत नव्याहन कार्यक्रम। इसमें आज जानकारी देंगे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अभियान की जिसने भारत के विकास को नई गति और नई दिशा दी है। यह अभियान है डिजिटल इंडिया। आज तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सुबह मोबाइल पर समाचार पढ़ने से लेकर ऑनलाइन भुगतान करने, पढ़ाई करने, सरकारी सेवाओं का लाभ लेने और दूर बैठे अपनों से वीडियो कॉल पर बात करने तक डिजिटल तकनीक ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। इसी परिवर्तन को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य है प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना तथा देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाना। श्रोताओं, पहले किसी प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड, आय या जाति प्रमाण पत्र जैसी सरकारी सेवाओं के लिए कई बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज इनमें से अनेक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इससे समय की बचत हुई, पारदर्शिता बढ़ी और लोगों की को सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक आसानी से मिलने लगी है। डिजिटल इंडिया का लाभ केवल शहरों तक सीमित नहीं है। गाँवों में भी इंटरनेट और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंच रही है। अब ग्रामीण नागरिक भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इससे ग्रामीण भारत भी तेजी से डिजिटल भारत की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया ने कई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। विद्यार्थी अब ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालयों और शैक्षणिक पोर्टलों के माध्यम से कहीं भी और कभी भी अध्ययन कर सकते हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए यह सुविधा एक बड़ी सुविधा साबित हुई है। शिक्षकों के लिए भी आधुनिक तकनीकियों का उपयोग करके पढ़ाना पहले से अधिक सरल और प्रभावी हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी डिजिटल तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज कई अस्पताल ऑनलाइन पंजीकरण, टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। इससे मरीजों को समय पर परामर्श मिल रहा है और अनावश्यक यात्रा की परेशानी भी कम हुई है। किसानों के लिए भी डिजिटल इंडिया एक बड़ा सहारा बनकर सामने आया है। वे मोबाइल के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान, कृषि विशेषज्ञों की सलाह, आधुनिक खेती की जानकारी और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इससे खेती को अधिक वैज्ञानिक और लाभकारी बनाने में सहायता मिल रही है। डिजिटल भुगतान ने भी हमारी जीवन शैली में बड़ा बदलाव किया है। आज चाय की छोटी दुकान से लेकर बड़े शोरूम तक लगभग हर जगह डिजिटल भुगतान स्वीकार किया जा रहा है। इससे लेन देन तेज, सुविधाजनक और अधिक पारदर्शी हुआ है। नकदी रखने की आवश्यकता कम हुई है और आर्थिक गतिविधियों में भी गति आई है। हालांकि डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही सावधानी की भी आवश्यकता है। हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना OTP, बैंक खाता, ATM पिन या पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए और केवल विश्वसनीय वेबसाइटों पर और मोबाइल ऐप का ही उपयोग करना चाहिए। डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा डिजिटल इंडिया की सफलता के दो महत्वपूर्ण आधार हैं। प्रिय श्रोताओं, डिजिटल इंडिया केवल सरकार का कार्यक्रम नहीं बल्कि हम सभी की सहभागिता का अभियान है। जब प्रत्येक नागरिक डिजिटल तकनीक का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करेगा तभी इस अभियान का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। आइए हम स्वयं डिजिटल रूप से जागरूक बने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी डिजिटल सेवाओं का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित करें और साथ में संकल्प लें कि तकनीक का उपयोग केवल सुविधा के लिए ही नहीं बल्कि शिक्षा, पारदर्शिता, विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए भी करेंगे। एक जागरूक डिजिटल नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव रख सकता है। अभी आप सुन रहे थे फ्लैगशिप कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रम। सुबह 7:05 पर सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। 7:30 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा यादों के झरोके से। 8:30 पर छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई का प्रसारण किया जाएगा। आज आप सुनेंगे ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथियों के साथ ही पद्मलोचन जायसवाल और साथियों के गायक को छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

सुबह 10 बजे फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद आप सुनेंगे। प्रस्तुति होगी सुनील चिपड़े की। सुबह 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण किया जाएगा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, सुबह 11:30 से 11:55 तक और फिर दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण किया जाएगा। शाम 5:05 पर चित्रपट संगीत का आनंद आप लेंगे।

शाम 5:35 पर युवा जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसमें आज की बात में चर्चा होगी अपने स्वास्थ्य की देखभाल विषय पर। आप सुनेंगे युवा पसंद, साथ ही सवाल जवाब होंगे। स्तनपान सप्ताह पर चर्चा होगी, प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की। ईमेल करें गीत सुने फरमाइशी, फिल्मी गीतों का आनंद आप लेंगे शाम 6:20 पर और शाम 7:00 से 7:30 तक।

शाम 7:30 पर बीरा के गोट का विषय होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल सुरक्षा। सफल कृषक भेंट क्रम में ग्राम सिंगारवाड़ी घुटकू विकासखंड तखतपुर जिला बिलासपुर की स्थल ध्वन्यांकन पर इस आधारित रिकॉर्डिंग एवं संपादन आकाशवाणी गांव में इस कार्यक्रम में सुनेंगे। संपादन है महेंद्र कुमार साहू का, प्रस्तुति एवं संयोजन है डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। रात्रि 8:00 दिल्ली से संसद समीक्षा रिले की जाएगी। रात्रि 10:00 संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण दिल्ली से किया जाएगा। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:15 से 10:00 तक। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 हुए हैं। कुछ ही देर में संस्कृत और हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा जन्म मृत्यु पंजीकरण

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया पर हमले की भारत ने कड़ी निंदा की है। हमले

0: के बाद यह जहाज कल यमन तट से दूर लाल सागर में डूब गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सभी 13 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और चालक दल की सुरक्षा के लिए यमन के अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने यमन के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
1: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति दी थी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। ये नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इसी राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही कल नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के कारण, पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद की कार्यवाही आज दिन में 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषित करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत सहित भारत के शीर्ष खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी समाचार दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

कुछ पल खुशी के चुरा लो, भीड़ में भी दिल को किनारा दो, हर सांस में मुस्कान भरो, हर दिल को हर दिन को त्योहार सा सजा लो। हर नया सवेरा अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का, और सबसे बढ़कर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करने का। आज सुबह सुनने वाले सभी दोस्तों को ऐश्वर्य का नमस्कार, अभिवादन। सुबह की सुनहरी बेला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। एक नगर में एक बुजुर्ग शिक्षक रहते थे। उनके पास बहुत धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। एक दिन एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुजी, मेरे पास अच्छी नौकरी है, घर है, गाड़ी है, फिर भी मन बेचैन रहता है, खुशी आखिर मिलती कहाँ है। शिक्षक थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने साथ बगीचे में चलने के लिए कहा। वहाँ एक छोटा सा पौधा था। शिक्षक ने उसे पानी दिया और बोले, देखो, यह पौधा हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इसे न बड़ी बड़ी बातें चाहिए, न कोई विशेष सुविधा, बस समय पर पानी, थोड़ी धूप और थोड़ा स्नेह। फिर उन्होंने कहा, मन भी इसी पौधे की तरह है, यदि इसे हर दिन कृतज्ञता, प्रेम और संतोष का जल मिलता रहे तो यह खुशियों से भर उठता है, लेकिन यदि हम केवल बड़ी उपलब्धियों का इंतजार करते रहें तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। युवक कुछ देर मौन रहा। उसने चारों ओर देखा, पेड़ों पर चहकते पक्षी, ठंडी हवा, खिलते फूल और उगते सूरज की सुनहरी किरणें। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशी कहीं दूर नहीं, वह तो उसके आसपास ही बिखरी हुई थी। तो कहानी का सार ये है दोस्तों कि सचमुच खुश रहने के लिए बहुत कुछ पाने की नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे पहचानने और उसके लिए आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन को सबसे बड़ा उत्सव बना देती हैं।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के भाव को मन में रखते हुए चलते हैं उमा शंकर पांडे जी के पास आज के ट्रैफिक अपडेट के लिए।
1: नमस्कार साथियों, यातायात संबंधी दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साहब बिलासपुर के साथ मैं हूं उमा शंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर बिलासपुर की सभी सड़कों, सभी चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी मार्गों में सभी प्रकार के वाहन अपनी स्वाभाविक गति में आवागमन कर रहे हैं, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, जब भी सड़क में हो, अपनी और सड़क में चल रहे प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, प्रायः देखने में आता है शहर के विभिन्न चौक में जब लोग रेड सिग्नल में रुकते हैं, यदि रेड से ग्रीन सिग्नल होने में लगभग 60 सेकंड का समय शेष है तो कुछ लोग अपनी गाड़ी बंद कर समय का सदुपयोग करने अपने मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि रेड से हरा सिग्नल होने का पता ही नहीं चल पाता और उन्हें यह आभास तब होता है जब पीछे खड़े वाहन चालक का लंबा हॉर्न होता है, तब हड़बड़ाकर वाहन स्टार्ट कर आगे बढ़ते हैं। यदि ये वाहन दो पहिया है तब जल्दबाजी में चालक जोरदार किक मारता है। कई बार पैर यदि गीला है तो पैर के फिसलने से चोट भी लगती है। इतना ही नहीं, कभी कभी गाड़ी गियर में है तो वह झटके में आगे भी बढ़ जाती है और यदि गाड़ी चालू ही नहीं हुई तब तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ऐसे स्थान में सजग रहें, तन एवं मन दोनों से उपस्थित रहें, क्योंकि देर करने से विवाद की स्थिति भी बनती है। कारण आपके पीछे खड़े वाहन वाले को हरा सिग्नल होने के बाद एक सेकंड भी रुकना एक युग के समान लगता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि

0: पीली लाइट के दौरान ही तैयारी कर लें और समय पर आगे बढ़ें। मित्रों, सुरक्षित यात्रा के लिए दो वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी का होना नितांत आवश्यक है, अर्थात आपके सामने चल रहे वाहन से इतनी दूरी बनाकर चलें कि विषम परिस्थिति में यदि सामने वाला वाहन चालक एकाएक अपना वाहन रोकता है तो समय रहते आप भी अपना वाहन रोक सकें। प्रायः लोग जल्दी के चक्कर में बिना सुरक्षित अंतर रखे वाहन चलाते हैं, यही कारण है कि अक्सर ये वाहन आपस में भिड़ जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: और आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।
3: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह ऐश्वर्य के साथ। दोस्तों, कहा गया है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ नहीं बल्कि सही नज़र चाहिए। यदि मन संतुष्ट हो तो साधारण दिन भी उत्सव बन जाता है। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने उगते सूरज को कब ध्यान से देखा था? आखिरी बार किसी अपने से बिना किसी कारण सिर्फ हालचाल कब पूछा था? आखिरी बार किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर उसके चेहरे पर मुस्कान कब देखी थी? दोस्तों, ये छोटे छोटे पल ही जीवन को बड़ा बनाते हैं। बरसात का मौसम भी हमें यही सिखाता है। बादल जब बरसते हैं तो केवल धरती ही नहीं, मन भी भीग जाता है। पेड़ पौधे फिर से हरे उठते हैं और प्रकृति मानो नया जीवन पा लेती है। शायद इसीलिए कहा गया है कि प्रकृति के सबसे अच्छे शिक्षक मौन होते हैं। जीवन में चुनौतियाँ आएंगी, कठिन दिन भी आएंगे, लेकिन यदि उम्मीद और मुस्कान साथ हो तो रास्ते आसान से लगते हैं। दोस्तों, हम अक्सर बड़ी सफलताओं के पीछे दौड़ते दौड़ते उन अनमोल पलों को भूल जाते हैं जो बिना किसी कीमत के हमें खुशियाँ दे जाते हैं। सुबह की ठंडी हवा, खिड़की पर दस्तक देती बारिश की बूंदें, चाय की प्याली से उठती भाप, किसी अपने की मुस्कान या किसी बच्चे की खिलखिलाहट, यही तो जीवन की असली पूंजी है।

दोस्तों, आज जब अपने काम पर आप जाएं या घर के कामों में व्यस्त हों, तो एक छोटा सा संकल्प जरूर लें, किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का। यकीन मानिए, किसी और को दी गई खुशी कई गुना

होकर हमारे जीवन में लौटती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सुबह कार्यक्रम से ऐश्वर्य को दें अनुमति। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ हो और छोटी छोटी खुशियों से भरा रहे।

0: श्रोताओं, इसके साथ ही आइए कुछ संदेश भी सुनते हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
4: गीत मेरे होठों को भीग गया कोई।
1: कभी कोई किस्सा याद आता है। कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी और एफएम चैनल से हर रविवार सुबह 10 बजे।
7: सुनिए

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों के झरोखे से। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी बिलासपुर पर आप सुन रहे हैं यादों के झरोखे से। श्रोताओं, हर सुबह एक नई याद लेकर आती है और हर पुराना गाना उस याद को ताजा कर देता है। श्रोताओं, इस गाने में शिकायत भी है और अपनापन भी, ठीक वैसे ही जैसे सुबह सुबह नींद से उठना मन करता नहीं पर उठते ही अच्छा लगता है। तो लीजिए सुनिए फिल्म दो कलियां फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल साहिर के हैं और धुन बनाई है रवि ने।

श्रोताओं, रात भीगी थी पर सुबह महक रही है। इस गाने में रात की खुमारी और सुबह की शांति दोनों है। आंख बंद कर कर सुनिए, लगेगा कोई पास बैठा है। आइए सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, पुराने गानों की बात ही अलग है। उनमें वादे नहीं होते थे, एहसास होते थे, जैसे सुबह की पहली किरण बिना कुछ कहे सब ठीक कर देती है। तो आइए सुनते हैं ताजमहल फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल साहिर के हैं और संगीत रोशन।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: यादों के झरोके से पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं श्रोताओं, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। मोहब्बत का मतलब भी कभी कभी सिर्फ साथ चलना होता है, बातें जरूरी नहीं। सुबह की सैर भी तो एक ऐसी ही होती है। तो आइए सुनते हैं मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत। राजा मेहंदी अली की रचना है और संगीत मदन मोहन का।

श्रोताओं, नजर का रूठना भी प्यार का एक हिस्सा है, और मनाना वो तो सुबह की चाय से भी मीठा लगता है। अब देखिए ना, फिल्म काला पानी में मधुबाला देवानंद जी को कैसे मना रही हैं।

श्रोताओं, कुछ रिश्ते शब्दों के मोहताज नहीं होते। एक नज़र काफ़ी होती है। सुबह की पहली धूप भी तो बिना कुछ कहे सब कह जाती है। तो आइए सुनते हैं दिल एक मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत। हसरत जयपुरी की रचना है और शंकर जयकिशन का संगीत।

0: इस गीत के साथ ही यादों के झरोके से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, कुछ ही देर में दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
2: ₹7,000 का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार, लाल सागर में यमन तट के पास

0: हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित, भारत ने हमले की कड़ी निंदा की। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजीसी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु को नवीं वरीयता मिली। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को 5वीं वरीयता। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय ध्वज वाला वाणिज्यिक पोत एमएसवी फैज नूरे औलैया कल यमन तट के पास हमले के बाद लाल सागर में डूब गया। पोत पर सवार सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 13 भारतीय थे।
1: भारतीय ध्वज वाला यह वाणिज्यिक पोत सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहा था। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया, यमन के जल क्षेत्र के पास मिसाइल हमले के बाद पोत लाल सागर में डूब गया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत इस अकारण हमले की कड़ी निंदा करता है और हमारे लोगों की सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले की लगातार घटनाएं चिंताजनक है। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना आया जाना बंद होना चाहिए और क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से निर्बाध नौवहन और व्यापार शीघ्र बहाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों की हिंसा ही वहां की वास्तविकता है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि अगले महीने 12 और 13 तारीख को भारत की मेजबानी में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को आमंत्रित किया गया है। भारत इस साल ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह बैठक आज और कल भोपाल में आयोजित होगी।
3: भोपाल में आज से ब्रिक्स देशों की बड़ी सांस्कृतिक बैठक शुरू हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ये आयोजन 8 अगस्त तक चलेगा। इसमें ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह और संस्कृति मंत्रियों की बैठकें होंगी। इसके चलते भोपाल को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तरह सजाया गया है। इस आयोजन से सांस्कृतिक संवाद बढ़ेगा और सदस्य देशों के बीच सहयोग मजबूत होगा। पहले 2 दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी जबकि आखिरी 2 दिन मंत्री पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में 2 अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
4: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा कर रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय

0: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवीं वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17 से 23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के दो दो खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को एसओपी बनाए आरबीआई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India flagship sinks after attack in Red Sea. All 13 Indian sailors rescued. India condemns attack on commercial vessel. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy review this morning. Supreme Court asks RBI to prepare SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. Online registration for first round of NEET UG counseling 2026 to commence today. IMD warns of very heavy rainfall in Assam and Meghalaya today. And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Fair

अभी ये गीत आपने सुना ममता चंद्राकर, कुलेश्वर ताम्रकार और साथियों के साथ। और आइए अब सुनते हैं पद्मलोचन जायसवाल और साथियों के गाए कुछ छत्तीसगढ़ी लोकगीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का अमराई कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे थे ये गाना जाने तू या जाने ना फिल्म से। वैसे ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसके फैंस तो बहुत सारे बने थे, लेकिन इस फिल्म से ज्यादा फैंस बने इसकी एक्ट्रेस यानी जेनेलिया डिसूजा के। आज विविध भारती पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जेनेलिया डिसूजा का बर्थडे। फोर्स फिल्म से आप सुन रहे हैं गाना के और सुचित्रा की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, हैरिस जयराज का संगीत।

भड़क दिल धड़क धड़क गया अटक अटक ना माना लटक गए उलझ गए कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना वो नील अंग सा रूप रंग लंग समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन में दंग और तंग तंग मैं

अतरंगी फिल्म से, अतरंगी रे फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना हरिचरण शेषाद्री, श्रेया घोषाल, सूर्यांश, स्वागत राठौड़ और सार्थक कल्याणी की आवाजों में इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान का संगीत। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। अभय जोधपुरकर की आवाज में जीरो फिल्म से गाना इरशाद कामिल के बोल, अजय अतुल का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना मेट्रो इन दिनों फिल्म से। पैपॉन की आवाज में गालिब और संदीप श्रीवास्तव के बोल, प्रीतम का म्यूजिक।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

उनके अभिनय उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही, उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा, फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों की गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

मुंबई के एक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: हर लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यू मी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यू मी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

0: काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा, सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी।
1: मुझ में

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म माय नेम इज खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी समीक्षकों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी।

अभी विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में रायपुर से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज मंत्रालय में होगी। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में होगी। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण मेडिकल परामर्श समिति एमसीसी द्वारा आज से शुरू किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। पंजीकरण शुरू होने से पहले संस्थानों ने कल संभावित सीट मैट्रिक्स का सत्यापन किया। उम्मीदवार 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 14 अगस्त तक चलेगी। प्रथम चरण की काउंसलिंग में 18 अगस्त को ऑनलाइन पंजीयन कराने वाले अभ्यर्थियों को पीएटी परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार

पर प्रोविजनल सीट और महाविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी काउंसलिंग संबंधित जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। सूरजपुर जिले की मदननगर ग्राम पंचायत में सरपंच की बर्खास्तगी के विरोध में पंचायत के उप सरपंच समेत सभी 20 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को अपना त्याग पत्र सौंपते हुए प्रशासन की इस कार्रवाई को एक पक्षीय बताया है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रतापपुर क्षेत्र के मदननगर ग्राम पंचायत में हुए विवाद और हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने सरपंच सुंदरीबाई को पद से हटा दिया था। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 2-3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जोरा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जशपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र महिला अभ्यर्थी 3 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। चयनित प्रतिभागी अपने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 से 7 दिवसीय शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राएं करेंगे। और बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार को निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे 2 मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज मंत्रालय में होगी। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

0: अभी प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। प्रस्तुति है सुनील चिपड़े की।
1: हेलो आपकी पसंद।
2: नमस्ते जोहार, सावन की फुहारों के साथ हमारी और आपकी बातचीत का कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। मैं हूं सुनील चिपड़े, आपका कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमारी और आपकी बातचीत को रिकॉर्ड किया हमारे तकनीकी सहयोगी सिल्वेरियस लकरा जी ने। तो हम दोनों की तरफ से जोहार स्वीकार कीजिए और शुरू करते हैं कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद।
3: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी तिरासरा कालजी से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
2: इंद्रभान जी कैसे हैं?
3: ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, जीती पुरी में हूँ सर। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। यहाँ मौसम बादल किया है, उमस गर्मी यहीं पे लग रहा है सर, तो ठंडा ठंडा लगता है। और जंगली मौसम के बीच में बोलता हूँ सर, तो ठंडा हवा लगता है तो बढ़िया लगता है। इस टाइप का मौसम चल रहा है।
2: मौसम सुहाना है वहाँ का मतलब?
3: जी मौसम सुहाना है, चलता है तो अच्छा लगता है, तो उमस
2: हाँ,
3: ऐसा लगता है कि पानी गिरने का कगार में है, लेकिन क्या गिरेगा ये कोई कहानी।
2: तो चिरमिरी के पहाड़ों पे बादल टकरा नहीं रहे मतलब?
3: जी सर।
2: चलिए उम्मीद करते हैं कि चिरमिरी के पहाड़ों पे बादल टकराएं और बरसात हो। बताइए आज कौन सा गीत सुनेंगे इंद्रभान जी?
3: फिल्म का नाम है फिल्म पागल, और जी के बोले कोई लड़की है जब वो हंसती है

0: हेलो सर जी, नमस्कार।
1: कैसे हैं?
0: जी सर, अच्छे हैं सर। सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का पूजा पाठ में व्यस्त हैं सर।
1: बिल्कुल, भोले बाबा की पूजा अर्चना अरोर चल रही है, भजन कीर्तन चालू है।
0: हाँ सर, है करना। हमारे गांव का एक जो मंदिर में ना रामायण,
1: अपनी आस्था प्रकट करने के ये अलग अलग तरीके हैं। भजन कीर्तन, सांगीतिक नमन करते हैं, संगीत के द्वारा उनको नमन करते हैं, ये एक अच्छी
0: और
1: बात है।
0: क्या है सर, आज का बहुत परिवर्तन हो गए हैं सर। आने आने धार्मिक शर्म मानते जरूर, पर जो गाना बजना है, हरि कीर्तन है, ये रामायण है, वो बहुत कम हो चुका है सर।
1: हाँ, हमारी आस्था के केंद्रों में भी बहुत अलग अलग तरह के प्रभाव आन पड़े हैं, लेकिन फिर भी
0: जी सर,
1: हम ये जारी रखें, आराध्य को याद करने के लिए सांगीतिक प्रार्थना हम जारी रखें। बताइए, गीत कौन सा
0: जी सर।
1: सुनवाएं?
0: और सर मैं एक बात है और बोलना चाहता हूँ सर।
1: जी बताइए।
0: जैसे सर सावन का महीना भी चल रहा है, तो मैं श्रोताओं से और जितने भी माता बहना बच्चों से मैं विनती करना चाहता हूँ सर। अपने नाम से, अपने माँ के नाम से, अपने बाप के नाम से कम एक पेड़ लगाना जरूरी है सर।
1: जी बिल्कुल, अपने पूर्वजों के नाम पे पेड़ लगाएं और उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा।

0: अच्छा करें, उसको उन्नति दें।
1: हाँ सर, हाँ।
0: गीत तो बता ही दीजिए, साथ में अपना नाम।
1: तो मैं गीत को बताना चाहता हूँ सर। फिल्म का नाम है शिव महिमा। जी सर, उसी का कोई भी गीत सुना दीजिए सर।
0: ठीक है, शिव महिमा का ये गीत आप तक पहुंच रहा है, और आपसे आखिरी गुजारिश ये है कि अपना नाम बता दीजिए।
1: अरे मैं तो नाम ही अपना बताना भूल गए सर।
0: नहीं, आपको लोग सुनते हैं, आपका नाम जानते हैं, फिर भी जो नए श्रोता हैं उनके लिए अपना नाम कह दीजिए।
1: जी, मैं जूनापारा से राम कुमार जायसवाल बात कर रहा हूँ सर।
0: तो राम कुमार जी, गीत आप तक पहुँच रहा है।

0: हेलो
1: नमस्ते, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद।
0: जी, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ। सिसोदिया जी, आप कैसे हैं?
0: जी, बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
1: क्या बात है। उज्जैन में जो अभी 3 तारीख को पहली यात्रा थी, क्या कहते हैं उसको?
0: जी, शाही सवारी।
1: हाँ ना, शाही सवारी। तो शाही सवारी निकलती है सावन के पहले सोमवार में।
0: जी, पहले सोमवार से लगा के, मतलब आपको बताऊं, भादवा का जो आखिरी पहला सोमवार होता है ना, वहाँ तक निकाली जाती है, मतलब सवारी निकालती है शाही सवारी के रूप में।
1: अच्छा, तो शाही सवारी में क्या चीजें वहाँ होती है?
0: जी, शाही सवारी में आपको बताना चाहेंगे, जैसे हर एक मंदिर होते है ना, तो अलग अलग मंदिर वाले मतलब अपनी अपनी झांकियाँ लेके निकालते हैं।
1: भजन प्रेम सिंह जी, आपकी आवाज में बहुत खरखराहट आ रही, थोड़ा एक जगह खड़े हो जाइए। हवा की आवाज है या क्या चीज है वो गड़बड़?
0: हाँ जी, हवा की आवाज है, अभी खेत पे काम कर रहे हैं।
1: हाँ, थोड़ा सा आप ऐसा पेड़ की आड़ में ऐसा कुछ आड़ ले लें या बैठ जाए।
0: जी बिल्कुल सर, ले लिया है।
1: तो ये
0: तो बताना चाहेंगे, जिसमें हर एक मंदिर वाले अपने अपनी झांकियाँ निकालते हैं, और भजन के साथ में, डीजे के साथ में बाबा की सवारी निकाली जाती है।
1: अच्छा, शिव बाबा की सवारी निकलती है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अभी तो वहाँ काफी भीड़ होगी, शाही सवारी को देखने के लिए भी लोग जाते हैं, श्रद्धालु सावन के महीने में वैसे भी बढ़ जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत सारे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कांवड़ यात्रा लेकर भी आते हैं। और मतलब आपको बताओ, पूरा महीना श्रद्धालुओं से भरा रहेगा, उज्जैन में बहुत दूर दूर से मतलब श्रद्धालु आते हैं।
1: तो उज्जैन लोगों से, श्रद्धालुओं से ठसा ठस भर जाता होगा।
0: जी बिल्कुल।
1: प्रेम सिंह जी बताइए,
0: और एक बात और बताना चाहेंगे आपको। जैसे कि श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं ना, उनके लिए काफी अच्छी व्यवस्था करी हुई है यहाँ पे प्रशासन ने। दूर दूर तक मतलब ट्रैफिक जाम के एरिया होते हैं ना, वहाँ पे मतलब ऐसे यातायात पुलिस खड़े कर दिए गए हैं, और सड़कें काफी चौड़ी कर दी गई है, और जगह जगह पे ऐसे बोर्ड लगा दिए गए हैं जो दर्शाते हैं कि महाकाल मंदिर इधर है, मतलब
1: संकेतों की पूरी तरह व्यवस्था है।
0: हाँ जी, इससे मतलब काफी मतलब श्रद्धालुओं को मतलब है ना असुविधा मतलब होने से मतलब बच जाते हैं।
1: जी, तो प्रेम सिंह जी बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे इस बार?
0: जी, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन गाने के बोले, हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।

0: सर नमस्कार
1: जी। जी नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
0: सावतपुर से ऋषि सेन बोल रहा था सर। सुनील सर नमस्कार।
1: नमस्कार, कैसे हैं ऋषि जी?
0: बहुत बढ़िया हूँ सर।
1: सावतपुर का क्या हालचाल?
0: सावतपुर में सर खेती का काम चल रहा है, रोपा लगाने, दवाई वाई छिड़काव करना, ये सब काम चल रहा है।
1: तो रोपा खरीद के ला रहे हैं कि पहले खुद का बोया हुआ रोपा है?
0: खुद का बोया हुआ रहता है सर। यहाँ तो सावतपुर आपके रेडियो पे जैसे हम किसानवाड़ी सुनते हैं ना, उन्हीं के आधार पर जो कृषि विशेषज्ञ आते हैं उस तरह से हम खेती करते हैं सर।
1: वाह क्या बात है, मतलब हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, उनका फायदा आप तक पहुंच रहा है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और बताइए कैसे हैं और आज क्या खास आपके यहाँ हो रहा है?
0: अभी तो सब खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, चार महीने का खेती है तो पूरा अपना जोर खेती पे ही लगा देते हैं। नदी किनारे हैं सर, कुछ दिनों तक नदी में पानी नहीं था और जब थोड़े बहुत बारिश हुई तो नदी में अच्छे से भराव हो गए थे।
1: वाह, नदी में भराव हो गया। और जो खेतों के लिए काम करने के लिए लोग हैं, वो घर के लोग तो होते ही हैं, लेकिन बाकी और एक दूसरे की मदद के लिए लोग आते होंगे या मजदूर मिल जाते हैं वहाँ?
0: जी सर बिल्कुल मिल जाते हैं सर, आसपास के गांवों में भी आते हैं सर।
1: हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि लबालब पानी भरा रहे और हर जरूरत के समय आपके खेतों को पानी मिल जाए। गीत कौन सा सुनवाएंगे बताइए?
0: मंजिल फिल्म का गाना सुना था, रिमझिम गिर सावन सुलग सुलग जाए।
1: ये सावन की फुहार रेडियो के माध्यम से आप तक पहुँच रही है।

0: नमस्कार सर आपको।
1: जी जी नमस्कार, कौन सा बोल
0: रहे? मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से।
1: बाबू यादव जी, सावन के मौसम में घाट कैसा है?
0: सर देखिए, इस समय तो गंगा में पानी बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कांवरिया यहाँ इतना ज्यादा है कि आनंद आ रहा है। बाबा विश्वनाथ का धाम है तो यहाँ 4 से 5 लाख कांवरिये रोज दर्शन करने के लिए आते हैं।
1: तो इतनी बड़ी संख्या में कांवरिया आती है, वाराणसी के लोग हैं, उसका प्रबंधन कैसे कर पाते होंगे?
0: सर यहाँ का जो प्रशासन है वो बहुत दुरुस्त है।
1: अच्छा।
0: हाँ, जगह जगह डायवर्जन बना हुआ है और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम बना हुआ है और कोई परेशानी नहीं है। दर्शन के लिए भी सुविधाएं हैं, 4 गेट बने हुए हैं और बहुत बारी बारी सभी अपना दर्शन करते हैं और करीब करीब एक व्यक्ति को 4 घंटे तो लग ही जाते हैं।
1: घूम करके दर्शन करके आने में 4 घंटे का समय लग जा रहा है।
0: हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भोजन की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से है।
1: भोजन की व्यवस्था कैसे? अलग अलग जगह तंबू लगे हुए हैं, लंगर टाइप से लगे हुआ है?
0: जी, लंगर लगा हुआ है और वैसे मंदिर प्रबंधन जो है वो तो 12 महीने चलाता है।
1: अच्छा।
0: और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा नियम बना हुआ है, कोई भी ट्रैफिक यहाँ जाम नहीं होता है।
1: वाह, ये एक बहुत जरूरी चीजें हैं। जब हमारी आस्था का प्रवाह होता है उस समय दूसरों को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए ना?
0: ऐसा होता क्या है कि अगर सिस्टम सही नहीं बनाएंगे तो जो लोकल है उनको भी दिक्कत होगी ना।
1: हाँ हाँ,
0: इसलिए ये प्रबंधन बहुत अच्छा बना हुआ है कि किसी को दिक्कत नहीं है।
1: बाबा धाम की यात्रा के दौरान उसके आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे मोटे व्यवसाय हैं वो बढ़ जाते होंगे?
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं तो भुक्तभोगी हूँ, मेरी दुकान है तो असर तो पड़ता ही है।
1: भुक्तभोगी क्यों कह रहे हैं? तो व्यवसाय तो बढ़ता होगा ना बाहर के लोग आने से।
0: मतलब मैं उससे परिचित हूँ।
1: हाँ हाँ, वही मैंने कहा। चलिए, हमारी आस्था के साथ हमारा व्यवसाय, हमारा प्रबंधन चुस्त और दुरुस्त रहे, इस कामना के साथ गीत कौन सा सुनवाएंगे ये बताइए।
0: सर आज हमको सुना दीजिए, जुर्माना फिल्म का गाना एक है, गाना है कि तुम चले आओ सावन के झूले पड़े हैं।
1: सावन के झूले पड़े, गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद है और आकाशवाणी बिलासपुर से आप जुड़े हैं।
1: जी भैया जी नमस्ते, प्रणाम।
0: नमस्ते, किनकी आवाज है?
1: कोदवा साजा छत्तीसगढ़ से, रामसर गुप्ता बोल रही है।
0: कोदवा साजा?
1: हाँ भैया।
0: माहौल कैसा है और सावन कैसा है?
1: सावन तो ठीक है, माहौल तो अभी ठीक है, बाकी बरसात नहीं हुआ अभी, हफ्ता भर हो गया।
0: खेती किसानी और सारी
1: तो सब उधर तो भैया खेती किसानी सब कर ही रहे हैं, हम लोगों के पास तो नहीं भैया खेती किसानी, किसान लोगों के पास सब सब कर रहे हैं, उनका पानी भर हुआ है खेत में, कुछ कुछ में पानी नहीं है।
0: गीत कौन सा सुनेंगे बताइए?
1: आज भैया किशोर कुमार का जन्म दिवस है और उनकी याद में एक है कोरा कागज का है, मेरा जीवन कोरा कागज।
0: तो किशोर कुमार की क्या खासियत आपको लगती है?
1: भैया उनका जो पहले तो हीरो था, सदाबहार हीरो था, कॉमेडियन भी था, हंसी मजाक से भरपूर था। और उनका गीत भी वैसी रहता है, मन मोहने वाला, किसी को रुलाने वाला, किसी को हंसाने वाला गीत रहता है वो।
0: बड़े चुलबुले किस्म के रहे हैं किशोर कुमार जी।
1: हाँ भैया हाँ।
0: और हर तरह का काम उन्होंने किया है, उन्होंने हर भूमिका निभाई है, मतलब फिल्मी दुनिया की हर भूमिका, निर्माता से लेके निर्देशक से लेके गायक एक्टर, सारी चीजें, हर तरह के अभिनय।

0: रामकुशल पटेल बोल रहे हैं सर, हैदराबाद तेलंगाना ले।
1: तेलंगाना में इस समय मौसम कैसा है?
0: मौसम तो बरसात का चल रहा है सर, पानी दो दिन हो गए।
1: बरसात के मौसम में जहाँ आप काम कर रहे हैं ईंटे बनाने का या जो भी टाइल्स का, वो रुकता है क्या काम?
0: ज्यादा पानी में रुक जाता है सर, सब बाहर से मटेरियल अंदर चढ़ाना पड़ता है ना, इसके वास्ते जब जड़ी रहता है तो बंद हो जाता है।
1: अच्छा, हैदराबाद में क्या क्या आपने देखा है और क्या क्या देखने लायक है जो छत्तीसगढ़ के श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे?
0: यहाँ चार मीनार है सर, बहुत अच्छा है देखने को है तो। और यहाँ मोर बहुत है।
1: अच्छा,
0: नजदीक में रहता है, बिल्कुल पास पास में 20 फीट के अंतर में रहता है।
1: तो मोर देखना हो तो हैदराबाद की किस जगह पर जाएं?
0: हर जगह है सर, यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं मिलेगा मोर।
1: अच्छा, तो अभी
0: हाँ यहाँ जंगल एरिया बहुत है।
1: हाँ,
0: और बहुत

0: सुबह से शाम तक दिन भर देखते रहो मोर, जो बिल्ली में हम काम करते हैं उसी में आ जाता है।
1: बड़ा खूबसूरत नजारा होता होगा अभी बरसात में तो मोर आपके पास हो। उस खूबसूरत नजारे को याद करते हुए गीत कौन सा सुनेंगे बताइए?
0: नदिया का पार सुना दो सर, भवनी जी सब मेल के आ रहे।

0: हेलो
1: जी जी नमस्कार।
0: नमस्ते सर,
1: बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन साहब बोल रहे हैं?
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या आपने शब्द इस्तेमाल करिए अपने श्रोताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया। बहुत दिनों बाद आज फोन लगा है।
1: जी
0: बिल्कुल, काफी समय हो गया और इतना समय हो जाता है तो बड़ी बेचैनी होने लगती
1: है। हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे श्रोता अलग अलग तरह के हम से कनेक्ट हो और उनसे खूब सारी बातचीत हो सके, तो
0: मजा उसी में आता है। हर बार वही श्रोता अगर फोन लगाते रहें तो कम से कम एक महीने का तो अंतराल हर जगह होना चाहिए। और अब तो इतनी आकाशवाणी है, इतने साधन है फोन लगाने।
1: आपकी आवाज फिर कट रही है सत्येंद्र जी। हाँ अभी ठीक है। तो
0: हरियाली और रास्ता का,
1: हरियाली और रास्ता का सत्येंद्र जी, जालौन में अभी कैसा माहौल है, क्या

0: खास है जालौन में?
1: अरे देखिए, जालौन वैसे हमारा कृषि प्रधान है।
0: सत्येन जी, आपकी आवाज तकनीकी कारणों से जा रही है, लेकिन जितनी भी हमारी और आपकी बातचीत हो सकी है, आपने अपनी फरमाइश भी बता दी है हरियाली और रास्ता की, आप तक पहुँचा रहे हैं।

0: नेहरू और भाटापारा से तेज कुमार जायसवाल।
1: तेज कुमार जायसवाल,
0: तेज कुमार नेहरू और भाटापारा।
1: आप बहुत देर से लगा रहे हैं क्या, बार बार कट जा रहा है?
0: बहुत टाइम से लगा,

0: यस सर।
1: आप कहाँ पर हैं? चूंकि वहाँ से प्रॉपर हमको सुनाई नहीं दे रहा है।
0: मैं तो अपने घर में अपना पे।
1: तो बताइए तेज कुमार जी, क्या करते हैं?
0: मेरा छोटा सा दुकान है किराने का, तो उसी में बैठ के अपना जिंदगी चला। 1991 से खोले हुए दुकान को, उसी में जी को चला रहे हैं।
1: अच्छा,
0: 1991 से अपन रेडियो सुनते हैं, बट एक में 1991 का आपका रेडियो स्टेशन चालू है, तब से सुनते हैं बिलासपुर स्टेशन
1: जी। और ईमेल और चिट्ठियां भी भेजते हैं?
0: पत्र नहीं भेजूंगा, रेडियो तो सवेरे से सुनते रहता हूँ।
1: जी जी हाँ, बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो रेडियो सुनते तो हैं, पत्र और ईमेल भले ना करें लेकिन लगन से सुनते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। तो तेज कुमार जी, टेलीफोन की आवाज चली जाए उसके पहले आप गीत बता दीजिए।
0: दिल में याराना कहे सब भोले।

0: आकाशवाणी बिलासपुर भानुप्रसन्न से सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा यानी कि रविशंकर चंद्राकर दीवान का प्यार भरा नमस्कार।
1: रविशंकर
0: चंद्राकर
1: कैसे हैं चंद्राकर जी?
0: बहुत बढ़िया है, और पानी अभी अच्छा गिरा है, खेतों के लिए बहुत जरूरी है पानी। अभी खेतों में जो है रोपाई का काम चल रहा है मित्र जी।
1: तो रोपाई का दृश्य तो बड़ा खूबसूरत सा होता है, घुटनों तक पानी में डूबे लोग और हरियाली रोपते हैं।
0: जी, हम लोग की किसान की ये जिंदगी है। हम लोग अन्न उपजाते हैं, लोगों को अन्न दान देते हैं।
1: बिल्कुल, आप पूरी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी व्यक्ति है जो हम तक अन्न पहुंचाते हैं। तो रविशंकर जी, रोपाई का काम चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि फसल लहलहा के इस बार खूब बम्पर फसल हो।
0: जी सर जी,
1: अपनी पसंद का गीत बता दीजिए
0: जी। आज जीवन मृत्यु गीत सुनना है।

0: हेलो सर, नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार
0: जी, सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ सर, मैं से।
1: सुनील कुशवाहा
0: जी,
1: यहाँ से सुनील चिपड़े बोल रहा हूँ।
0: जी, धन्यवाद सर आपसे।
1: हम नाम सहनाव।
0: जी, आपसे तो पहली बात बात हो रही सर।
1: कुशवाहा जी कहाँ रहते हैं?
0: हम तो यही रहते हैं सर, मैयरे में रहते हैं।
1: मैयर?
0: जी, माता जी की नगरी में सर।
1: जी, माता जी की नगरी मैयर में रहते हैं।
0: जी,
1: मैयर का माहौल, सावन का महीना कैसा है?
0: जी, बहुत अच्छा है सर। अभी तो बारिश का सीजन है, तो अभी थोड़ा दर्शन करने के लिए पब्लिक कम आते हैं।
1: हाँ।
0: बाकी तो माता जी के नगरी में तो पब्लिक आते ही है, बहुत आते हैं मैं इधर सर दर्शन करने के लिए।
1: हाँ, मैयर की सीढ़ियाँ चढ़ने का और माता जी के दर्शन का अलग ही अनुभव होता है।
0: जी, बहुत अलग अंदाज है चढ़ने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो अभी तो बहुत सुविधा हो गई है सर।
1: हाँ, अलग अलग चीजें साधन उपलब्ध हो गए हैं, रोपवे भी है अभी तो वहाँ पर।
0: जी,
1: तो कितनी सीढ़ियाँ हैं वैसे?
0: जी सर, यहाँ सीढ़ी तो 1100 सीढ़ी है सर।
1: 1100 सीढ़ी चढ़ करके
0: जी
1: अपनी आस्था प्रकट करते हैं।
0: दर्शन होता है,
1: दर्शन होता है, आस्था प्रकट करते हैं। यही हमारी खूबसूरती है हमारे देश की, कि बहुत सारी विविधता है, बहुत सारे धर्म पंथ एक साथ मिलकर के काम करते हैं और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। कठिन भले हो, लेकिन बड़ी आसानी से अपनी श्रद्धा से लोग
0: कट जाता है।
1: बिल्कुल। तो बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे कुशवाहा जी?
0: जी, आज सुनवा दीजिएगा फिल्म राजा हिंदुस्तानी का, कोई सा भी सुनवा दीजिए, बहुत है उसमें गाने।

0: तो ये था कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद। तो आप यूं ही हमें कॉल करते रहिएगा और अपनी तरफ से रोचक बातें शेयर करते रहिएगा। हमारी और आपकी बातचीत के बीच बहुत सारे संदर्भ इस तरह से आते हैं कि जो हम सबके सीखने लायक होते हैं। तो बस हम यूं ही बात करते रहें, एक दूसरे के साथ सीखते सिखाते रहें और कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। तो नमस्ते स्वीकार कीजिएगा, ये था कार्यक्रम
1: हेलो

0: अभी फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद प्रस्तुत किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार साथियों, यातायात संबंधी दैनिक प्रसारण ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर बिलासपुर की सभी सड़कों, सभी चौक चौराहों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी मार्गों में सभी प्रकार के वाहन अपनी स्वाभाविक गति में आवागमन कर रहे हैं, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, जब भी सड़क में हो, अपनी और सड़क में चल रहे प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा का पूरा पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, प्रायः देखने में आता है शहर के विभिन्न चौक में जब लोग रेड सिग्नल में रुकते हैं, यदि रेड से ग्रीन सिग्नल होने में लगभग 60 सेकंड का समय शेष है तो कुछ लोग अपनी गाड़ी बंद कर समय का सदुपयोग करने अपने मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल में इतना खो जाते हैं कि रेड से हरा सिग्नल होने का पता ही नहीं चल पाता और उन्हें यह आभास तब होता है जब पीछे खड़े वाहन चालक का लंबा हॉर्न होता है, तब हड़बड़ाकर वाहन स्टार्ट कर आगे बढ़ते हैं। यदि ये वाहन दो पहिया है तब जल्दबाजी में चालक जोरदार किक मारता है, कई बार पैर यदि गीला है तो पैर के फिसलने से चोट भी लगती है। इतना ही नहीं, कभी कभी गाड़ी गियर में है तो वह झटके में आगे भी बढ़ जाती है और यदि गाड़ी चालू ही नहीं हुई तब तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए ऐसे स्थान में सजग रहे, तन एवं मन दोनों से उपस्थित रहे, क्योंकि देर करने से विवाद की स्थिति भी बनती है। कारण, आपके पीछे खड़े वाहन वाले को हरा सिग्नल होने के बाद एक सेकंड भी रुकना एक युग के

समान लगता है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि पीली लाइट के दौरान ही तैयारी कर लें और समय पर आगे बढ़े। मित्रों, सुरक्षित यात्रा के लिए दो वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी का होना नितांत आवश्यक है, अर्थात आपके सामने चल रहे वाहन से इतनी दूरी बनाकर चलें कि विषम परिस्थिति में यदि सामने वाला वाहन चालक एकाएक अपना वाहन रोकता है तो समय रहते आप भी अपना वाहन रोक सकें। प्रायः लोग जल्दी के चक्कर में बिना सुरक्षित अंतर रखे वाहन चलाते हैं, यही कारण है कि अक्सर ये वाहन आपस में भिड़ जाते हैं। इसलिए सतर्क रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद, प्रस्तुति थी सुनील चिपड़े की। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ आपका मित्र अजीत। उमंग कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर विचार भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरेलकर जी ने। लिखते हैं,
2: बदलना है अगर कल को तो आज को बदलना सीखो, किस्मत की राह न देखो, खुद आगे बढ़ना सीखो।
0: बहुत सुंदर और प्रेरणादायी विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ श्रोताओ, परिवर्तन आज को बदलने से ही आता है, क्योंकि कल कभी नहीं आता
2: जी।
0: आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी का।
2: नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी। स्वामी विवेकानंद जी पर केंद्रित कार्यक्रम उमंग सुना एवं पसंद आया, कार्यक्रम की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है।
2: आपने आगे लिखा है, कार्यक्रम इस तरह से प्रस्तुत किया गया जैसे स्वामी विवेकानंद जी साक्षात हमारी आंखों के सामने हैं एवं मन लगाकर हम इनका प्रवचन सुन रहे हैं। शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी एवं समस्त उमंग टीम का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
0: और राजा जी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी लिखते हैं, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: गुजरात गांधी ग्राउंड से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी।
0: तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज की चर्चा में।
2: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस दोस्त की जो हर समय हमारे साथ रहता है। जरा सोचिए,

0: कौन है वो जो इस आधुनिक युग में हमेशा लगभग हम सबके साथ रहता है, कोई रहे न रहे और उसके बिना अब रहा ही नहीं जाता।
1: हाँ, विमलेश जी, मुझे लगता है आप बात कर रही हैं मोबाइल फोन की।
0: बिल्कुल सही कहा जी जी अब तो लोग क्या विद्यार्थी भी मोबाइल के बिना ऐसे परेशान हो जाते हैं जैसे मछली पानी के बिना।
1: जी, बहुत हद तक आपका कहना बिल्कुल ठीक है। विमलेश जी, सच्चाई तो यह है कि कुछ तो रात को भी मोबाइल देखते देखते सोते हैं और सुबह भी मोबाइल देखकर ही उठते हैं।
0: लेकिन अजीत जी, सच्चाई तो ये भी है कि अब मोबाइल के बिना काम भी नहीं चल
1: जी,
0: सकता।
1: वो तो है।
0: हम किसी न किसी प्रकार से उस पर आश्रित हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमें एक बात अच्छी तरह से समझना होगा कि मोबाइल तो मात्र एक साधन है।
0: जी
1: महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। इसका सही उपयोग हमें आगे ले जाएगा और गलत उपयोग बिल्कुल पीछे।
0: जी
1: लेकिन प्रश्न है कि मोबाइल का सही उपयोग करें तो कैसे करें।
0: जी अजीत जी, चलिए मान लीजिए परीक्षा 1 महीने बाद है। विद्यार्थी मोबाइल उठाता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई के लिए गंभीर भी है। मोबाइल में परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन कक्षा चल रही है कि तभी एक नोटिफिकेशन आया, नई रील देखिए। अब बताइए जी जी क्या होगा।
1: फिर एक और रील या स्टोरी और आ जाएगी।
0: बिल्कुल, या सोशल मीडिया पर और कई संदेश आ जाएंगे, पता चला कि उसकी फोटो को बहुत से लाइक्स मिल गए हैं।
1: और एक मैसेज ये भी आ गया कि आपकी फोटो तो साहब बिल्कुल कमाल कर रही है, कुछ और फोटो डालिए। अब क्या होगा हम समझ सकते हैं।
0: देखते देखते 1 घंटा क्या कई घंटे गायब हो गए
1: और शायद पूरा दिन पानी में गया। तो अब सवाल ये है विमलेश जी कि क्या किया जाए।
0: देखिए, यही वो समय है जब पढ़ने वाले को संयम और दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है। एक नियम बनाना होगा, पढ़ाई के समय सोशल मीडिया बंद
1: और नोटिफिकेशन भी बंद।
0: बिल्कुल, नहीं तो हर 5 मिनट में मोबाइल बोलेगा,
1: क्या बोलेगा,
0: मुझे भी देख लो।
1: लेकिन सवाल ये है कि यदि मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ तो विमलेश जी, इंटरनेट तो ऑन है, ऐसे में सोशल मीडिया भी तो चलता रहेगा।
0: नहीं अजीत जी, आप मोबाइल छोड़े बिना इसे नियंत्रित भी कर सकते हैं, इसका भी उपाय है।
1: वो कैसे?
0: हर मोबाइल की सेटिंग में DND या डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड का विकल्प होता है, इस विकल्प को चालू कर दें। वहाँ आप अपनी इच्छा से फोन या सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन खोल या बंद कर सकते हैं। इससे इंटरनेट चालू रहेगा और आप पढ़ाई बिना बाधा के कर पाएंगे।
1: जी मित्रों, आप अलग से भी सोशल मीडिया के एप्स को उनकी सेटिंग में जाकर म्यूट कर सकते हैं।
0: जी,
1: आप एक काम और कर सकते हैं कि सारे एप्स के आइकन मुख्य स्क्रीन से हटाकर दूसरी स्क्रीन पर डाल दें, ताकि यदि संदेश आए भी तो आपको दिखाई ना पड़े।
0: तो श्रोता मित्रों, हम कहना चाहेंगे कि मोबाइल से मनोरंजन जरूर कीजिए, लेकिन इससे अधिक मोबाइल को सीखने का साथी बनाइए। और याद रखिए,
1: मोबाइल पढ़ाई का साधन बने, समय बर्बाद करने का नहीं।
0: पढ़ते समय, परिवार के साथ समय बिताते समय नोटिफिकेशन अवश्य बंद रखें।
1: रोज मोबाइल के उपयोग का समय तय करें और रात में देर तक मोबाइल न चलाएं और इंटरनेट का सुरक्षित और जिम्मेदारी से उपयोग करें।
0: मत भूलिए, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं।
1: क्या बात है, मोबाइल आपका सेवक है, मालिक नहीं। जिसने मोबाइल को नियंत्रित कर लिया,
0: समझिए उसने अपने भविष्य को भी नियंत्रित कर लिया।
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, मिलेंगे फिर एक
0: नई जानकारी के साथ।
1: श्रोताओं, आज हम प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है।
0: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको करना क्या है।
1: मोबाइल हमारा सेवक है, मालिक नहीं, इस विषय पर 1 या 2 पंक्तियों का एक स्लोगन लिख भेजिए। और भेज दीजिए अपना स्लोगन हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के कई विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो श्रोता, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है परीक्षा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कहानी पर आधारित है।

0: जिसे कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। कहानी के द्वारा ईमानदारी, परिश्रम, कर्तव्य निर्वहन और कार्यनिष्ठा के मूल्यों पर प्रकाश डाला गया है।
1: परीक्षा। बात उन दिनों की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उन दिनों देश में बहुत सारी रियासतें हुआ करती थीं। रियासतें यानी छोटे छोटे राज्य जो अंग्रेजों की अधीनता तो मानते थे लेकिन स्वतंत्र थे। ऐसी ही एक रियासत थी देवगढ़। राजस्थान की देवगढ़ रियासत बहुत ही मनोरम स्थान में बसी हुई थी। रियासत की जनता बहुत प्रसन्न थी। रियासत की खुशहाली के पीछे सबसे बड़ा योगदान था वहाँ के दीवान यानी मुख्य प्रशासक सरदार सुजान सिंह का। वे दयालु, नीति कुशल और बहुत अच्छे प्रशासक थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो चले थे। एक दिन की बात है।
2: महाराज की जय हो। दीवान श्रीमत सरदार सुजान सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं।
3: मिलना चाहते हैं इस समय? उन्हें आदर सहित कक्ष में ले आओ।
2: जी महाराज।
4: महाराज
3: आइए आइए दीवान साहब, बैठिए बैठिए। जी कहिए।
4: राजन, पिछले 40 वर्षों से आपके दास ने इस रियासत की सेवा की है। अब विचारा है कि इस सेवा से अवकाश ग्रहण करूं।
3: दीवान साहब।
4: महाराज,
3: हम आपका अनुरोध स्वीकार तब करेंगे जब आप हमारी एक शर्त मानेंगे।
4: आज्ञा दीजिए महाराज। कैसी शर्त?
3: शर्त यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पहले आपको राज्य के लिए एक ऐसा दीवान ढूंढ कर देना होगा जो आपकी तरह सुयोग्य हो।
4: जी महाराज, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
1: दूसरे ही दिन देश के सभी प्रसिद्ध समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर विज्ञापन छपा कि देवगढ़ रियासत के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। इस विज्ञापन का वही असर हुआ जो जंगल में आग का होता है। सैकड़ों लोग अपना भाग्य आजमाने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों से देवगढ़ चल पड़े। आइए अब आपका परिचय कराएं कुछ उम्मीदवारों से। आप हैं श्रीमान अ। आप सोकर उठते थे सवेरे 10 बजे, लेकिन जब से यहाँ आए हैं बेचारे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और बगीचे में टहलते हुए सूर्य देवता के दर्शन करते हैं। और आप हैं श्रीमान ब, स और ज। इनकी तो पूछिए मत। अपने घर में इन्होंने नौकरों की नाक में दम कर रखा था। ये वहाँ अशिष्टता के जीते जागते उदाहरण थे, लेकिन यहाँ तो ये बेचारे नौकरों को भी संबोधित करते समय आप, श्रीमन, महामना, मान्यवर और जनाब जैसे संबोधनों और उपाधियों का उपयोग किए बिना बात ही नहीं करते। और इनसे मिलिए, आप हैं श्रीमान क। आप फैशन के मारे हैं, लेकिन यहाँ सादगी की प्रतिमूर्ति बने घूम रहे हैं। अक्सर राजमहल के पुस्तकालय में आप बड़े बड़े ग्रंथों को उलटते पलटते देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर पाखंडोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी अयोग्य हैं। उन्हें क्या पता था कि कुशल और अनुभवी दीवान सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें पर्दे के पीछे से सब कुछ देख रही हैं और अनुभवी कान सब कुछ सुन रहे हैं। समय समय पर उम्मीदवारों को समूह वाद विवाद के लिए भी बुलाया जाता था। एक दिन की बात है, सभी उम्मीदवारों को लगा कि विद्वता तो दिखा ही रहे हैं, क्यों ना शारीरिक क्षमता भी दिखाई जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि आज हॉकी खेली जाएगी।
5: चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल, चल। गेंद रुक, गेंद रुक, गेंद रुक, ये मैंने

0: सरदार सुजान सिंह की अनुभवी आंखें कहीं दूर से इस मैच को भी देख रही थीं। खेल खत्म हुआ, सभी खिलाड़ी थके हुए थे, शाम होने वाली थी। अब सबने फैसला किया कि राजमहल लौटा जाए। मैदान से थोड़ी ही दूरी पर एक नाला था जिस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले में से चलकर आना होता था। खिलाड़ी लोग उसी नाले के पास बैठे सुस्ता रहे थे।
1: आज खेल में बड़ा मजा,
2: बहुत मजा आ गया। क्या गोल मारा था भाई, मजा आ गया उसमें तो।
3: हां, गोल हो गया किसी का,
0: दिल खुश हो गया। तभी एक किसान अनाज से भरी हुई बैलगाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कीचड़ था और चढ़ाई ऊंची थी। उसकी गाड़ी वही फंस गई।
4: ए, इधर क्या देख रहे हो?
5: साहब, गाड़ी फंस गई है, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो।
6: अच्छा, अगर थोड़ी मदद मिल जाती तो बड़े आए।
2: चलो साथियों, देर हो रही है, दीवान साहब समय का भी बहुत ध्यान रखते हैं।
4: चलो
5: अरे भाई निकलो। लेकिन
6: अरे छोड़ो इन्हें, चलो।
0: लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा था जो वहीं रुक गया। आज हॉकी के खेल में उसे चोट भी लग गई थी और वह लंगड़ा रहा था। वह दृढ़ निश्चय के साथ किसान की ओर बढ़ा और बोला,
7: बाबा तुम गाड़ी में बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, बस थोड़ी देर में गाड़ी बाहर निकल जाएगी।
5: ठीक है,
7: कोशिश करते
5: हैं।
0: और हुआ भी यही, युवक ने पूरा जोर लगाया, किसान ने बैलों को साधा और थोड़ी ही देर में गाड़ी नाले के पार थी।
5: हाँ बेटा, अच्छा किया तुमने।
7: जी बाबा।
5: हुजूर, मुझे रात भर यहीं रुकना पड़ता।
7: तो क्या इनाम देते हो?
5: नारायण ने चाहा तो दीवानी आपको ही मिलेगी।
0: और आखिर वो दिन आ ही गया। सबके दिल जोर से धड़क रहे थे। पता नहीं किसके भाग्य में राजयोग है, राज दरबार सजाया गया।
7: पूरा एक महीना हो गया है। आज फैसला।
2: तुम्हें क्या लगता है?
7: महाराज आ रहे हैं।
2: अरे अरे, सुजान सिंह जी भी आ गए।
0: महाराज सिंहासन पर आसीन हुए। रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा,
5: मेरी दीवानी के उम्मीदवार महाशयो, इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा सुयोग्य पुरुष मिल गया है। मैं पंडित जानकी नाथ सा को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। जब आप हॉकी खेल रहे थे, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो व्यक्ति जख्मी होने पर भी एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसमें धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता सभी गुण हैं। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सतावेगा।
7: सही बात है।
5: उसका संकल्प दृढ़ है। वो स्वयं चाहे धोखा खा जाए,
7: बिल्कुल सही कहा,
5: लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य कर्म से कभी भी पीछे न हटेगा।
0: सभी सरदार सुजान सिंह के चुनाव की प्रशंसा कर रहे थे।
7: उनका अच्छा इंसान, हमेशा सही काम करेगा।

0: देव घर रियासत के नए दीवान पंडित जानकी नाथ सा को बधाई दे रहे थे।
1: बधाई हो पंडित जी, बहुत कुछ चुनाव किया।
2: महाराज की जय हो,
3: महाराज की
2: जय हो,
3: महाराज की
2: जय हो,
3: महाराज की
2: जय हो।
0: सबकी समझ में आ गया था कि धैर्य, साहस, आत्मबल और उदारता जैसे सद्गुण ही व्यक्ति के सच्चे आभूषण होते हैं।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम परीक्षा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मित्र की सहायता।
5: सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए और हर परिस्थिति में वो आपके साथ खड़ा रहे।
6: एक जंगल था, उस जंगल में एक ऊंचा पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा रहता था। कौवा बहुत दयालु था, वो सभी पक्षियों की सहायता करता था। जब दूसरे पक्षी दाना चुगने बाहर जाते थे तो कौवा उनके बच्चों की देखभाल करता था। वो पक्षियों के बच्चों को गीत सुनाता।

कर जाता, सारी खबरें लेकर आता, काम काम कर गाना गाता, सबके मन को

0: एक दिन कौवे को भूख लगी। वो खाने की खोज में निकला। उसने उड़ते हुए देखा कि एक शिकारी आ रहा है। शिकारी के कंधे पर जाल रखा हुआ था। वो जंगल की ओर ही आ रहा था। कौवे ने शिकारी को देखकर सोचा,
1: ये शिकारी अवश्य कुछ पक्षियों को पकड़कर ले जाएगा। शिकारी से पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए।
0: उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, किंतु फिर भी पक्षियों को बचाने के लिए वो वापस लौट आया। जंगल में पहुंचते ही

0: गया था। उसे भूख भी लग रही थी। वो खाने की खोज में जाने लगा। तभी उसने कुछ कबूतरों को देखा। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: भाइयों, आप कहां से आए हैं? मैंने आपको पहले इस जंगल में कभी नहीं देखा।
2: मैं कबूतरों का मुखिया हूँ। हम सब पास के जंगल से आए हैं और दाना चुगने जा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा, लेकिन सुनो भाइयों, सुनो, एक शिकारी आएगा, अपना जाल बिछाएगा, तुम्हें पकड़ ले जाएगा, मार मार कर खाएगा। सुनो भाइयों, सुनो, सुनो भाइयों, सुनो।
2: कौवे भाई, हम उसके जाल में नहीं फंस सकते। हम उसके जाल पर बैठेंगे ही नहीं।
1: मुखिया जी, वो शिकारी बहुत चालाक है। वो चावल के दाने डालकर जाल लगाएगा।
2: कौवे भाई, हम सब तुम्हारी बात समझ गए हैं। तुम हमारी चिंता न करो।
0: मुखिया कबूतर की बात सुनकर कौवे की चिंता दूर हुई और अब वो खाने की खोज में उड़ गया। थोड़ी देर में जब वो वापस आया तो उसने देखा जंगल में एक स्थान पर सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। कौवा उनके पास पहुंचा और बोला,
1: अरे मैं तो तुम सबको बता गया था, फिर भी तुम सब इस जाल में कैसे फंस गए?
2: एक जगह चावल के दाने बिखरे देखकर हमें लोभ हुआ। हम चावल खाने नीचे उतरे तो इस जाल में फंस गए।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा देखो, शिकारी आ ही रहा होगा, लेकिन तुम सब साहस से काम लो। साहस और एकता से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तुम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ सकते हो।
2: हाँ ठीक कहते हो कौवे भाई, ठीक कहते हो, ऐसा ही करेंगे।
0: कबूतरों ने ऐसा ही किया। सब मिलकर उस जाल को लेकर उड़ चले। कौवा भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगा। कौवा चूहे के पास पहुंचा और बोला,
1: चूहे भाई, चूहे भाई,
3: क्या

0: ऐसा हुआ है, उसके साथी कबूतर भी जाल में फंसे हुए हैं।
1: तो चलो कौवे भाई, उनके पास चले, मैं अभी उनके जाल को काट देता हूँ।
0: चलो
1: चलो चलो कौवे भाई,
0: चलो, चलो, चलो, चलो।
2: चूहा और कौवा जल्दी से उस जाल के पास पहुँचे।
3: चूहे भाई जल्दी से इस जाल को काट कर हमें मुक्त करो, शिकारी हमें ढूंढता हुआ यहाँ आ सकता है।
1: तुम चिंता मत करो मित्र, मैं अभी जाल काट कर तुम्हें मुक्त कर देता हूँ।
3: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो जल्दी जल्दी।
2: थोड़ी देर में चूहे ने जाल काट दिया, सब कबूतर मुक्त हो गए। मुखिया ने चूहे और कौवे का धन्यवाद किया, फिर सब कबूतर उड़कर अपने जंगल की ओर चल दिए। चूहा अपने बिल में चला गया, कौवा भी अपने पेड़ की ओर उड़ गया। वो आज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने देखा था कि मिलजुल कर काम करने में कितनी शक्ति है।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम मित्र की सहायता, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:30 होने वाले हैं, आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: किशोरी अमोनकर की आवाज में अभी आपने उनकी गाई ये ठुमरी भैरवी सुनी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: शोभा गुरटू की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं ये कजरी।

0: थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आप सुन रहे थे शंकर, शंभू और खव्वाल की आवाजों में हजरत अमीर खुसरो का ये कलाम। ये एक सूफी कव्वाली थी जो हजरत अमीर खुसरो ने अपने मुर्शीद यानी अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी, और इस कव्वाली में भी अपने पीर, अपने संत को पाने की खुशी और उनके प्रेम के रंग का वर्णन कर रहे थे। संगीत दिया था मुरली मनोहर स्वरूप ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में रामानंद शर्मा का लिखा ये भक्ति पद। इसे गाया है शर्मा बंधु ने।

प्रक्रिया तैयार करने को कहा और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में आयोजित की जा रही है। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर उनके नाम से राज्य अलंकरण पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नामकरण भी संत रविदास के नाम पर किया जाएगा तथा उनके संदेश को विधानसभा भवन में अंकित कराने का आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2027 में माघ पूर्णिमा के दिन पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा और उस दिन मांस तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। नीट यूजी काउंसलिंग के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू किया जा रहा है। पहले चरण का पंजीकरण आज से लेकर 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। वहीं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहले चरण में काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया 14 अगस्त तक चलेगी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक आनंद और उनकी टीम ने दंतेवाड़ा स्थित जिला विज्ञान केंद्र का भ्रमण कर वहां संचालित वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। टीम ने विज्ञान केंद्र की स्पेस, फिजिक्स और माइनिंग गैलरी सहित विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में 2-3 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इसके असर से आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर

0: हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया है। इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार को निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे दो मजदूरों की करंट लगने से मौत हो गई और महासमुंद जिले के कोमाखान थाना क्षेत्र में पुलिस ने स्कूटी से गांजा तस्करी कर रहे दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 22 किलो गांजा बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक आज आयोजित की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने को कहा और प्रदेश में अगले 3 दिनों तक वर्षा की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर को 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
2: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को पहले के 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। रिजर्व बैंक ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर आशावादी रुख अपनाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए अपने विकास अनुमान को बढ़ाया और मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को घटाया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक

0: दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज अभिनेत्री काजोल और जेनेलिया डिसूजा का जन्मदिन है और विविध भारती परिवार की ओर से हम इन दोनों अभिनेत्रियों को देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने वो गीत चुने हैं जो काजोल और अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की फिल्मों के हैं। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही चुनिंदा गीत।
1: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
0: लता मंगेशकर और कुमार सानू, फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जतिन ललित।

ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें, हम क्यों न

अनु मलिक के संगीत निर्देशन में अभी आपने देव कोहली का लिखा ये गीत सुना। आवाजें कुमार सानू, अनु मलिक और साथियों की, फिल्म का नाम था बाजीगर।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये गीत है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। इसे समीर ने लिखा है और तर्ज जतिन ललित की है।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: शादी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, अमित कुमार और उदित नारायण की आवाजों में। फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम, बोल समीर के हैं और धुन जतिन ललित की है।

अभी आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये गीत। अगला गीत जतिन ललित की संगीत निर्देशन में प्रसून जोशी का लिखा हुआ, युगल स्वर सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, फिल्म का नाम है फना।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन

आशा भोंसले और उदित नारायण को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, आवाज रूना की, संगीत दिया है AR रहमान ने और गीत लिखा है अब्बास ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। फिल्म का नाम है मस्ती, आवाजी शान और स्नेहा पंत की। इसे समीर ने लिखा है और धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

0: मस्ती फिल्म का दो गाना अभी आपने शान और स्नेहा पंत की आवाजों में सुना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
3: तुम आ गए
1: आठ बजकर पंद्रह मिनट और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज भीख लेते हैं सावन में। कैसे हैं आप लोग बताइए पहले। अरे भाई क्या बात है, सब सावन का आनंद ले रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसी सावन के नाम हम करते हैं जिसका हम आनंद ले रहे हैं, या हमारे कुछ श्रोता लोग जिनके शहर में बरसात नहीं है वो कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि भाई सावन के इस महीने में हमारे श्रोता कैसे हैं, जरा बताएंगे। आप सभी जानते हैं ना कि सावन आते ही जैसे हवा का मिजाज बदल जाता है, यानी मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, पेड़ों की हरियाली, रिमझिम बारिश की बूंदें और ठंडी ठंडी हवाएं मन को सुकून से भर देती हैं। और हम सभी कहते हैं कि भाई ये जो मौसम है खास तौर से सिर्फ प्रकृति को ही नहीं हमारे दिलों को भी हरा भरा कर देता है, है ना? आप भी महसूस करते हैं ना ये सब। तो चलिए आज सुरीला सफर में हम सावन की बूंदों का एहसास करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि बताइएगा इस सुरीला सफर में आज हमारे साथ चलने के लिए आप लोग तैयार हैं भी कि नहीं। भाई देखिए सावन का महीना है, बरसात का मौसम है, हो सकता है कहीं कहीं हमें गर्मी का ऐसा महसूस हो, गर्मी महसूस हो, तो हमें परेशान नहीं होना है। सब मिलकर इस हरियाली का, इस सावन का, इस उल्लास का, इस प्रेम का, इस मिलन का, इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, ठीक है? तो आज की इबारत आप सभी ने पढ़ ली है, जो फेसबुक श्रोता हैं हमारे, फेसबुक से जुड़े हैं उन्होंने पढ़ ली है, लेकिन जो फेसबुक फ्रेंड नहीं है हमारे उनको हम बता दें, आज हमने आपके लिए इबारत रची है ये लिखकर कि आदरणीय श्रोताओं, संगीत प्रेमियों और सम्मानित हमारे नए श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। भारत की ऋतुओं में यदि किसी ऋतु का सबसे अधिक इंतजार किया जाता है तो वो है सावन। हाँ, और ये केवल वर्षा का मौसम नहीं बल्कि हरियाली का, उल्लास का, प्रेम का, मिलन का

0: विरह का और प्रकृति की आराधना का, शिव की आराधना का उत्सव माना जाता है। जब धरती पर वर्षा की बूंदें गिरती हैं, तो मानो प्रकृति स्वयं गीत गाने लगती है। झूले पड़ते हैं, पपीहा पुकारता है, मोर नाच उठते हैं और मन, हमारा मन गीत संगीत से भर जाता है। बस इन्हीं भावों को हमारे फिल्मी संगीत ने अनगिनत मधुर गीतों में अमर कर दिया है। तो आज का ये संगीतमय कार्यक्रम उन्हीं सदाबहार गीतों को समर्पित है जिन्होंने सावन की हर अनुभूति को सुरों में पिरोया है। ये थी हमारी आज की इबारत, और इस इबारत को पढ़ने के बाद हमारे श्रोताओं ने इतनी खूबसूरत इबारत अपने अपने शब्दों में हमारे सामने रखी है, जिसे हम पढ़ेंगे इस गीत के बाद।
1: आयो रे, आयो रे।
0: महेंद्र कपूर और साथी, फिल्म का नाम बंधन, इंदिवर की रचना, कल्याण जी आनंद जी की धुन। तो सावन में भीगा जाए, सुरीला सफर शुरू हो गया है। सावधान।

जी हाँ, सावन आ गया है और ये गीत तो महेंद्र कपूर और साथियों ने फिल्म बंधन के लिए गाया था। इंदिवर की बोल थी और कल्याण जी आनंद जी की धुन। भाई सावन आ गया है और हम इससे बेखबर कैसे हो सकते हैं? देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने सावन की बौछारों से भीग गए हैं। कुछ श्रोता तो लिख रहे हैं कि हालांकि उनके शहर में अभी बरसात नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी वो कार्यक्रमों के जरिए महसूस करेंगे कि सावन की कुछ फुहारें

उनके भीतर महसूस हो। तो एक श्रोता ने लिखा है कि आज गद्यांश में फिर एक बार सावन के भीगे मौसम की बात है तो गानों से जरूर तरबतर हो जाएंगे। सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि धरती और आकाश के मिलन का महाउत्सव, ये चातक की प्रतीक्षा, कृषक की आशा और विरहियों की व्याकुलता का सघन मेघ है। जब ग्रीष्म की तपन से झुलसी वसुधा पर स्वाति की बूंदे गिरती है तब मिट्टी से सौंधी महक उठती है। ये महक प्रकृति के नव श्रृंगार की पहली घोषणा है, इसलिए ये हृदय का राग है, मिलन का स्पंदन है, मानवीय भावनाओं के चरमोत्कर्ष का काल है और सावन एक शाश्वत अनुभूति है। बहुत सुंदर भाव आपने अपनी इबारत में भेजा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन के इस महीने में सुरीले सफर की खूबसूरत इबारत का, सावन केवल एक ऋतु नहीं बल्कि हमारे मन का सबसे कोमल एहसास है। सावन की फुहारों में प्रेम का संदेश है, झूलों की पींगों में बचपन की हंसी है, मोर के नृत्य में प्रकृति का उल्लास है और पपीहे की पुकार में विरह की मधुर टीस भी है। फिल्मी गीतों में भी सावन कभी मिलन का बहाना बनकर आया तो कभी बिछड़ने वालों की आंखों में बरसता रहा। सुनेंगे इस संगीत में सावन में सुरीले सफर में उन सदाबहार गीतों को जिन्होंने बरसात की हर बूंद को सुरों का मोती बना दिया। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज इबारत आती थी मगर ऐसी न थी। चेतक पक्षी को जैसे सावन की एक बूंद का इंतजार रहता है, हमें भी सुरीला सफर की बागडोर कौन संभाल रहा है उस पोस्ट का इंतजार रहता है। क्या बात है, सावन आए और विविध भारती पर इससे जुड़े गीत न बजे ऐसा संभव ही नहीं। सावन केवल एक ऋतु नहीं, आशा, विश्वास, मिलन, विरह और प्रतीक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए सावन आए न आए, जिया जब झूमे सावन है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी आवाज, मेरी आवाज सुरीला सफर को और सुरीला बना देती है। क्या बात है, सावन सिर्फ बारिश की बूंद नहीं लाता बल्कि मन में एक नई ताजगी भर देता है। जब सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ती है तो सौंधी महक से हर कोना महक उठता है। पेड़ पर पड़े झूले, बादलों की गड़गड़ाहट और हरी भरी पत्तियां सब मिलकर जीवन में नए रंग भर देते हैं। आपने भी कुछ गीत चुने हैं जिनका जिक्र आपने किया है, तो देखना यह है कि आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या आपके गीत से मिलते हैं वो गीत। तो जब सुरीला सफर पर निकल ही चुके हैं, सावन आ ही गया है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, झूला झूलते हैं। बताइए आपके आसपास कहीं झूला टंगा है किसी पेड़ की टहनी पर या घर में, बताइएगा क्या आपने झूला झूला इन दिनों। फटाफट लिखिएगा अपना एहसास, कितनी ऊंची पींगे बढ़ाई आपने ये भी बताइएगा।

लता मंगेशकर, आशा भोंसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बहू बेगम, इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और धुन रोशन की थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि धमाकेदार शुरुआत से लगता है आज सावन में ही भादो आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, यानी आप भी आनंदित हो रहे हैं और सावन में भीग गए हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीत बहुत ही प्यारे होने वाले हैं क्योंकि सावन जो आ गया है विविध भारती के आंगन में। भाई, आपके आंगन में भी तो सावन आ गया है और सब श्रोता मिलकर मंदाकिनी जी के साथ मस्ती से आनंद लेने वाले हैं। बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बंधन फिल्म के महेंद्र कपूर जी की ये जो आवाज थी शानदार गाने से सावन की शुरुआत सुरीला सफर कार्यक्रम में हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहली बार ये गीत सुनने को मिला है सुरीला सफर में बज रहा है या बहुत लंबे से समय के बाद इस गीत को बजाया गया है, धन्यवाद देते हैं आप। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की सुरीली यात्रा अत्यंत सुखदायी लग रही है क्योंकि आज की विशेष कड़ी आपके द्वारा सावन में वर्षा की ठंडी ठंडी फुहार जैसे कर्णप्रिय गीतों से सजाई गई है। भाई, जब सावन का मौका है और सुरीला सफर है, हम और आप साथ हैं, मिलकर इस यात्रा पर निकले हैं, तो यकीनन जो सफर है वो सुरीला होना लाजिमी है ना। हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना आकाश का मन हुआ कि चलो धरती से मिले, हाथ बढ़ाकर उसके स्पर्श की पावन अनुभूति का आनंद मैं भी लूं, अपने लंबे लंबे हाथ पानी की धार के रूप में फैलाएं और अंततः स्पर्श कर ही लिया, बस फिर क्या था, माँ तो माँ ही होती है। खुश हो हरा भरा श्रृंगार करके, अच्छा श्रृंगार करके झूमने गाने लगी और तब से वे दोनों हर साल मिलते हैं और इस मिलन के उत्सव को उनके साथ हम सभी झूम झूम कर मनाते हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज बारिश रूपी झड़ी लगने वाली है, गीतों की बूंदों के रस में डूबे हुए स्नेहिल मंदाकिनी जी और सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं। ये सच है कि ऋतु में सावन खूब भाता है, बचपना हो युवा हो या 50 से ऊपर बारिश में भीगने का अपना आनंद होता है। हाँ, पर मन के भाव हर उम्र में अलग अलग हो सकते हैं, पर बारिश रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी अगन। बहुत अच्छे लगते हैं गीत सुनना। बिल्कुल आपने सही कहा, चाहे बचपना हो चाहे युवावस्था हो या 50 के पार का हमारा मन हो, ये जो बारिश है, ये जो सावन है, ये जो मौसम है, हमें हर उम्र में उतना ही उल्लासित रखता है जितना हम हर वक्त रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी भी मौसम को किन अर्थों में लेते हैं। अच्छा, तो हमने आपसे पूछा था कि झूले पड़ गए हैं आपके घर आंगन में, भी झूले लग गए होंगे, किसी पेड़ की शाखा पर झूले टंग गए होंगे कि आपने झूले झूले हैं। अभी ढूंढते हैं आपके जवाब क्या आए। ये बताइएगा कि आपके शहर में सावन बरसा के नहीं, फटाफट बताइए। तो आप बताएंगे कि आपके शहर में बरसा

रात हुई कि नहीं हुई तो कितनी हुई, कब से हुई, और आपने सावन का जो ये आनंद है लिया या नहीं, ये आपका मन सूखा रेगिस्तान है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सुरीला सफर में आज हमारी कोशिश यही है कि हम भीग जाएं तन मन से। यह आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम आशीर्वाद, गुलजार साहब के बोल, वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म का नाम था आशीर्वाद। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहा जाता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला, जो ये दर्शाता है कि हर अच्छे काम की शुरुआत में मुश्किलें और नकारात्मकता आती ही हैं। भगवान शिव द्वारा इस विष को अपने गले में रोकना ये सिखाता है कि समाज की भलाई के लिए कभी कभी कड़वी बातें भी सहनी पड़ती हैं। जो इंसान अपमान और आलोचना को झेल कर भी शांत रहता है, वही असल में महान बनता है। बहुत सुंदर। हमारे श्रोता ने हमारे एक सवाल का जवाब दिया है। हमने पूछा कि क्या आपके शहर में बरसा है पानी सावन बरसा कि नहीं। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ गुजरात में अभी सावन नहीं आया, उत्तर पूर्व भारत में गए सोमवार के आसपास सावन शुरू हो गया है, पर पश्चिम में सावन महीना देर से आता है। इन्होंने लिखा है, अरे आपने हमारा नाम बदल दिया, मीनाक्षी जी। बड़ा सुंदर नाम रख दिया आपने हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन हमारे तीन तहसील में बारिश नहीं हुई है, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर और जामनगर में बारिश नहीं हुई। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे भोपाल और आसपास के क्षेत्र में पानी नहीं बरस रहा है, बहुत चिंता हो रही है। बाकी गर्मी तो कम है, मौसम बहुत सुहावना है, चारों ओर हरियाली, तालाब जंगल से घिरा हुआ शहर है हमारा। अगर अच्छा

पानी गिरता है तो शिमला मसूरी का मजा आता है। क्या बात है, हम बिल्कुल गुजारिश करते हैं भगवान से, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के शहर में पानी बरसे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिछले महीने से मैं बारिश की गीत सुनकर थक गई थी, पर हमारे शहर में बारिश नहीं हो रही ही, पर पिछले सोमवार से हमारे शहर में रिमझिम सावन बरस रहा है। आज भी सुबह से एकदम बिल्कुल फुहार हो रही है और बहुत बढ़िया हरियाला मौसम हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है ना आपको। आप लिखती हैं कि भाई विविध भारती स्टूडियो में भी सावन आ गया है। बिल्कुल, यहाँ तो सावन आ गया है स्टूडियो में, और सुरीला सफर में भी तो हम निकल पड़े हैं ना, जहाँ सावन की बौछारें हमें भिगो रही हैं। भीगे हैं ना आप, बताइए मुझे, भीगे हैं कि नहीं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि कहा जाता है कि सावन मास में ही अच्छाई, तो हमने आपका विचार पढ़ दिया था, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और अब सुनते हैं सलिल चौधरी का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है 2 बीघा जमीन। अच्छा बताइएगा, हमारे एक श्रोता ने कहा आपके 2 सवालों का क्या हुआ। नहीं, आज हम खूब सारी बातें करने वाले हैं, खूब सारे सवाल आपसे करने वाले हैं, सीधे साधे प्यारे से, जिनका जवाब आप इस सफर में चलते चलाते दे देंगे, है ना। बताइएगा आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है, बारिश, ठंडी हवा, चाय या किसी अपने का साथ।

हमारे श्रोता लगातार हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपसे थोड़े से नाराज हैं, आप आजकल बहुत दिनों बाद आती हैं। वैसे तो हमने सोचा आज हम सुरीला सफर नहीं सुनेंगे क्योंकि कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे,

उसे करना बहुत जरूरी था, पर अब लगता है कि आपको हम सुनेंगे और जब सावन की बातें हैं तो हम क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। फिर दिल ने धीरे से कहा, हो जाओ शामिल, देखो ना सबने कितने प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं, तुम भी लगी हो इन सब में, बस फिर क्या था हम लिखने लगे, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप इस तरह से इतना काम होते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और हमारे साथ इस सुरीले सफर पर निकल पड़ते हैं। एक श्रोता ने कहा है कि यह सावन हर साल आता है मगर हर बार कुछ नया छोड़ जाता है, कभी भीगी मिट्टी की खुशबू में कोई पुरानी याद, कभी झूले की पींग में बचपन, कभी पपीहे की पुकार में किसी का इंतजार, पेड़ों पर उतरती हरियाली जैसे धरती ने हरे रंग की चूड़ियां पहन ली हो और बादल आसमान की पेशानी पर ठहरी कोई खामोश दुआ बन गया हो। शायद इसलिए हमारे फिल्मी गीतों ने सावन को सिर्फ देखा नहीं, उसे जिया है। हर धुन में कहीं रिमझिम की बूंद है, कहीं मोर के पंखों की थिरकन, कहीं विरह की भीगी सांस तो कहीं मिलन की मुस्कान। सावन दरअसल मौसम नहीं, यादों का भीगा हुआ पन्ना है जिसे जिंदगी हर बरस फिर से खोलकर पढ़ती है। बहुत सुंदर, बहुत गहरी इबारत आपने लिखी है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारत ऋतुओं की विविधता का देश है लेकिन जो आत्मीयता, रसमयता और भावुकता सावन के महीने में छिपी है वो अद्वितीय है। सावन केवल वक्त का एक महीना नहीं है, ये भारतीय जनमानस के लिए प्रेम, विरह, हरियाली और आस्था का एक जीवंत उत्सव है। सावन आते ही प्रकृति अपना सबसे सुंदर रूप धारण कर लेती है। सावन रस का महीना है, चाहे वो पानी का रस हो, संगीत का रस हो, प्रेम का रस हो या फिर भक्ति का रस हो। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना उल्लास, उमंग, खुशी और प्रकृति को भी खुशनुमा बना देता है। मोर नाचने लगते हैं, कोयल की कूक गूंजने लगती है, पानी की बूंदे धरी पर पड़ती है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है और हरियाला सावन ढोल बजाता आता है। सावन का महीना और इस तरह से हम सावन के महीने को जीते हैं। तो हमारे श्रोता लगातार लिख रहे हैं लेकिन सवालों का जवाब भेज रहे हैं कि नहीं। भाई आज तो बिल्कुल सीधे साधे सवाल आपसे किए जा रहे हैं ताकि सुरीला सफर में कहीं रुक के हमें दिमाग पर ज्यादा जोर न देना पड़े कि आज जो हमने पूछा उसका जवाब क्या हो सकता है। तो हमने आपसे सीधा साधा सवाल किया था कि आपके शहर में सावन बरसा या नहीं, आपने इसका जवाब दिया है। और हमने आपसे ये भी पूछा था कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर खेत खलिहान में या आपके आसपास झूले लगे कि नहीं, आपने झूला कि नहीं, इसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है। वहीं अब हम इस सुरीला सफर में आपसे जानना चाह रहे थे कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। मतलब सावन बरसता है तो बारिश का मजा लेते हैं, ठंडी हवाओं का या अदरक की चाय का, या किसी अपने के साथ उस सावन का मजा लिया जाता है, या कई लोग चाय की टपरी की ओर भी चले जाते हैं जहां हमें कुल्हड़ की चाय मिलती है। याद है आपको वो समय जब आप चाय की टपरी पर जाकर कुल्हड़ की चाय पिया करते थे? याद करिए उन दिनों को और लिख भेजिए कम से कम शब्दों में ये अपनी बात जो आपने अपनी जिंदगी में महसूस की है। यह आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है कौन है अपना, बीडी मिश्रा का लिखा गीत है और एस एन त्रिपाठी का संगीत है। बहुत कम बजता है गीत।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि सावन मास का आगमन हर दिल में एक नई उमंग जगाता है, इसलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। स्वयं भगवान शिव को भी यह महीना अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि इस समय प्रकृति का कण कण उनकी कृपा से जीवंत हो उठता है। इस पावन मास में बेटियां अपने मायके लौटती हैं, घर आंगन में झूले सजते हैं, सावन के मेले लगते हैं और चारों ओर मखमली हरियाली छा जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने स्वयं को खुशियों के हरे रंग से सराबोर कर लिया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय लोक जीवन में सावन का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। सावन केवल बाहरी वातावरण को ही शीतल नहीं करता, बल्कि इंसान के भीतर छिपी संवेदनाओं को भी जगा देता है। कवियों और साहित्यकारों ने सावन पर अनगिनत रचनाएं लिखी। फिल्मी गीतों से लेकर शास्त्रीय संगीत के राग मेघ मल्हार तक सावन हर कलाकार की प्रेरणा रहा है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपके द्वारा साझा किए गए शब्दों में सावन की भावना जीवंत हो उठी है। सचमुच ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, ऐसा हम समझते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना आ गया, जीदा नहीं आता था, लेकिन सावन का महीना आया। बहुत सारे गीतों का जिक्र आपने किया है। और श्रोता लिखते हैं कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। आपने पूछा था कि आप सावन को किस तरह से बिता रहे हैं, उसका जवाब दिया है इन्होंने कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आपने लिखा है कि अदरक की चाय के साथ किसी अपने का साथ हो तो सावन का मजा दोगुना हो जाता है। मेरे शहर में सावन की झड़ी लगी हुई है और मौसम काफी रूमानी हो गया है, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पुणे शहर में आषाढ़ की घनघोर बरसात के साथ अब सावन वाली धूप बारिश की आंख मिचोली दिखाई दे रही है। हरी भरी प्रसन्न सृष्टि के साथ हमारा तन मन भी प्रफुल्लित हो गया है, बहुत सुंदर। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो बालपन वाले झूले कहाँ मिलते हैं मंदाकिनी जी, जो पेड़ों पर लगे रहते थे अब तो पार्क में झूले होते हैं। अच्छा आज भी जब आप गाँवों में जाते हैं ना तो वहां पर आपको पेड़ों पर झूले टंगे हुए मिलेंगे, है ना। गाँवों में ढाणियों में जाकर देखिए, वहां खेतों में खलिहानों में पेड़ों के आसपास झूले लगते हैं और छोटे छोटे बच्चे और स्त्रियां घूंघट अपने में वो अपनी पूरे पारंपरिक पोशाक में होती हैं मतलब, और झूला झूलती भी आपको मिल सकती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए आज का सुरीला सफर तो आपने सावन के नाम कर दिया है, सुन रहे हैं हम भी आपके साथ हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सावन का महीना भारतीय जनमानस के प्राणों में बसता है। तपती गर्मी से व्याकुल धरती जब वर्षा की पहली फुहार से तृप्त होती है तो चारों ओर मिट्टी की सौंधी महक फैल जाती है। ये समय केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ मखमली हरी चादर बिछ जाती है। बागों में सखियों के खिलखिलाते चेहरों के साथ पेड़ों पर झूले सजते हैं और आकाश में काले बादलों को देख पपीहे कितान और मोरों का नृत्य तेज हो जाता है। सावन का हर दिन लोकगीतों, त्योहारों और महादेव की भक्ति के रंग में डूबा रहता है, जो मानवीय संवेदनाओं, विरह और मिलन के भावों को जीवंत कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज ये सुरीला सफर आपके साथ हम चल रहे हैं और सावन के गीतों का आनंद लेंगे। सावन का महीना ऐसा महीना होता है जहां देखो हरियाली हरियाली होती है। इस महीने में अपने आप ही मन खुश रहता है और उस सफर पर हम और हमारी कैप्टन मंदाकिनी जी हमारे साथ होंगी। नहीं भाई, हम सब मिलकर, हम सभी मित्रगण जो हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमारे दोस्त, सब मिलकर इस सुरीला सफर का आनंद आज उठा रहे हैं और आप इस सुरीला सफर में हमारे साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है।

क्या लगता है? तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद आनंद की वर्षा कर रही है ना? और कभी कभी सावन की इस भीड़ में मन अकेला भी तो हो जाता है, पर हम तो सुरीला सफर के इस मौके पर निकल पड़े हैं। हमारे अंदर कहीं अकेलापन नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपने अनकहे दर्द को, हम उसे ही कहेंगे कि सुरीला सफर के इस यात्रा में तन्हाई को

उषा खन्ना का संगीत था और गौहर कानपुरी की रचना, आवाज मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था दो खिलाड़ी। लगता है हमारे श्रोताओं को जो है पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली

हमें बहुत पसंद है, इसीलिए तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है हमारे सवाल के जवाब में कि आपके लिए सावन का सबसे रूमानी एहसास क्या है। आप लिखते हैं कि गर्मा गर्म पकौड़े और चाय। चलिए हम पढ़ते हैं आपके इन जज्बातों को। आप लिखते हैं, पहली बूंदों को अदरक वाली चाय, गर्म पकौड़े और सुरीले सावन गीतों की सुनते हुए अपने मनमीत के साथ मजा लेना ही बढ़िया एहसास लगता है, क्या खूब। एक श्रोता ने लिखा है कि आज बहुत कम सुनाई देने वाले सुमधुर सावन गीत आ रहे हैं, धन्यवाद। वहीं एक श्रोता ने कहा है, हमें तो सावन में बारिश हो रही हो तब गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मजा आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन माह में हल्की रिमझिम वर्षा के साथ गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हुए झूले पर, अच्छा टेरेस पर डाले गए झूलों पर बैठना अधिक सुहाता है, बिल्कुल। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी खेतों में पड़े हैं और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सपत्नीक हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है, एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा, बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले

और शिव जी पर नियमित प्रातः जलाभिषेक सब पत्नी हम कर रहे हैं। सारे माह बेटियों बहुओं ने व्रत रखने का संकल्प लिया है। एक समय भोजन करेंगे, शिव नाम का जाप होगा और अभिषेक होगा। बहुत खूब। वहीं श्रोता लिखते हैं कि सावन का महीना, झूले भी पड़े हैं और व्रत भी किया है। एक श्रोता ने लिखा है कि चाय और पकौड़े को तो सावन की जान माना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की शुरुआत ने हमारे यहाँ बारिश का आनंद देना शुरू कर दिया। हम घर बैठे बारिश के साथ रेडियो पर आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं और झांसी में 15 दिन बाद पानी बरसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और क्या कहना चाहिए, बधाई, ये आपके शहर में पानी बरसा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने सावन का आनंद हमेशा ही लिया है। बचपन में कागज की नाव बनाकर तैराना, कॉलेज के दिनों में भीगते हुए सावन का आनंद लेना और रेडियो पर सावन के गीतों का मजा लेना, सर्विस पीरियड में अवकाश के दिन अपनी पत्नी के साथ खिड़की के फुहारों और हरियाली का आनंद लेना, अब सेवानिवृत्त होने के बाद अदरक, काली मिर्च और इलायची की शुद्ध दूध की चाय और गर्मा गर्म प्याज के पकौड़ों का, आहा, हमारा भी मन कर गया है। मजा अपनी पत्नी के साथ लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो जब भी बारिश होती है तो पतिदेव पकौड़े की फरमाइश करते हैं और फिर हम दोनों बारिश का मजा लेते हुए साथ साथ पकौड़े का भी मजा लेते हैं। बहुत सुंदर, यही तो जीवन है। एक श्रोता लिखते हैं कि सावन महीने की बरसात की फुहार, चाय की प्याली और पकौड़े के स्वाद कुछ अलग ही होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन की बारिश में चाय और पकौड़ों की जुगलबंदी इस रूमानी एहसास को दोगुना कर देती है। गर्मा गर्म पकौड़े, कट्टी हुई ठंडक और बारिश की रिमझिम के बीच प्याज, आलू और मिर्च के करारे पकौड़ों की बाइट, मन को तृप्त कर देती है। इलायची अदरक वाली चाय पकौड़ों के साथ खौलती हुई अदरक इलायची की चाय की चुस्की रूह तक सुकून पहुंचाती है। मौसम का असली मजा खिड़की के पास बैठकर बारिश को देखते हुए चाय पकौड़े का आनंद लेना है और सावन का सबसे खास और ये सुखद पल बन जाता है। भाई, आपके चाय और पकौड़े की बात पढ़ते पढ़ते, आपकी फीलिंग्स को महसूस करते करते हमारी भी इच्छा हो गई है कि एक गर्मा गर्म चाय और कुछ गर्मा गर्म पकौड़ियां खाई जाए। अच्छा, तो हमने एक सवाल पूछना चाहा भी था आपसे कि क्या कभी आपने बारिश में कागज की नाव बनाई? हाँ, बचपन में तो जरूर बनाई होगी। हमारे एक श्रोता ने अभी जवाब भी दिया कि उन्होंने बरसात में खास तौर से कागज की नाव को तैराया है। कितना मजा आता था ना घर आंगन में, जब हम जो नाली है उसमें एक कपड़ा ठूंस देते थे ताकि पानी बाहर न जाए और कागज की नाव उस पे चलाए करते थे और हमें लगता था कि हमने जैसे असल में नाव बना ली है और हम उस पर तैर रहे हैं। अच्छा, बताइएगा कि सावन का नाम सुनते ही आपके दिल में सबसे पहली कौन सी याद ताजा हो जाती है? कम से कम शब्दों में बताना है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत।

गीत। आज तो मैं और मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, शानदार सुरीला सफर का कार्यक्रम। बारिश और भी तेज हो रही है मेरे शहर में, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि सभी को सावन का मौसम दुख और सुख दोनों का मिलन है। सावन में मायके जाते थे, झूला झूलते थे, सखियों से मिलते थे, अब वो सब नहीं हो पाता है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिली, मैंने उनको सिर्फ इस गाने की दो लाइनें लिखी थी कि तेरी दो टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए रे, क्या बात है। बस फिर क्या था, उनको पता चला और उन्होंने छुट्टी दे दी और मेरा ये सावन का अनुभव हर साल सावन में याद आता है। वाह, अब तो ना मायके से कोई आता है ना ही कोई बुलाता है, पुरानी यादों को याद करके ये सावन बीत जाता है। यही जिंदगी है ना, जिंदगी में हर पल एक से नहीं होते हैं, कभी खुशी कभी गम होते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सावन की पहली फुहार में आज काशी नगरी भीग गई है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। जहां बारिश अभी तक नहीं पहुंची थी वहां भी सावन की वर्षा पहुंच चुकी है। बाबा विश्वनाथ जी के से प्रार्थना करती हूं कि अभी सावन की सुंदर छटा चलती रहे। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि अरे आपने तो मंदाकिनी शब्द

के अलग अलग अक्षरों का अर्थ लिख दिया है। बहुत लंबा खत आपने लिखा है, बहुत लंबा संदेश। चलिए फिर कभी इसको पढ़ेंगे। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इबारत को पढ़कर मालूम हुआ कि सावन के महीने की क्या विशेषता है, और सावन के ऊपर आज मधुर और कर्णप्रिय गीत सुनने को मिलने वाले हैं, तो हम इसके लिए आपके साथ सुरीला सफर में चलने को तैयार है। भाई अब तो हम अंतिम सोपान तक पहुँच चुके हैं, तो चलिए सुनते हैं प्रीति सागर की आवाज में। इनका साथ दे रहे हैं भूपेंद्र, फिल्म का नाम है भूमिका।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जो काम इंसान यूं ही नहीं करता वो काम बारिश करवा देती है। भवन की सफाई, पेड़ पौधों को साफ करना, पीने का पानी, पशुओं के चारे की व्यवस्था, ये बरसात ही तो करती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि कटक उड़ीसा में सावन आया, आकर भिगो भी गया, बारिश हुई, ऊपर छत्तीसगढ़ में बहुत बारिश हुई, हीराकुंड डैम से पानी भी निष्कासित हो रहा है, नदी नाले पानी से भरे हुए हैं। बहुत दिनों के बाद बारिश आई, लेकिन खुशी के साथ दुख भी दिया, कई जिलों में बाढ़ आने से बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम ऐसे प्रकृति को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे ही लोग इस अतिवृष्टि से कितने परेशान हैं, और जानमाल को जब नुकसान होता है तो वाकई मन रो पड़ता है। जी, अब तो मिलने मिलाने का वक्त खत्म हो गया है, और अब आपको हमें यानी मंदाकिनी जोशी को इजाजत देनी होगी कार्यक्रम सुरीला सफर से। तो हम लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज की त्रिवेणी आधारित है भोर या सवेरा पर। साथियों, भोर प्रकृति की वो मुस्कान है जो धीरे धीरे खिलती जाती है और रात के घने अंधकार के घमंड को अपनी मुस्कुराहट के सौंदर्य से समाप्त कर देती है। ये केवल दिन की शुरुआत भर नहीं बल्कि आशा, ऊर्जा और नव जीवन का सुंदरतम उत्सव है। जब पूर्व दिशा में उषा अपनी सुनहरी चुनर फैलाती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश स्वयं पर इठला रहा हो, मानो आकाश की झोली से भोर हाथ भर भर के सोना उछाल कर धरती पर बिखेर रही हो। रात भर चंद्रमा और तारों की छत्र छाया में विश्राम करती धरती भोर की पहली किरण के साथ अंगड़ाई लेकर जाग उठती है।

घास की पत्तियों पर सजी ओस की बूंदें मोतियों की तरह दमकने लगती हैं। मंद मंद बहती शीतल हवा फूलों की सुगंध को अपने साथ बहाकर पूरे वातावरण में बिखेर देती है। वृक्षों की डालियों पर बैठे पक्षी अपने मधुर कलरव से प्रकृति के इस जागरण का स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि किसी अदृश्य संगीत की लय पर थिरक रही हो। भोर जीवन का वो संदेश है जो कहता है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं होता। कितनी ही लंबी और भयावह रात क्यों ना हो, लेकिन अंत में उसे उजाले के सामने झुकना ही पड़ता है। यही कारण है कि सवेरा मानव जीवन में आशा और विश्वास का प्रतीक माना गया है। ये हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों और निराशाओं के बीच भी धैर्य बनाए रखें, क्योंकि हर संघर्ष के बाद सफलता का सूर्योदय अवश्य होता है।

भोर हमें ये भी सिखाती है कि हर नया दिन एक नया अवसर है बीते हुए कल की असफलताओं और दुखों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर। जैसे सूर्य प्रतिदिन बिना थके अपनी किरणों से संसार को आलोकित करता है, वैसे ही मनुष्य को भी निरंतर कर्म करते हुए अपने जीवन को प्रकाशमय बनाना चाहिए। सच तो ये है कि भोर प्रकृति द्वारा रचित सबसे सुंदर काव्य है। इसकी हर किरण में उम्मीद का गीत है, हर हवा के झोंके में नव जीवन का संदेश है और हर

उगते सूरज में अनंत संभावनाओं का प्रकाश है। भोर हमें याद दिलाती है कि जीवन रुकने का नहीं, बल्कि हर दिन नए उत्साह के साथ आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए सवेरा केवल समय का परिवर्तन नहीं, बल्कि मन और आत्मा के जागरण का उत्सव है।

हा हा दैया दाय उठाय लियो गिर नक पर बंत बजावत देनु चनैया जगके मोहन मन में माये नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की शरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वेलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज ही के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था, वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नैतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र

0: शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
2: After a detailed assessment of the evolving
0: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
1: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
2: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
0: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहले तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
2: As projected earlier.
1: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए RBI ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
2: रियल GDP ग्रोथ फॉर दिस ईयर
0: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
2: Q4 at 6.8%।
1: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मानसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल

0: लाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जांच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जांच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं रहमान।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, के लिए पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में ये भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
2: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गए हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी

0: वाली शेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं रवि का संगीत, साहिर लुधियानवी की बोल, मन्ना डे की आवाज, फिल्म का नाम वक्त।

0: क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। बहाने क्यों करती हो, हम पे तुम भी मरती हो। अभी तो नया सांस है, आज हंसी तो कल भी हंसोगी।
1: किशोर कुमार की आवाज में आपने श्रीमान फंटूश का गीत सुना। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे।
0: बहाने क्यों करती हो।
1: और ये स्वर है मोहम्मद रफी का, फिल्म का नाम है सहेली। गीत रचना इंदिवर की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अजी ये गुस्सा छोड़ो अभी से दिल ना तोड़ो, अभी तो नया आजाद है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है रिश्ते नाते। गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन मदन मोहन की।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है दो बदन। शब्दकार शकील बदायूनी है और धुन रवि की है।

0: शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा और धुन कल्याण जी आनंद जी ने दी।

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: और ये है इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, आवाजी मोहम्मद रफी और शारदा की, फिल्म का नाम है गुमनाम।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा।
2: ममता जी पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की?
1: बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए।
2: नहीं भाई ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है इसलिए आप बार बार ये कह रही है।
1: दरअसल ये जो बात है ना इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है।
2: ये तो बहुत सही है
1: ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया, तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
2: बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है, तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे। उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा।
1: अच्छा तो आप बताइए आप किन मौकों पर क्षमा करती
2: हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ, तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना तो उसमें क्या होता है हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं, अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन किन बातों
2: की? साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी जो हर घर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर, यानी इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर, जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है, क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे,
1: उन पर विषय पर भी तनाव बहुत होता है
2: जी।
1: और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है, सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है, और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं, जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है।
2: स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई

0: हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं।
1: और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है,
0: जी
1: बहुत विराट है,
0: जी
1: और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र
0: पति
1: पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये
0: हमें ये
1: साड़ी दी
0: साड़ी
1: थी।
0: दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं, पर
1: और
0: अगर
1: ये जो मौसम है ना,
0: हम
1: बारिश
0: जी
1: का मौसम,
0: हाँ
1: इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है, और
0: हाँ
1: चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो
0: यानी वो
1: जाती है।
0: खाने का जायका बढ़ा देती है।
1: और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का, सुनते
0: सुनते
1: हैं ये
0: हैं।
1: गाना।

0: बात कर रहे थे साड़ियों की, और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपनी सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है।
1: और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी।
0: बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है।
1: और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाली रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है।
0: और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों की डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं।
1: और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिशू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है।
0: और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती, बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है।
1: जी, और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता माहेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियाँ जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को और भी बढ़ाया है।
0: माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं, बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, महेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है।
1: और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हथकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा है, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है।
0: और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं।

0: भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कराती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है?
1: उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता
0: जी
1: जी, पर भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता
0: मैं तो
1: है?
0: झगड़ती नहीं
1: ऐसा नहीं हो
0: नहीं बिल्कुल
1: सकता ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे
0: नहीं
1: कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती
0: हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ। कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे। इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए, कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी
1: धीमी
0: आवाज
1: आवाज
0: में,
1: में
0: तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल
1: ये
0: झगड़े।
1: नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए पर मनभेद नहीं होना चाहिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने
1: डर
0: तो
1: गए
0: बात
1: होंगे ना
0: की पत्नी से डांट खानी
1: हाँ
0: पड़ेगी
1: क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की
0: तो
1: बात
0: हमने तो इसलिए बता दिया, और आपने भी बता दी
1: हाँ
0: कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा।
1: ये तो बहुत ही सामान्य
0: तो
1: सी बात है ना,
0: हाँ,
1: झगड़ा होना।
0: लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे

0: बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
1: एक हमारे साथी ने ये भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते हैं लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्ची की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। इन्हीं बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है,
0: बिल्कुल
1: पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं। पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये हमारी जो श्रोता हैं इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहाँ से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहाँ जाए, उसे चाहिए माँ का साथ पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए तो अलग होना बेहतर होता है, लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा, उसे तो दोनों चाहिए ना। उसे माता पिता का घर
1: दोनों
0: भी
1: का
0: चाहिए,
1: प्यार चाहिए,
0: प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का
1: दादी
0: घर
1: का
0: भी
1: भी।
0: चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वही एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है, मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा।
0: बिल्कुल सही है। और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है,
1: जी
0: लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इन चीजों की। लड़ाई झगड़ों के
1: जी
0: लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है और काउंसलर्स मतलब दोनों की बातों को सीक्रेट रखते हैं।
1: जी
0: और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है, यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवादी।

0: उदासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर ना जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का,
1: यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो।
0: जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। हाँ। सुनते हैं ये गाना।

तेरा मेरा साथ रहे, हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली।
1: ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी।
0: हमारी बहनों, दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी।
1: तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बात है। कितनी अच्छी बात है ना।
0: बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था।
1: हाँ,
0: अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई कई सेट होते हैं घरों में। आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में,
1: और मोबाइल से भी सुनते
0: हम
1: हैं,
0: मोबाइल पे भी सुन लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल, बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी। तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है। मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है, इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियां बीबी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए।
1: तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे, हम अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना, पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मन मुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मन मुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है, इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है?
1: जानबूझ के कोई लड़ता नहीं।
0: मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटे छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया।

0: तौलिया यहाँ पर रख दी,
1: गीला तौलिया रख
0: चादर
1: दिया,
0: हाँ
1: हाँ,
0: गीली तौलिया रख
1: या फिर
0: दी।
1: सब्जी लाने के लिए बोला
0: हाँ
1: था तो तुमने एक
0: तो
1: ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी
0: वही
1: वाली हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए,
0: हाँ
1: अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई उसमें कोई
0: कोई
1: कारण नहीं
0: खास
1: होता।
0: बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी के बीच, या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
1: बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में, कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक अधिक हम महत्व देते हैं, कि वही वही बात, ताने मारना, बार बार आलोचना करना।
0: वैसे एक बात बताइए सोना लीजिए, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं?
1: भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ
0: पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का
1: हाँ
0: ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या,
1: मैं
0: कॉफी
1: बना
0: पीनी
1: रहा
0: है,
1: हूँ, तुम पियोगी क्या?
0: हाँ ये वाला, उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई
1: बिल्कुल।
0: मीठी सी चीज रखी है घर में, तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए, तो आपको भी खाना है, या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें मॉर्निंग मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं,
1: अरे
0: या
1: बहुत सारे हैं उसके, तो बहुत सारे की साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए
0: हाँ
1: ये साड़ी
0: ये
1: खरीदना
0: तुम्हारे
1: चाहती
0: लिए
1: हो
0: ले
1: क्या?
0: आए।
1: हाँ, या फिर क्षमा कर देना, सबसे जरूरी बात
0: लेकिन
1: है।
0: वहां पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम अहम नाम
1: ये
0: की दीवार है
1: बहुत मोटी दीवार होती
0: वो ऐसा करने नहीं देती है।
1: है।
0: चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो
1: आज
0: हटाओ
1: तो पूछूंगा ही नहीं, ये आज तो मैं
0: बिल्कुल
1: पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात
0: हाँ
1: करने ही नहीं वाली।
0: तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है,
1: गाना सुनना।
0: सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना।

0: माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि भाई,
0: अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं।
1: ममता जी
0: ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है
1: और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो
0: दिल आ जाता है। क्या लिखा है?
1: एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना, ये क्षमा करने का यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं क्या, नहीं आपने जो बोला था तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना जुबा तक ही नहीं आती है।
0: हाँ वही अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे,
1: वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं
0: शाम तक चाय के साथ।
1: कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकौड़े बनाएगा, है ना।
0: हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बतानी।
1: बहुत सारी रेसिपीज आई है, हमारे बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिख कर भेजी जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज।
0: लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय समय पर ग्लानी की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
1: क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है, कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना, कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए, पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है और बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है।
0: कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है, अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहाँ आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहाँ
1: जाता है,
0: हाँ चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में कर माफी ना मांगे।
1: जी
0: बिल्कुल।
1: वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं।
0: अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना, तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं।
1: आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना।
0: हाँ वो भी एक तरीका
1: है, ऑप्शन अच्छा है।
0: हाँ और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती है जबरदस्ती।

0: मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है।
1: और
0: और
1: एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए चोटन को उत्पात, क्षमा बड़प्पन की निशानी है, क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है।
0: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और
1: और
0: भी तो
1: जी,
0: कुछ
1: एक
0: टिप्पणियां
1: साथी
0: हैं।
1: लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलत

0: और भी तो
1: जी
0: कुछ
1: एक
0: टिप्पणियां
1: साथी
0: हैं।
1: लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं, उसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे, ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं।
0: क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है।
1: पर एक बात ये भी है ममता जी, कि जो रिश्ता होता है ना, कांच की तरह होता है, कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से, बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ दो अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस दो अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास से भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली एक कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है।
0: क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना।

0: बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी माफी मांगे और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए।
1: यही तो
0: और
1: बात आपने कही थी ममता जी, कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल। तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है।
1: सभी
0: अगर
1: की और खासकर बच्चों की भलाई
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा है, ऐसा लिखा है।
1: और एक
0: और
1: साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब
0: अच्छा,
1: हम चाय पीने वाले
0: क्या बात है
1: हैं।
0: भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारे हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए
1: मिटा
0: और
1: दीजिए
0: हाँ
1: दूरी।
0: माफी मांगिए और
1: जी
0: खत्म कर दीजिए झगड़ा।
1: जी
0: और
1: एक अब चटनी की ओर बढ़े,
0: हाँ, चटनी भी बना सकते हैं।
1: अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि, अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करें और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपने पसंद अनुसार पीस लें और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसें।
0: क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटे छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5, लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि, एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले, इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू ना आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून लें, सारी सामग्री को ठंडा होने दें, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस लें। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं।
1: एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काट कर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काट कर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले, इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दे। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ अब बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है, टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काट कर मिक्सी में पीस लिए, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा।
0: क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी उसके साथ थोड़े पकोड़े और ये चटनी
1: चटनी। हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: क्या बात है,
0: जो
1: फिर तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी
0: कि उसके
1: चाहिए।
0: बाद चाय पकोड़े
1: मिल जाए।
0: मिले। तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं।
2: आपको हमारी कसम लौट।

0: भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है,
1: मुझे लगता है
0: और
1: श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना
0: उन्हीं की बात पे कह रही हूँ
1: जी।
0: क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये 1 घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत।
1: आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ आलोक शर्मा मौजूद हैं। आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद यूनुस भाई, यहाँ आना अपने आप में एक सम्मान की बात है। विविध भारती में, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने विविध भारती में बतौर आपातकालीन उद्घोषक तीन दिन बिताए हैं। तीन रातें असल में। उन दिनों जब हम लोग वाणी कोर्स किया करते थे, तो शुरुआत में जो आपातकालीन उद्घोषक होते थे उनको रात की ड्यूटी मिलती थी।
1: बिल्कुल।
2: तो तीन रातें मैंने
1: ओवरनाइट ट्रांसमिशन
2: बिताई हैं।
1: सही है। लेकिन चूंकि बचपन को याद किया, तो बचपन जो है आलोक आपका, वो कॉमिक से जुड़ा हुआ है, ये चस्का कहां से लगा था?
2: बचपन बड़ा मजेदार है मेरा। बचपन असल में कॉमिक्स और रेडियो दोनों से जुड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल।
2: तो क्योंकि हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे, और मेरी जो माता जी हैं उनको रसोई संभालनी पड़ती थी, दुनिया भर के मेहमान होते थे घर में, तो सबको संभालना पड़ता था। और मेरे ख्याल से मैं शायद 5 या 6 महीने का रहा हूँगा, तो एक छोटा रेडियो था, वो मेरे बगल में वो चला दिया करती थी, और मैं वो रेडियो सुन के मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है। तो मेरे ख्याल से रेडियो मेरे जीवन में पहले आया, फिर कॉमिक्स आई मेरे जीवन में। कॉमिक्स इस वजह से आई कि माता जी को कॉमिक्स भी बहुत पसंद थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, वो इंद्रजाल कॉमिक्स बहुत पढ़ा करती थी, फैंटम की बहुत बड़ी फैन थी। तो उनको फैंटम पसंद था, उनके पास अपना कलेक्शन था, तो ये कलेक्शन के साथ ही मैं बड़ा हुआ। और इसके साथ घर में ननिहाल में बहुत कॉमिक्स थी, तो जब भी हम ननिहाल जाते थे, मैं जो भी 2-3 साल का रहा हूँगा, तो कॉमिक्स के जो किरदार थे वो मुझे तब से पता थे। चाचा चौधरी, बिल्लू पिंकी, फैंटम जिसको बेताल बोलते थे उस समय में,
1: बिल्कुल,
2: मैंड्रेक, फ्लैश गॉर्डन, बहादुर, तो इन सबके साथ मैं बड़ा हुआ एक तरीके से कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। ये वो दौर था जब कॉमिक्स किराए पर भी मिल जाती थी और दोस्तों से अदला बदली करके पढ़ी जा सकती थी।
2: वो दौर मेरे जीवन में थोड़ा बाद में आया, क्योंकि मेरे ननिहाल में इतनी किताबें थी कि मुझे किराए पे
1: बाहर से लेने
2: जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय में बाल पत्रिकाएं भी बहुत होती थी, पराग, नंदन, चंदा मामा, गुड़िया,
1: बाल भारती,
2: राजा भैया, कई किताबें,
1: ढेर।
2: और पराग तो मैं अभी भी कहता हूँ कि पराग का बंद होना मेरे ख्याल से हमारी जो पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय हुआ है। पराग, धर्मयुग, जो वो सारी किताबें आ रही थी, तो ये सारी किताबें जो साप्ताहिक थी वो हफ्ते के हफ्ते ननिहाल आती थी। इंद्रजाल कॉमिक्स मेरे ख्याल से पाक्षिक, और पाक्षिक के बाद साप्ताहिक हो गई थी, मासिक किताबें आ रही थी, तो किताबों का एक पूरा पुलंदा था वहां पे, जब भी जाओ तो सब मिल जाता था। और मेरे नाना जी डॉक्टर थे, मगर वहां एक आजादी थी उस घर में, तो ऐसा नहीं कि फिल्मी पत्रिकाओं को नीची निगाह से देखा जाए। तो वहां मायापुरी भी थी, वहां माधुरी भी थी, वहां फिल्मफेयर भी थी, हर तरह की किताबें थी, और उन किताबों के बीच मेरा बचपन गुजरा। तो जो मुझे पसंद आती थी मैं वहां से उठा के ले आता था मेरे पास, और मैंने पढ़ना सीखना और कॉमिक्स पढ़ना सीखना दोनों मेरा एक साथ हो रहा था, तो शिक्षा और कॉमिक्स दोनों साथ में चल रही थी।
1: बिल्कुल। तो ये जो कॉमिक्स का चस्का है, इसका सबसे मजेदार बात यह है कि घर पर कोई विरोध नहीं था।
2: पूरा ये नहीं कहूंगा कि पूरा विरोध नहीं था, क्योंकि थोड़ा होता है ना कि आप जुनूनी पाठक बन जाते हैं एक टाइम, फिर आप खाना पीना छोड़ के पढ़ने लगते हैं, सुबह छोड़ के पढ़ने लगते हैं,
1: कोर्स की किताब के अंदर,
2: कोर्स की किताब के अंदर कॉमिक्स रख के पढ़ने लगते हैं। तो ये तो हुआ, और ये इस हद तक चला गया वो जुनून के फिर तो घर पे थोड़ा विरोध होना स्वाभाविक था, क्योंकि फिर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहीं लग गए हैं। तो ये एक मैं कहूंगा कि बाकी दुनिया में अगर ये 100% हो रहा था, तो मेरे साथ 30% हो रहा था, मगर हो रहा था
1: जरूरी तौर पर।
2: हाँ, जरूरी तौर पे हो रहा था कि और कुछ कर ही नहीं रहा है, सिर्फ कॉमिक्स पढ़ रहा है पूरे समय। तो ये हुआ, मगर बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा विरोध नहीं था।
1: पापा जी को थोड़ा बहुत था। बच्चे जो कुछ पढ़ रहे थे, आप उससे कुछ अलग पढ़ रहे थे या आप भी सेम चीजें पढ़ रहे थे?
2: नहीं, मैं मेरे ख्याल से उनसे काफी अलग चीजें पढ़ रहा था, क्योंकि जो मेरी पीढ़ी के पाठक हैं वो आमतौर पे मनोज कॉमिक्स

0: राजवंश डायमंड कॉमिक्स वाले पाठक रहे हैं। मैं क्योंकि वो चीज़ें भी पढ़ रहा था जो मेरे मामा या मौसियाँ पढ़ रहे थे, मेरे से एक पीढ़ी ऊपर, तो उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स भी थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया थी, धर्मयुग में बच्चों का कोना था, कार्टून कोना डब्बू जी था, जो मेरी जनरेशन के, मेरी पीढ़ी के लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं पता था उसके बारे में, लेकिन मैं वो पढ़ रहा था। इसके अलावा भी क्योंकि मैं भिलाई में पला बढ़ा, औद्योगिक नगर है छत्तीसगढ़ का, पहले वो मध्य प्रदेश था, तो भिलाई में इंडो रशिया कोलैबोरेशन में ये स्टील प्लांट बना था, तो रूस और भारत के लोग वहाँ रहते थे शहर में,
1: बिल्कुल
0: तो हमें बहुत सारी इंटरनेशनल कॉमिक्स भी मिल जाती थी, तो मार्वल, डीसी, एस्ट्रिक्स, ओबेलिक्स, टिंटिन, ये भी उपलब्ध थी हमें पढ़ने के लिए। बहुत लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन मुझे इनका भी चस्का उसी समय से लग गया था।
1: बल्कि रशियन किताबें भी जो
0: लोक
1: उस जमाने
0: कथाएं
1: में
0: हैं,
1: हिंदी अनुवाद आया
0: हाँ
1: करते थे वो भी मौजूद
0: बेहतरीन,
1: रहे होंगे।
0: हाँ यूक्रेनी लोक कथाएं,
1: बिल्कुल,
0: रूसी लोक कथाएं, गोर्की की कहानियां,
1: बल्कि मुल्ला नसरुद्दीन तक
0: मुल्ला
1: छापा
0: नसरुद्दीन, हाँ मुल्ला
1: था
0: नसरुद्दीन था एक बहुत अच्छा
1: राधुका
0: कैरेक्टर,
1: प्रकाशन।
0: हाँ राधु का प्रकाशन, और उसमें कैरेक्टर होता था नाजानू, हाँ
1: क्या
0: नाजानू की
1: बात है,
0: कहानियां।
1: वाह।
0: और एक मैगजीन आती थी मीशा, तो मीशा में एक कैरेक्टर होता था, उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, वो दलिया खाता था और उसको ताकत आ जाती थी, तो ऑलमोस्ट पोपाई पोपाई के जैसा था, मगर
1: बिल्कुल
0: काफी मजेदार कैरेक्टर्स थे ये, तो इनकी भी उपलब्धता थी, और उस समय तो मेरे ख्याल से पूरे भारत में थी,
1: क्या
0: तो
1: बात है,
0: मतलब मीशा तो मेरे ख्याल से सबने पढ़ी है मेरी
1: सबने
0: जनरेशन में।
1: पढ़ी है,
0: जी
1: बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो इस दौर को याद करते हुए एक गाना सुनते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
0: जी बिल्कुल। तो
1: कौन सा गाना होना चाहिए?
0: बचपन के दिन भी क्या दिन थे।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: हमारे घर में टीवी नहीं था। हमारे घर में पहला टीवी जब आया तो मैं 26 साल का था, तो मैंने
1: मतलब
0: खरीदा,
1: बहुत ही लेट आया।
0: बहुत ही लेट आया। तो ऐसा नहीं है कि टीवी पता नहीं था, टीवी पड़ोस में था, हम देख लेते थे वहां जाके। तो मेरे ख्याल से 1985 का साल था, टीवी पे संडे की फिल्म आ रही थी, कब क्यों और कहाँ। उसमें प्राण साहब का एक खतरनाक रोल था, जिसमें वो मुर्दे का रोल करते हैं, उनकी आंखें बल्ज होके बाहर निकली हुई हैं। तो वो देख के मैं बहुत बुरी तरह से डर गया।
1: अरे
0: हाँ, उसके बाद प्राण नाम से मुझे दहशत हो गई।
1: लेकिन ये प्राण नाम दो जगह चलता
0: हाँ, ये मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को ये लगा कि अगर मुझे मेरे मन से प्राण नाम की दहशत हटानी है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि जो चाचा चौधरी है, मेरा सबसे प्रिय किरदार, उसके सर्जक भी प्राण हैं, उनका नाम भी प्राण है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो PRA-01 लिखा होता है कॉमिक्स के ऊपर में, वो प्राण है,
1: हाँ
0: और जो चाचा चौधरी बनाते हैं उनका नाम भी प्राण है। मैं 4 या 5 साल का रहूंगा उस समय, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक खांचा बन गया कि वो जो प्राण है फिल्मों में, वही चाचा चौधरी भी बनाते हैं,
1: वाह
0: बहुत
1: वाह
0: लंबे समय
1: वाह।
0: तक, करीब 1-1.5 साल तक। और बाद में वो फोटो भी, जो प्राण की फोटो आती थी कॉमिक्स के पीछे, प्राण का जन्म कसूर ब्रैकेट में, अब पाकिस्तान में, हाँ, में
1: पाकिस्तान
0: हुआ था। तो वो जो पूरा, तो मैं उस तरह से कॉमिक्स पढ़ता था, मैं वहां से पढ़ता था, प्रकाशक मुद्रक तक पढ़ता था मैं कॉमिक्स।
1: बिल्कुल।
0: तो वो उनका जो एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आता था 85 के आसपास, वो थोड़ा सा प्राण, जो अभिनेता प्राण है, उनके जैसा ही दिखता था वो, मुझे
1: नहीं,
0: मुझे ऐसा लगता था।
1: ये तो जैसा आप देख रहे हो वैसा
0: हाँ,
1: दिख
0: जैसा वो, हाँ,
1: रहा
0: जैसी जिसकी नजर,
1: है।
0: तो
1: हाँ
0: मुझे ऐसा लगता था कि ये वही है। दूसरी चीज, मेरे पिताजी ने मेरे जन्म के पहले कार्टूनिंग के कोर्सेज किए थे, वो कार्टून्स बनाते थे।
1: ओके।
0: हाँ, पारिवारिक व्यापार के क्षेत्र में वो आ गए थे, लेकिन उनका दिल जो था वो कार्टूनिंग में था। तो मुझे ये जरूर पता था कि ये कार्टून्स हैं और इनको कोई बनाता है। और ये जो प्राण वाली कहानी हुई, उसके बाद एक आदत बैठ गई कि अगर मैं कोई कॉमिक्स पढ़ रहा हूं, तो मैं जानना चाहता था इसको लिखा किसने है, इसको बनाया किसने है। कल्पना की उड़ान जरूर थी, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इन्हें कोई बनाते हैं, लोग बनाते हैं,
1: तो उस
0: और
1: दौर
0: ये
1: के
0: एक
1: कौन कौन
0: प्रोफेशन
1: से
0: है।
1: नामों से आप परिचित हुए?
0: अब बहुत सारे, असल में तो जैसे मुझे 5-6 साल की उम्र से पता था कि ली फॉक फैंटम लिखते हैं और साइबेरी उसको ड्रॉ करते हैं, हालांकि उनसे पहले विल्सन मैकॉय और बहुत सारे लोग थे,
1: पहले ही
0: लेकिन
1: बॉक्स
0: उनका
1: में
0: काम,
1: नाम आता था
0: हाँ,
1: ली
0: पहले
1: फॉक।
0: बॉक्स में नाम आता था ली फॉक साइबेरी करके, फॉक एंड बेरी लिखा होता था। तो मुझे पता था ये फैंटम भी लिखते हैं, ये मैंड्रेक भी लिखते हैं, फ्लैश गॉर्डन जो है वो एलेक्स रेमंड बनाते हैं, रिप कर्बी बहुत सारा एलेक्स रेमंड बनाते हैं, बहादुर जो है वो आबिद सुरती लिखते हैं, गोविंद ब्राह्मणिया ड्रॉ करते हैं। तो ये उस 5-6 साल की उम्र में मैंने ये नाम रट लिए थे, क्योंकि मेरे लिए ये भी जरूरी था, चाहे जितनी भी किताबें उस समय आ रही हों, एक सीमा रहती थी इन किताबों की ना, आपको 3 मिलेगी, 4 मिलेगी, 5 मिलेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जिनका काम आपको बहुत पसंद है। तो बजाय एक किरदार को फॉलो करने के, आप उनके क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, कि उनके जो सर्जक हैं, कि अगर मुझे आबिद सुरती का काम पसंद है तो मैं आबिद सुरती का और काम ढूंढूंगा, अगर मुझे प्राण का काम पसंद है तो फिर शायद मैं चाचा चौधरी बिल्लू पिंकी खत्म करने के बाद जाब और दाबू भी पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पर्टिकुलर एक क्वालिटी आ रही है उनके काम की। तो ये उस समय की ट्रेनिंग है मेरे ख्याल से, जो अभी तक है। मैं अभी भी कोई कैरेक्टर को फॉलो नहीं करता, मैं जनरली क्रिएटर फॉलो करता हूं।
1: बहुत बढ़िया बात है। तो कॉमिक्स की ये दुनिया आपको क्या करियर की किसी दुनिया की तरफ ले जा रही थी, या तब कुछ और सोच रखा था जब मम्मी पापा पूछते थे कि बड़े होके क्या बनना है?
0: नहीं, अच्छी चीज ये थी कि हमसे कभी पूछा ही नहीं गया बड़े होके क्या बनना है, तो वो प्रेशर था नहीं सर पे। दूसरी चीज ये थी कि मैं कार्टून्स बनाने लग गया था बहुत बहुत यंग एज में, 4-5 साल का रहूंगा, तो मैंने, जैसे सारे बच्चे करते हैं, तो ऐसा कुछ बहुत महान ड्राइंग्स नहीं कर रहा था मैं, लेकिन मुझे शेहाब की ड्राइंग्स बहुत पसंद आती थी। शेहाब साहब छोटू लंबू किया करते थे, और मुझे लगता है कि वो अपने समय की नहीं, अभी के भी सर्वश्रेष्ठ
1: नायाब व्यक्ति
0: कलाकारों में
1: बिल्कुल।
0: एक हैं। तो शेहाब साहब की जो कला थी वो मुझे बहुत पसंद थी, उनको मैं काफी कॉपी करता था। कार्टूनिस्ट प्राण को कॉपी करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत कम लाइंस में वो बहुत सारी चीजें निकाल लेते थे। तो मुझे ये था कि मैं कार्टून्स बनाना चाहता हूं, लेकिन ये प्रोफेशन बनेगा नहीं बनेगा उसकी कोई क्लैरिटी ऐसी थी नहीं मेरे मन में। कार्टून मैं स्वांता सुखाए अपने लिए बना रहा था। एक और चीज ये थी कि पिताजी का काम ऐसा था कि हमारे ट्रांसफर्स होते थे बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता था कि हर बार नई स्कूल होगी, नई क्लासेस होंगी, नए सहपाठी होंगे, अब फिर से नए दोस्त बनाने हैं, फिर से नए दोस्त बनाने हैं, हर 2-3 साल में स्कूल बदल रहा है, फिर से नए दोस्त बनाने हैं। तो अपने आप में वो काफी प्रेशर वाला काम होता है उस उम्र में। और उस उम्र में अगर मैं

0: बचपन के दिनों की सैर कर रहे हैं और इतनी तरह की कॉमिक्स की हम बात करें, जब ये कॉमिक्स आप पढ़ते थे आलोक, तो कल्पनाओं की वो कौन सी दुनिया थी जिनमें आप सैर करते थे, और क्या अपने लिए कुछ सोचते थे इन कॉमिक्स से जुड़ा हुआ?
1: तो इसकी एक बड़ी मजेदार कहानी है।

0: अब वापस पलट के देखता हूं तो ये जो कॉमिक्स के किरदार थे ये मेरे परमानेंट दोस्त थे, ये शहर दर शहर मेरे साथ चलते आ रहे थे,
1: चलते आ रहे थे।
0: तो इनके साथ मेरा जो जुड़ाव था वो किसी असल दोस्त से ज्यादा हो चुका था जब तक मैं अपने टीनेज में या किशोर वय जिसको बोलते हैं वहां पहुंचा। तो ये एक चीज थी जिसने मेरा जो अटैचमेंट बोलते हैं वो कॉमिक से बढ़ा दिया। मेरे ख्याल से 10 या 11 साल का रहा होगा तब मुझे लगा कि मैं कार्टून्स बना सकता हूँ और मैं ये भेज सकता हूँ छपने के लिए। तो वो
1: अच्छा।
0: कॉन्फिडेंस रैंडमली आ गया था, और घर में प्रेशर था पढ़ाई को लेकर और बाकी चीजों को लेकर भी, लेकिन ये मनाही नहीं थी कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो बस उसका फायदा मिला, मैंने कार्टून्स बना के भेजना शुरू किया, संपादक के खेत सहित सारे कार्टून्स वापस आने शुरू हुए।
1: लिफाफा भेजते थे आप।
0: लिफाफा भेजता था, वो तो भेजना पड़ता था जवाबी लिफाफा, टिकट लगा हुआ, वो तो नियम ही था।
1: जी।
0: तो शुरू में कार्टून्स नहीं बनाए थे, शुरू में मैंने सोचा कि मैं बहुत आलेख वगैरह लिखूंगा, मतलब वो उस उम्र में ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत ज्ञान है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ तो वो
1: कुछ भी कर
0: मेरे,
1: सकते
0: हाँ कुछ
1: हैं।
0: भी कर सकते हैं और वो रहना चाहिए, मुझे लगता है वो बाल सुलभ कॉन्फिडेंस सब में पूरी उम्र रहना चाहिए, ता उम्र रहना चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है पहला जो मैंने लेख लिखा था वो था डोडो पर, और वो मैंने भेजा था सुमन सौरभ में, और
1: अच्छा।
0: सुमन सौरभ से वो रिजेक्ट होके आ गया था, लेकिन मुझे उसमें कोई ऐसे संकोच शर्म नहीं आई थी। मैंने ठीक है दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, क्योंकि खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास, तो आप लिख रहे हैं लिख रहे हैं लिख रहे हैं। फिर मुझे लगा कि शायद मैं ड्राइंग्स बेहतर करता हूँ लिखने से। तो हमारे शहर में एक कार्टून मैगजीन निकला करती थी, अभी भी निकलती है, 30 साल से निकल रही है वो मैगजीन, कार्टून वॉच नाम है उसका। तो कार्टून वॉच मेरे हाथ लगी किसी के दोस्त के घर पे और मैंने उसमें कार्टून्स देखे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अलग तरीके का था, तो वो देख के लगा ये अगर ये छप रहे हैं तो मैं तो छप ही जाऊंगा। हाँ, और वो जो संपादक थे त्रिम्बक शर्मा, उनको मैं त्रिम्बक भैया बोलता हूँ, तो त्रिम्बक भैया असल में सबको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ना निहायत ही घटिया कार्टून हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो छप जाते थे कार्टून्स। तो मुझे लगा ये तो मैं कर सकता हूँ, एंड बनाया मैंने कार्टून्स, दो तीन बनाए और दोनों तीनों छप गए पहली बार में। मतलब कार्टूनिंग में मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ, कार्टूनिंग में मुझे लगा कि यहाँ तो
1: सही
0: चंडे
1: है।
0: गड़ गए, पहले ही दिन पहले ही कार्टून्स गए और 15 दिन में छप के आ गए, किताब आ गई घर पे, उस किताब को लेके मैं घूमता रहा कई महीनों तक, लेकिन हर महीने उसके बाद मैं नियम से कार्टून बनाता रहा। तो इस तरीके से कार्टूनिंग के करियर की शुरुआत हुई मेरी जब मैं शायद 13 या 14 साल का था,
1: और वो भी भिलाई में।
0: भिलाई में। तो उसके थोड़े से पैसे मिलते थे, 100 रुपये, चाहे जितने भी कार्टून, तो ऐसा नहीं था कि पर कार्टून मिलेगा क्योंकि मैगजीन भी छोटी थी, तो 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, 100 रुपये में आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। हाँ तो और कॉमिक्स तो खरीद ही सकते थे, अब मतलब कॉमिक्स के लिए घर में बोलना या यहाँ वहां भागना
1: ये
0: दौड़ना
1: हर्डल
0: नहीं करना
1: खत्म
0: पड़ता था।
1: थी।
0: हाँ मुझे याद है 56 रुपये का सेट आता था, तो दो सेट
1: हाँ,
0: में
1: और वो
0: खरीद
1: बड़ा महंगा लगता था
0: सकता,
1: उस
0: छप्पन रुपये
1: वक्त।
0: बहुत महंगा था लेकिन मुझे 100 रुपये मिल रहा था महीने का, तो मैं दो सेट खरीद सकता था महीने का। तो इस तरीके से मेरी पहली लाइब्रेरी की शुरुआत हुई कॉमिक्स की।
1: क्या बात है। लाइब्रेरी एज इन दूसरों को किराए से
0: हाँ
1: देने
0: हाँ हाँ
1: लगे।
0: मैं हमेशा, मेरा कभी ये विचार था ही नहीं कि मैं किराए पे कॉमिक्स पढ़ूंगा, मुझे मेरी
1: हाँ
0: कॉमिक्स मेरे पास चाहिए थी।
1: अच्छा।
0: तो इसलिए मैं मतलब एक समय था 2-3 साल जब किराए से पढ़ी किताबें, मगर मुझे लगता था इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो मेरी होनी चाहिए, जितनी
1: अपनी
0: बड़ी,
1: होनी
0: हाँ
1: चाहिए।
0: एक दशमेश लाइब्रेरी करके हमारे शहर में लाइब्रेरी हुआ करती थी भिलाई में गोल मार्केट में, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। और मेरा लाइफ का, मेरे मतलब जीवन का एक ही लक्ष्य था कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी तो चाहिए, इससे छोटी नहीं चलेगी।
1: हा।
0: तो फिर मैंने मतलब दशमेश तो बंद हो गई और हमने अपनी लाइब्रेरी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से रन की, मतलब वो हमारे छत्तीसगढ़ में उसको बोलते हैं अंचल, हमारे अंचल की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक थी जो हम लोग रन कर रहे थे,
1: कितने साल चलाई?
0: वो हमने चलाई करीब 4 साल।
1: अच्छा। और किताबें सब वापस आईं सही सलामत?
0: हाँ मतलब देखिए जब ये व्यवसाय बन जाता है ना तो थोड़ा नफा नुकसान तो होता है। तो नफा नुकसान होता था, लोग चुरा के ले जाते थे, फिर हमको ढूंढने जाते थे उनके मोहल्ले में, तो वो एक अपने आप में एक
1: अलग कहानी
0: अलग
1: है।
0: कहानियां हैं, वो एक अलग, मेरे ख्याल से वो हमारा मालगुड़ी डेज
1: बहुत
0: है।
1: सही बात है, बहुत मजेदार बात। लेकिन क्या कार्टूनिंग की कोई बाकायदा ट्रेनिंग लेने की जरूरत महसूस हुई या ऐसा कोई मौका आया?
0: अब लगता है कि ले लेनी चाहिए थी, लेकिन तब कॉन्फिडेंस उस जगह पे था कि कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा था, जो बना रहे हैं सब छप रहा है, और फिर उन मैगजीन्स में भी छपने

0: लगा जो मैगजीन्स में पढ़ रहा था, तो मेरा काम चंपक में आने लग गया, बाल भारती में आने लग गया, बाल हंस में आने लग गया। उस समय की करीब करीब हर मैगजीन में काम आने लग गया था और पैसे भी मिलते थे उसके।
1: हाँ, तब तो
0: तो
1: अच्छे
0: मजे की बात ये
1: पैसे।
0: थी कि पैसे भी आ रहे हैं और वो ठीक ठाक पैसे थे। मतलब उस समय में एक 15-16 साल का लड़का अगर 500 रुपये भी महीने के बना ले रहा है
1: बहुत ज्यादा
0: तो
1: रकम थी ये
0: बहुत
1: तो।
0: बड़ी रकम हो जाती है वो। तो वो पैसे भी आ रहे हैं, आपकी एक लाइब्रेरी भी चल रही है ठीक ठाक, और
1: हाँ,
0: आप कार्टून्स भी बना रहे हैं, तो फिर
1: तो
0: पढ़ाई कौन
1: सेट था
0: करेगा,
1: मामला।
0: पढ़ाई कौन करेगा।
1: अच्छा, फिर
0: फिर मैं 9वीं में फेल हो गया।
1: अरे बाप,
0: हाँ,
1: मतलब ये तो बम गिर गया।
0: तबाह हो गया मैं।
1: अच्छा,
0: तो 9वीं में मैं फेल हो गया, मुझे समझ
1: इसकी
0: में नहीं
1: आगे की
0: आया।
1: कहानी सुनिए। आप ब्रेक लगाते हैं, एक गाना सुनते हैं, कहां तक ये मन
0: सोचना
1: को अंधेरे
0: पड़ेगा,
1: चलेंगे।
0: चलिए कहाँ।

0: नवी में आप फेल हो गए।
1: नवी में मैं फेल हो गया।
0: ये इसकी उम्मीद थी कि नहीं थी?
1: उम्मीद तो कोई नहीं रखता है।
0: हाँ कि फेल हो
1: हाँ
0: जाऊंगा,
1: फेल हो
0: मतलब
1: जाऊंगा
0: पढ़े नहीं
1: लगता है
0: थे।
1: कुछ। नहीं मुझे समझ में नहीं आया पूरा नवी कैसे गया, मुझे नहीं पता है।
0: वैसे
1: वो
0: नवी
1: पूरा
0: होता
1: पूरा
0: भी
1: ऐसा
0: फिसलदार मैदानी है।
1: नवी को थोड़ा सा टफ बनाया जाता है ताकि बच्चा 10वीं में अच्छे स्कोर करे और स्कूल का एक स्कोर बना रहे, तो उसको स्कूल का स्कोर बनाने के लिए मुझे लगता है नवी को टफ बना दिया
0: नहीं,
1: जाता
0: और
1: है,
0: ये समझाना कि भाई मिडिल स्कूल पीछे छूट
1: पीछे
0: गया,
1: छूट
0: अभी
1: गया।
0: होश में आ जाओ।
1: नहीं वो तो आप हाफ पेंट से फुल पेंट पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा था कि मिडिल स्कूल तक
0: बिल्कुल
1: हाफ पेंट था, फिर फुल पेंट आया,
0: हाँ।
1: तो फुल पेंट आई मतलब आप जिम्मेदार हो जाओ। मैं नहीं हो पाया मेरे ख्याल से। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत थी ना, मतलब आप एक तरफ लाइब्रेरी भी चल रही है, आप कार्टून्स भी बना रहे हो, स्कूल में टीचर्स भी आपको एक अलग निगाह से देखते हैं कि इसके तो कार्टून्स छप रहे हैं, तब तक मेरे लेख वगैरह भी छपने

0: लग गए थे। तो मतलब क्लास 9th का एक लड़का है जिसका हर महीने
1: कहीं ना कहीं
0: कहीं ना
1: कुछ
0: कहीं
1: छप
0: कुछ
1: रहा
0: ना
1: है।
0: कुछ छप रहा है। तो वो अपने आप में एक अंदर से तो अपने आप में एक रॉकस्टार वाली फीलिंग रहती है ना कि हम ही हम
1: हाँ
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: भले बाकी सारी चीजों में आप शून्य हो, लेकिन एक वो जगह है जहां आमतौर पे कोई पहुंचता नहीं है, वहां जाके आपने अपना आसन जमा रखा है। तो डांट पड़ती थी स्कूल में कि ये सब करते रहोगे, तुम्हारे इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, ये है वो है। मुझे लगा था निकल जाएगा, नहीं निकला। अब नहीं निकला तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मजेदार बात मैं बताऊंगा आपको कि जो 9वीं में मैं फेल हुआ, उस दिन तो मौत थी मेरी। मतलब लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा फेलियर है वो, क्योंकि आपके सारे दोस्त आपसे 1 साल आगे चले गए, अब आपके साथ बच्चे पढ़ेंगे। उस समय में तो ये लगता है 1 साल छोटा तो बच्चा ही है, अभी तो
1: बिल्कुल
0: 5 साल छोटे भी बराबर के लगते हैं। लेकिन वो था, मोहल्ले वालों को आप क्या जवाब देंगे? सबको पता है आप 9th में थे, तो पूरे मोहल्ले को अगर पता चला कि आप 10वीं नहीं गए, आप वापस 9th रिपीट कर रहे हो, तो क्या होगा? एक तरीके से सामूहिक बहिष्कार हो जाता है जो बच्चा फेल होता है उसका। उसमें बच्चे की गलती है नहीं है,
1: हमारे यहां वो तो सोचा ही नहीं जाता, वो
0: हाँ
1: जो एक्सेप्टेंस
0: स्टिग्मा
1: वाली
0: जिसको बोलते
1: बात
0: हैं ना,
1: है।
0: तो स्टिग्मा आ
1: हाँ
0: जाता है वो।
1: हाँ
0: तो स्टिग्मा तो आ गया था, और आप अपनी नजरों में तो गिर ही चुके हो।
1: हाँ
0: तो एक आप अपनी नजरों में गिरे हो, एक आप अपने पेरेंट्स की नजर में गिरे हो, फिर छोटे भाई बहन है उनकी नजरों में भी गिरे हो, क्योंकि अभी तक आप रोल मॉडल थे और आपने मतलब काफी कुछ अच्छा किया हुआ है अभी तक, आप उनकी नजर में भी गिर गए हैं। मोहल्ले वालों को किसको सच बताएं किसको ना बताएं, पता तो सबको चलेगा, क्योंकि उसमें से कुछ बच्चे हमारे स्कूल में भी हैं। अब उनसे झूठ बोलेंगे आप या सच बोलेंगे, आप फेलियर को एक्सेप्ट कैसे करते हैं? फिर आपके जो दोस्त हैं वो 1 क्लास आगे चले गए हैं, तो आप उनके साथ स्कूल भी नहीं जाते
1: नजरें
0: हैं,
1: कैसे मिलाएंगे?
0: नजरें
1: हाँ
0: कैसे मिलाएंगे? उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि एक फेल होने वाले बच्चे के साथ उनके बच्चे खेलें।
1: हाँ
0: तो ये जो पूरा एक हमारे समाज ने इस पूरी चीज को जैसा स्टिग्मा बना दिया है, उससे मैं गुजरा पूरे 1 साल।
1: पूरे 1 साल।
0: देखिए बाकी लोग तो बढ़ जाते हैं, लेकिन आप वो अपने अंदर लेके चल रहे होते हैं वो
1: बिल्कुल।
0: फेलियर को, और वो फेलियर ताजा ही है
1: घर
0: ना। ये
1: घर
0: एक साल
1: वालों का एटीट्यूड क्या था?
0: कुछ खास ऐसा, मतलब पिताजी ने बोला कि अब चलो मेरे साथ काम भी करना पड़ेगा शुरू तुमको, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई में तो लग नहीं रहा कि तुम्हारा कुछ होने वाला है। तो मैंने उनके साथ काम करना भी शुरू किया।
1: क्या काम था वो?
0: मेरे फादर चॉकलेट्स वगैरह ये करते थे, होलसेल में चॉकलेट्स किराने दुकान वालों को सप्लाई करते थे। तो फिर उन्होंने पूरा भिलाई शहर का जो सप्लाई है मुझे दे दिया। भिलाई शहर मतलब ऐसा बहुत शहर नहीं, कुछ 25-30 दुकानें जो हम रेगुलरली जहाँ सामान सप्लाई किया करते थे, तो वो मुझे दे दिया उन्होंने कि ये तुम करोगे अब। तो मैंने वो शुरू किया। लाइब्रेरी फिर भी चल रही थी, कार्टून फिर भी बन रहे थे,
1: अच्छा, ये
0: हाँ,
1: सब चल रहा था।
0: और ये सब चल रहा था। उसके साथ में मैंने फादर को हेल्प करना भी शुरू किया, वो भी मेरे ख्याल से मैं 48 साल के तो हो गए थे तब तक मेरे फादर। तो वो शुरू किया मैंने, मुझे ये लगा कि मुझे ये भी समझ में आया कि बिजनेस कैसे होता है। मैं आमतौर पे लोगों से बात करने में कतराता था, तो मेरी जो शर्म थी जो मोहल्ले में और लोगों के बीच थी, वो खत्म होने लगी, वो झिझक हटने लगी मेरी। मुझे पता नहीं अगर इसको हम स्ट्रीट स्मार्ट बोल सकते हैं या नहीं, मगर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट आया मेरे अंदर उससे। बहुत बाद में, करीब मेरे ख्याल से उसके 30 साल बाद, मैंने एक शो लिखा, और उस शो को लिखते समय मैंने जो लीड कैरेक्टर है उसका शो का, उसको क्लास 9th में फेल करवाया। इसलिए नहीं कि ये रेवेंज था, इसलिए कि मुझे बहुत मन था कि मैं दुनिया को बताऊं कि जब एक
1: फेल्योर
0: बच्चा फेल
1: का
0: होता है
1: उस
0: तो वो
1: बच्चे के ऊपर
0: अपने
1: क्या असर
0: अपने
1: पड़ता है।
0: आप में वो एक मौत से गुजर रहा होता है, उसके
1: करेक्ट।
0: ऊपर नई चीजें मत ला दो, क्योंकि वो खुद अपनी नजरों में गिरा हुआ है। तो उसकी जितनी हेल्प कर सको कर दो, हेल्प नहीं कर सकते तो नया गड्ढा मत खोदो उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए।
1: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: किस शो में लिखा था ये आपने?
1: ये एक शो था Z5 पे जिसका नाम है फायरफ्लाइज, पार्थ और जुगनू। तो हम
0: बिल्कुल
1: लोग बात कर रहे थे, शुरू से डिस्कशन ये था कि ये क्लास में टॉपर नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉपर्स की कहानियां बहुत देखते हैं, हम उसकी कहानी नहीं देखते जो पीछे छूट जाता है। तो हमेशा से वो आइडिया था कि इसकी कहानी वो होगी कि ये पीछे छूट जाए। तो फिर मैंने अपने अनुभवों में वापस जाके उसको कुरेदा और मैंने कहा कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 9th में फेल हो गया है। तो सबसे पहले तो हमको जाके नया एजुकेशन सिस्टम चेक करना पड़ा कि 9th में फेल होते हैं या नहीं होते हैं। फिर पता चला कि होते हैं,
0: होते हैं होते हैं।
1: हाँ, जहाँ वो कहानी बेस्ड है वहाँ तो होते हैं। तो फिर उस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें जो मैंने झेली थी,
0: वो आ गई
1: बहुत सारी
0: वहां।
1: चीज़ें जो लोगों ने मुझे बोली थी, वो सब कुछ वहाँ मैंने उस कहानी में कहा। और बहुत सारे लोग उसके बाद, बहुत सारे लोगों के मुझे कॉल्स आए, एक दो पॉडकास्ट में पॉडकास्टर्स ने मुझे बताया कि वो भी उस दौर से गुजरे हैं,
0: गुजरे
1: एक
0: थे।
1: एक दो दो बार फेल होना या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगातार फेल हो जाना 3 बार, वो सब उस स्टिग्मा से बहुत लोग गुजरे हैं। उसको सही वॉइस नहीं मिली है अभी तक, वो निकल के नहीं आया, कथारसिस नहीं हुई है लोगों की। तो मुझे लगा ठीक है, मेरी कथारसिस के बहाने मतलब और बहुत सारे लोगों की कथारसिस हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अनुभव हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कड़वे हैं, अगर अंदर रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक जगह
0: एक्सप्रेस
1: पाके
0: होते
1: निकल
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इस पूरे दौर से निकले आप कैसे और फिर आगे चीजें कैसे बढ़ी?
1: ये बहुत मतलब फिक्शनल साउंड करेगा, लेकिन हम लोगों के वहां उसको सेकंड ईयर बोलते थे फेल होने के बाद। नाइन्थ
0: अच्छा,
1: सेकंड
0: ओह, ये एक तरह की
1: ईयर, ये एक
0: राहत
1: तरीके
0: थी।
1: की, हाँ, राहत थी।
0: हाँ।
1: तो मेरा जो सेकंड ईयर था उसमें पता नहीं कैसे मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट बन के भी निकला, जबकि मैं पढ़ भी नहीं रहा था।
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अब खोने के लिए कुछ था ही नहीं ना,
0: हाँ
1: तो
0: बिल्कुल,
1: घबराहट नहीं थी।
0: हाँ
1: तो अब मैं ज्यादा खुल के मजे कर रहा था क्लास में, क्योंकि
0: हाँ
1: ये सब मेरे से छोटे थे, मेरे क्लासमेट्स, दिमाग में तो यही था। तो अब मुझे जो घबराहट थी, जो बेचैनी थी पिछले साल अपने साथ के लोगों के साथ में, वो बेचैनी पता नहीं कहीं गायब हो गई। तो जैसे मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे सेकेंड ईयर में, इन तीनों में मैंने टॉप किया। और हमारे यहाँ 7-8 सेक्शंस होते थे, तो केमिस्ट्री की टीचर का तो मैं मतलब बहुत ऐसा प्रिय छात्र बन गया था, क्योंकि मोल थ्योरी ये वो पता नहीं कैसे मुझे समझ में आने लगी चीजें। तो 9th और 10th यूं करके निकल गए, मतलब चुटकी बजाते 9th और 10th निकल गए। मैं रैंक्स अच्छे ला रहा था, मेरी लाइब्रेरी बहुत बड़ी हो गई थी इस बीच में।
0: अच्छा,
1: हाँ, मेरी लाइब्रेरी हमारे शहर की सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक थी। मैं मतलब 14 साल के बाद जब मैं भिलाई एक बार गया था, तो मेरी लाइब्रेरी की सील लगी हुई किताबें मैंने रद्दी में खरीद के वापस लाए थे। इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि 14 साल तक वो किताबें सर्कुलेट हो
0: सर्कुलेट
1: रही
0: होती
1: थी
0: रहीं,
1: उसी
0: क्या
1: शहर में।
0: बात
1: हाँ, तो
0: है।
1: ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी, मेरी लाइब्रेरी बड़ी हो गई। मेरे फादर का काम मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था, तो वो एक और बेशर्मी भी आ गई थी, चमड़ी मोटी हो गई ना आपकी, आप जितना सुन सकते थे, जितना झेल सकते थे, आपने झेल लिया था। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत मददगार साबित हुआ मेरे लिए, कि वो फेलियर उस समय के लिए तो मौत थी, मगर अगले 1-8 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि मेरे चरित्र निर्माण में बहुत बड़ा हाथ था उस चीज का। तो
0: एक
1: वो एक,
0: नए सिरे से बनने की तैयारी थी।
1: जी, वो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रतिशोध की ज्वाला भी थी।
0: बिल्कुल, ये कॉमिक्स वाला वर्ड आ गया।
1: सुपर कमांडो ध्रुव
0: प्रतिशोध
1: की
0: की
1: पहली किताब, हाँ, प्रतिशोध की
0: ज्वाला।
1: ज्वाला थी वो, और वो सब मेरे लिए काम कर गई बेसिकली।
0: हाँ,
1: तो
0: बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। यहां एक गाना सुनते हैं।
1: जी, बिल्कुल।

0: मुंबई कैसे आ गए आप लोग?
1: हाँ, ये बहुत लंबी कहानी है।
0: अच्छा,
1: तो मैं कॉमिक्स में काम करना चाहता था, लेकिन जब तक मैं 20 का हुआ तब तक भारत में कॉमिक्स खत्म हो गई थी करीब
0: हाँ,
1: करीब
0: धीरे धीरे
1: धीरे
0: धीरे धीरे
1: धीरे
0: करके
1: धीरे।
0: और
1: मेरी मेरी
0: उनका
1: पीढ़ी,
0: अंत
1: मेरे
0: हो
1: ख्याल
0: गया।
1: से कॉमिक्स पढ़ने वाली आखिरी पीढ़ी थी। अभी लोग आ रहे हैं वापस, लेकिन उस समय तो सब खत्म हो गया था। सो जब मैं 20 का हुआ और मैंने मेरा कॉलेज खत्म किया, कॉलेज भी मैंने मजबूरी में खत्म किया था, मेरा मन नहीं था कॉलेज करने का। मतलब 12वीं आते आते तक मुझे समझ में आ गया था कि ये शिक्षा प्रणाली मेरे लिए तो नहीं बनी है। बहुत लोगों के लिए बनी है, मैं शिक्षा प्रणाली के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मेरे लिए नहीं थी वो। क्योंकि अब मैं जब स्कूल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे उनकी कहानियां याद है, मुझे कुछ भी याद नहीं उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया। तो वो शिक्षा प्रणाली से मेरा थोड़ा सा, मैं उखड़ चुका था 12वीं करते करते तक, और मुझे लगा कि मैं खुद पढ़ सकता हूँ। मेरे लिए जब तक मैं कोई चीज़ को खुद करके ना देखूँ, मेरे लिए सीखना बहुत मुश्किल है। तो मैं घर आके किताबों को पढ़ के खुद से अपनी थ्योरीज बना के किया करता था चीज़ें। कार्टून छप रहे थे लेकिन मुझे मज़ा आना बंद हो गया।

0: कार्टून्स में मुझे एक अवार्ड मिला था आर के लक्ष्मण से।
1: अच्छा
0: तो हाँ, ये उसी स्कूल और कॉलेज के बीच में 2 बार मिले थे नेशनल अवार्ड्स। तो उसमें एक बार आर के लक्ष्मण ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लान बी क्या है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा प्लान बी क्या होता है। तो उन्होंने बोला अगर कार्टूनिंग में नहीं हुआ तो क्या करोगे। तब तक मुझे पता ही नहीं था मुझे क्या करना है, तब तक मुझे पता था मुझे यही करना है। तो ये बड़ा कठिन सवाल मेरे सामने है, और वही आर के लक्ष्मण अगर फेंक रहे हो सवाल आप पे, तो आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा।
1: बिल्कुल
0: तो बहुत गंभीरता से मैंने इस पे विचार किया। मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिकल कार्टून्स की उम्र नहीं होती, सुबह छपता है शाम तक बासी हो जाता है, खत्म हो जाता है। और मेरे बहुत सारे दोस्त ये कर रहे थे, मैं ये करना चाहता था। मैं अखबारों के ऑफिसेज जाता था, कार्टून्स देखे आता था, कभी छप जाते थे कभी नहीं छपते थे, कभी कोई अखबार वाला कॉल कर देता था कि इतना 3 कॉलम बचा हुआ है कुछ ड्रॉ करके दे दे जल्दी से, तो
1: अरे
0: 3 कॉलम का फटाफट कुछ ड्रॉ करके दिया, उन्होंने 50-60 रुपए दे दिए। तो ये चल रहा था, इसको बहुत लोग संघर्ष बोलते हैं, हमारे लिए बहुत मजे का काम था, क्योंकि एक ही सड़क पे सारे अखबारों के ऑफिसेज होते थे, तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, कहीं ना कहीं छप जाता था।
1: वाह
0: और कुछ दोस्त थे जो परमानेंट जॉब में लग गए थे इन अखबारों में, वो अभी भी उन अखबारों के साथ काम कर रहे हैं। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं, मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन उन शहरों में नहीं लग रहा था जहां मैं बड़ा हो रहा था। मुझे ऐसा

0: लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं कार्टून नहीं बनाऊंगा। मैं बहुत क्लियर था इस मामले को लेके कि मैं पॉलिटिकल कार्टून्स नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे उससे कोई दिक्कत है, इसलिए कि 1999 सन 2000 का साल था वो, और देश की हवा बड़ी विचित्र सी थी। दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने देखा कार्टूनिस्ट प्राण की एक लेगेसी है, अनुपम सिन्हा की एक लेगेसी है, ली फॉक की एक लेगेसी है, ये मेरे हीरोज़ हैं। तो अगर मैं लेगेसी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ तो मुझे आर के लक्ष्मण बनना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे 50 साल कार्टून बनाने पड़ेंगे, और मुझे ऐसा इतना पेशेंस मेरे में नहीं था, अभी भी नहीं है। हाँ मतलब मैं लगातार काम कर सकता हूँ, लेकिन वो एक शिद्दत के साथ एक ही चीज़ करते रहना और फिर उसमें किसी दिन जाके एक लेगेसी क्रिएट करना, वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो ये बड़ा गलत भी साउंड कर सकता है, मगर मुझे मेरे काम पे बहुत गर्व है। जो भी मैं कुछ करता हूँ उससे अटैच भी हूँ और डिटैच भी हूँ। अटैच हूँ जब तक मैं उसको बना रहा हूँ, डिटैच हूँ द मोमेंट ये मेरे हाथ से मैंने बाहर भेज दिया, उसके बाद मैं उसको पलट के भी नहीं देखूंगा। लेकिन जब तक मैं उसके साथ हूँ तब तक मैं उसके साथ पूरी तरह से हूँ। तो वो पॉलिटिकल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था,
1: बिल्कुल
0: वो सोशल कार्टूनिंग में पॉसिबल नहीं था, कॉमिक्स बंद हो चुकी थी। तो उस दौर में मुझे ऐसा लगा एनिमेशन मेरे लिए सबसे मुफीद करियर होगा, और एनिमेशन कुछ नहीं पता था मुझे उसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि एनिमेशन सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे मांग नहीं सकता हूँ। तो अब मुझे कहीं जाके स्टूडियो में किसी जगह पे जाके नौकरी मांगनी पड़ेगी, और वहाँ जाके मैं एनिमेशन सीख भी लूँगा, और मैं एक

0: मेरा गांव छोड़ना पड़ेगा। तब तक हम उड़ीसा शिफ्ट हो चुके थे भिलाई से, और ये बहुत छोटा सा गांव था, इसका नाम आताबिरा है। मतलब वहां आप आलोक शर्मा आताबिरा लिख के चिट्ठी डालिए, मेरे घर आ जाती थी, इतना छोटा गांव था वो। तो उसके लिए उस गांव से निकलना बहुत जरूरी था। उस बीच में गौतम कॉमिक्स नाम की कंपनी शुरू हुई थी, जिसने मार्वल और डीसी पब्लिश करना शुरू किया था। तो मैंने अपना बहुत सारा काम उनको भेजा, उन्होंने बोला ये सब कचरा है, मेरे पिछले 6, 7, 8 साल की मेहनत को। उन्होंने बोला ये क्वालिटी हमें चाहिए नहीं। तो अब मेरे मन में ये हुआ कि इनको, मतलब अभी तक तो मैं तुरम खां था, जो भी भेज रहा था सब छप रहा था, ये अचानक एक कौन आ गया है जो मुझे बोल रहा है कि सारा खराब है, हमको ये कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं उनको मिलने गया बैंगलोर, वहां मैंने जाके टेस्ट दिए। तो वो भी एक चीज है कि मुझे टेस्ट वगैरह देने से कोई गुरेज नहीं है, मैं अभी भी देने को तैयार होता हूँ, और सैंपल कोई मांगे मुझसे मैं अभी भी सैंपल करने को रेडी रहता हूँ। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आपका ऑडिशन है ही हमारा।
1: बिल्कुल
0: बड़े बड़े एक्टर्स अगर माइंड नहीं करते ऑडिशन देना, तो मतलब मुझे क्यों इस बात से गुरेज हो कि मुझे ऑडिशन देना पड़ रहा है। तो मैंने वहां जाके फिर फाइनली ऑडिशन दिया। बहुत खींचतान के बाद मेरा काम उनको समझ में आया, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुला लिया, और मेरा पहला पब्लिश्ड काम मार्वल कॉमिक्स में आया।
1: वाह वाह
0: हाँ, तो
1: वाह,
0: पहली कॉमिक्स जो मैंने की वो मार्वल कॉमिक्स थी। मैं अनक्रेडिटेड था, मैं इंकर था स्पाइडरमैन इंडिया में। तो स्पाइडरमैन इंडिया अब तो बहुत बड़ा कैरेक्टर बन गया है, 2004 में वो नया नया कैरेक्टर आया था, अब तो स्पाइडर वर्स वगैरह आ गया है। तो वहां से मेरी कॉमिक्स की जर्नी शुरू हुई, लेकिन तब तक मैं समझ गया था कि कॉमिक्स बहुत

0: मैं लिखना ज्यादा पसंद करूंगा ड्रॉ करने से, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे चित्र बनाते हैं उस जगह। तो मेरे ख्याल से भारत के और विश्व के सबसे बेहतरीन कलाकार उस
1: मौजूद
0: स्टूडियो में
1: थे।
0: थे, तो उनके बीच में जाके 12th प्लेयर बनने का कोई फायदा नहीं है, तो क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। और मैं उनको कहानियां सुनाता था, क्योंकि मुझे कहानियों का शौक बचपन से रहा है, तो उनको कहानियां पसंद आने लगी। उन्होंने कहा कि तू लिखना क्यों नहीं शुरू करता है, तू लिखेगा तो हम चाहेंगे कि उन कहानियों पर हम लोग ड्राइंग करें। वहां से थोड़ा सा लिखने की तरफ मेरा रुझान बढ़ना शुरू हुआ, तब तक मैं
1: मार्वल
0: लिखता
1: के
0: नहीं
1: साथ।
0: था। अब गौतम कॉमिक्स था, गौतम मार्वल के साथ कर रहा था ये चीजें, तो ये आर्टिस्ट ने मुझे बोला। लेकिन तब तक ये हो गया था कि मैं ब्रेक चाहता था उस चीज से, ड्राइंग से, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज को आप बहुत प्यार करते हैं और फिर धीरे धीरे उसकी डेडलाइंस हो जाती हैं, फिर धीरे धीरे उसमें से ना जो उसका जो आनंद है ना, वो पूरा रस
1: निकल जाता
0: निकल
1: है।
0: जाता है। अब वो काम बन जाता है कि आप
1: यस
0: बैंक में हैं या कॉमिक्स बना रहे हैं, दोनों एक काम हो गया है। तो जब ये हो गया है तो, और बैंक का काम इनफैक्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं, ये तो बहुत एकाकी काम है। तो ये बड़ा अजीब सा माहौल हो गया था कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी, जिसमें मैंने 6-7 साल अपने दिए थे, उसमें से आनंद थोड़ा थोड़ा निकलने लगा था। और मुझे उस बीच में जापानी कॉमिक्स मांगा, जिनको बोलते हैं मांगा, मुझे बहुत पसंद आने लगी। तो मैंने चाणक्य पे एक मांगा बनाना शुरू किया खुद से, और मुझे बोला गया कि मांगा का भारत में कोई भविष्य नहीं है, तो इसको तुम बंद कर दो। तो मैंने कुछ 30-40 पन्ने उसके बना लिए थे, मैंने उसको बंद किया। मैं एक रेडियो स्टेशन गया, FM रेडियो तब नए नए आए थे, जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया, और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ, उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, मैं अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के RJ हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे
1: बिल्कुल
0: स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था, कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं, और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था, मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में, तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था, तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, फिर जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था, तो जो RJ थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट्स थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था, तो उन्होंने बोला पक्का, मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था, और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था
1: काम
0: ऑडिशन
1: का
0: देने,
1: आदमी है।
0: लेकिन आदमी काम का है। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे ऑडिशन में, अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। तो मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने, वो 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
1: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
0: नहीं, कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीने अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं, जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का, और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं, मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे। मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी, वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो
1: वाह।
0: फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर

0: मैंने रेडियो शोज भी किए, फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
1: करेक्ट
0: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई, तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के
1: बिल्कुल।
0: सामने की, तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: यहां एक गाना सुनते हैं
0: लिफ्ट करा दे।
1: अदनान समी की आवाज।

0: ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।
1: आज के मेहमान।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजने को है। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं सी एफ वन विभाग सरगुजा।

0: ಶಿವನೆ ಗಜಿರಾಜ್
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के रामानुज नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खजूरी, सतकोना, मेंढरा, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाण, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनकपुर, चीनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 2 है।

0: ये असकला दोरना जरहाडी ढेकी डोली एरन नवापारा बेनई गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये लोटा पानी धुमाडांड श्री टोली उपका पानी साजा पानी कुदरा झरिया सोनार पहरी बहमा बड़नी झरिया जुमे केला छेरा घोघरा बटई केला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल की छाल धर्मजयगढ़ बोरो बाकारुमा लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 128 है। ये प्रेमनगर पोटिया इंचपारा कुड़े केला बोजिया जमाबीरा आमापाली पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में दो हाथी विचरण कर रहे हैं। ये पीड़िया सुईयारा बोतली सेंद्री पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी मड़ई लोधीबहरा मतीन आमाटिकरा नवापारा झुनकीडी जुनवानी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये बंगूरसिया जुनवानी भैंसगढ़ी कंटाझरिया बटुरा कछार अमलीडी सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल दलदली तालाझर मुरुमडी फुरफुंदी गुड़ागढ़ ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारीपानी कोनारी बुड़ार जिडार पायली खंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: हमार हाथी हमार गोट ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आशा फिल्म के गीत से। आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी और साथियों की हैं। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

और अब आगे बढ़ते हैं नमक हलाल फिल्म के गीत की तरफ। आवाज है इसमें किशोर कुमार, आशा भोसले की। गीतकार अनजान ने लिखा है इसे और संगीतबद्ध किया है भप्पी लाहिरी ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

नमक हलाल फिल्म के गीत के बाद अब आगे बढ़ते हैं चमेली फिल्म के गीत की ओर। आवाज़ है इसमें सुनिधि चौहान की, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन है संदेश शांडिल्य का। तो लीजिए सुनिए चमेली फिल्म का ये गाना।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। और लीजिए, अब पेश है आपके लिए रोटी कपड़ा और मकान फिल्म से लिया हुआ गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ है इस गीत में, गीतकार हैं वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

और अब संगीत से मनोरंजन की दिशा को थोड़ा सा बदलते हैं। आप तक पहुंचा रहे हैं चालबाज फिल्म का अगला गाना। आवाजें अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की है। आनंद बख्शी ने लिखा है गीत को और संगीत की धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। लीजिए सुनिए ये थिरकता हुआ गीत।

और अब कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, चांदनी फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आशा भोसले और विनोद राठौड़ की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत निर्देशन शिव हरी का है। लीजिए सुनिए।

और इसी गीत के बाद चित्रपट संगीत कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:35 होने वाले हैं और अब लीजिए, हम प्रसारित कर रहे हैं युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त महक। स्वागत है आपका हमारे आज के युवा जगत कार्यक्रम में। उम्मीद करती हूं कि आप अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रख रहे हैं। वैसे भी बदलते मौसम के साथ ये और भी जरूरी हो जाता है। बारिश की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और ठंडी हवाएं। मानसून का मौसम जितना सुहाना लगता है, उतना ही ये अपनी सेहत के लिए सतर्क रहने का संदेश भी देता है। ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, दूषित पानी और मच्छरों से होने वाली बीमारियों की वजह बन सकती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की देखभाल की और उन छोटी छोटी आदतों की जो बेहद जरूरी हैं, जिन्हें अपनाकर हम मौसम से खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। हम अमूमन ये कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जरा सोचिए, क्या दिन भर थकान महसूस होना सामान्य है? क्या बिना वजह चिड़चिड़ापन, तनाव या हर समय भाग दौड़ में रहना सामान्य है? आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अपनी गाड़ी की सर्विस समय पर करा लेते हैं, मोबाइल की बैटरी कम होते ही उसे चार्जर पे लगा देते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर

बार बार थकान, दर्द या तनाव के संकेत देता है तो हम अक्सर उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि हम डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा और मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से पहले के मुकाबले ज़्यादा जूझ रहे हैं। दरअसल स्वस्थ होने का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, बल्कि शरीर का एनर्जेटिक होना, मन शांत हो, तभी हम असल मायनों में स्वस्थ कहलाते हैं। दोस्तों, बातें आगे भी जारी रहेंगी, पर फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत गीत। गीत हमने लिया है फिल्म जानी दुश्मन से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की। धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसे लिखा है वर्मा मलिक ने। पसंद करने वाले हमारे साथी हैं फोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, करण, राहुल, चंपा साहू, सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना, हसन, नाजिया, इब्राहिम, सरगांव से हैं चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, कृष्टि पटवा, भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव, नवीन, युवराज साहू, दुर्ग से ही हमारे साथी हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र और मिथिलेश वर्मा, रिंगनी से हमारे साथी हैं दिनेश और करुणा वर्मा, आर्यनगर कोहका से हैं उत्तम सिंह, मोरस, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, धमना से हमारे साथी हैं अमित, जंगेल, शकुन, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि, बागामुड़ा से हैं प्रज्ञा नंदेवांगन, नंदिनी, प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन, सूरजपुर से हैं मानिक राम प्रजापति, सविता, घनश्याम, हरिशंकर, रत्नेश, प्रशांत, हेमंती, रामचंद्र गुप्त और पांडे राम रजवाड़े। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

दोस्तों, जैसे किसी मधुर धुन की खूबसूरती उसके सही सुर और सही ताल से होती है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन की असली लय भी अच्छे स्वास्थ्य से बनी रहती है। लेकिन एक सवाल है, क्या हम अपनी सेहत का ध्यान तब रखते हैं जब कोई परेशानी सामने आ जाती है, या फिर उससे पहले भी कुछ कर सकते हैं? दरअसल अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का इलाज कराना नहीं है, बल्कि बीमारी को होने से पहले ही रोकना भी है। इसे ही हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल कहते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत नहीं होती। समय समय पर जांच कराएं, बच्चों का और बड़ों का वैक्सीनेशन समय पर करवाएं, संतुलित भोजन लेना, एक्सरसाइज को रूटीन का हिस्सा बनाना और अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखना, ये छोटी छोटी आदतें कई बीमारियों से हमारी सुरक्षा कर सकती हैं। हम अक्सर कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता, लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम आज अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय निकालें तो शायद कल हॉस्पिटल के चक्कर लगने से हम बच सकें। स्वस्थ रहने की शुरुआत किसी बड़ी दवा से नहीं होती, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी आदतों से होती है। अब अगर आज के लाइफस्टाइल की बात करें, आज का दौर डिजिटल है। पढ़ाई हो, नौकरी हो, बैंक का कोई काम हो या अपनों से बातचीत, मोबाइल और लैपटॉप हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बिल्कुल बनाया है, लेकिन इसके साथ एक नई जिम्मेदारी भी सामने आई है, अपनी सेहत का ख्याल रखने की। हम सब ने ऐसा कई बार महसूस किया है कि हम घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, गर्दन झुकी रहती है, कमर पर जोर पड़ता है और आंखें लगातार स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। धीरे धीरे यही आदतें गर्दन और पीठ के दर्द, आंखों की थकान और शारीरिक गतिविधि में कमी जैसी समस्या का कारण बन सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी से दूरी बना लें। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि इसके साथ संतुलन भी बनाया जाए। बीच बीच में स्क्रीन से ब्रेक लें, थोड़ा टहलें, शरीर को स्ट्रेच करें। यकीन मानिए, ये छोटा सा बदलाव भी शरीर के साथ साथ हमारे मन को भी तरोताज़ा महसूस करा सकता है। और जब बात हो रही हो संतुलन की, तो इस मौसम का जिक्र बहुत ज़रूरी है। बरसात में अक्सर बाहर निकलना भी कम हो जाता है और हमारा ज़्यादातर समय घर में ही बीतता है। ऐसे में स्क्रीन का समय अनजाने ही और

और बढ़ जाता है। इसलिए इस सुहाने मौसम का लुत्फ ज़रूर लें, पर खुद को एक्टिव भी रखें, एक्सरसाइज करें, योग करें। आखिरकार मौसम चाहे कोई भी हो, अगर हमारी आदत संतुलित है तो स्वास्थ्य भी हमारे साथ बना रहता है। दोस्तों, बातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, पर फिलहाल चलते हैं उस क्रम की ओर जिसका आप सभी को इंतज़ार रहता है। क्रम है सवाल जवाब। लीजिए, नोट कीजिए हमारे कुछ नए सवाल। हमारा पहला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपके लिए दूसरा सवाल है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? दोस्तों, तीसरा सवाल है, सर्वेश कुशारे ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में रजत पदक जीता है? दोस्तों, चौथा सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है और इसे 1896 में पहली बार

लीजिए नोट कीजिए हमारे कुछ नए सवाल। हमारा पहला सवाल आपके लिए है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है? आपके लिए दूसरा सवाल है, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? दोस्तों तीसरा सवाल है, सर्वेश कुशारे ने ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में रजत पदक जीता है? दोस्तों चौथा सवाल है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है और इसे 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में किसने गाया था? दोस्तों हमारा पांचवा और आखिरी सवाल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये थे आपके लिए हमारे कुछ सवाल, आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों सही जानकारी हमें बेहतर फैसले लेने में मदद तो करती है, लेकिन सेहत की असली तस्वीर तभी पूरी होती है जब हम अपने शरीर के साथ साथ अपने मन का भी पूरा ख्याल रखें और खुद से ये सवाल करें कि क्या मेरा मन भी उतना ही स्वस्थ है जितना मेरा शरीर, क्योंकि अच्छी सेहत की शुरुआत सिर्फ स्वस्थ शरीर से नहीं बल्कि स्वस्थ मन से भी होती है। युवाओं से लेकर मध्यम आयु वर्ग तक कई लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पढ़ाई और करियर का दबाव, काम की जिम्मेदारियां, आर्थिक चिंताएं, अकेलापन और ये तेज रफ्तार जीवन शैली, ये सभी मन पर गहरा असर डाल सकते हैं। ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत बन सकता है हमारा परिवार और हमारे अपने। कई बार हम चाहते हैं कि कोई हमें सिर्फ सुन ले, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सलाह के सिर्फ हमें सुने। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा शख्स है तो कोशिश करें कि आप उसके वो दोस्त बनें और उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, आप भी हर मोड़ पर उनके साथ खड़े हैं। परिवार का साथ, दोस्तों का हाथ और खुलकर संवाद मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने में बहुत मदद करते हैं। और अगर आपको ये महसूस होता है कि आपको या आपके किसी अपने को विशेषज्ञ की ज़रूरत है तो बिना किसी संकोच के डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। याद रखिए, मुस्कुराता चेहरा हमेशा इस बात की गारंटी नहीं होता कि उनका मन भी उतना ही खुश है। इसीलिए अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों का भी हाल पूछिए, हो सकता है आपका एक छोटा सा सवाल किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाए। दोस्तों जिंदगी की धूप में अपनों का साथ किसी ठंडी छांव से कम नहीं होता। आइए इसी एहसास से सजा ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। गीत है फिल्म हरजाई से, आवाज़ है लता मंगेशकर की, धुन तैयार की है आरडी बर्मन ने और इसे लिखा है नदा फाजली ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे साथी हैं, जाफराबाद से हैं सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, सरवत, प्रणाली, सानवी, हर्षिता। ततरंगी भाटापारा से हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। पद्मा टॉकीज नेपा नगर से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सूरभि, अश्विन और मंगलाबेन और साथ ही हैं राजेंद्र जी शाह। पौड़ी भाटा से हैं दिलीप चंदन, चोवाराम यदु, निखिल, वसुंधरा, प्रांजल। बालोद से हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली, बेबी पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर। सावदपुर से हैं ऋषि और रितेश सेन। पाटन से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। लच्छनपुर से हमारे साथी हैं रामजी साहू, जीवनलाल, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत गीत।

दोस्तों, अपनों का साथ मन को सुकून देता है, और जब मन सुकून में हो तो मौसम का हर रंग और भी खूबसूरत लगने लगता है। लेकिन मानसून की असली खूबसूरती तभी है जब हम इसकी फुहारों का भी आनंद लें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। वैसे ख्याल रखना शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है, और इसी एहसास को अगर कोई खामोशी से जीता है तो वो है माँ। घर की छोटी बड़ी ज़रूरत से लेकर अपनों की पसंद नापसंद तक वो सब याद रखती हैं, बस कई बार अपनी सेहत को ही भूल जाती हैं। इसीलिए आज ज़रूरी है कि हम माँ की सेहत की भी उतनी ही चिंता करें जितनी वो हम सब की करती हैं, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक नई पीढ़ी, एक मजबूत पीढ़ी की नींव रखती है। इन दिनों विश्व स्तनपान सप्ताह भी मनाया जा रहा है। ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि बच्चे के जीवन की सबसे अच्छी शुरुआत माँ के प्यार के साथ साथ उसके पोषण से भी होती है। विशेषज्ञ ये भी सलाह देते हैं कि जन्म के पहले घंटे के अंदर बच्चों को पोषण दिया जाए, और साथ ही पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दिया जाए। इस दौरान पानी, शहद या कोई भी बाहरी चीज नहीं देनी चाहिए। इससे बच्चे का पोषण तो बना ही रहता है, और ये बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत बनाने में भूमिका निभाता है। जब हम माँ और बच्चे की बात करते हैं तब ये जरूरी हो जाता है कि हम नई माँ को भी उतना ही प्यार और सहयोग दें, उसे कभी भी अकेलेपन का शिकार ना होने दें। उसे भावनात्मक साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद उसे बैलेंस डाइट जरूर दें। डॉक्टर्स ने जो भी कैल्शियम या आयरन की टैबलेट्स उन्हें दी हैं उसका भी खास ख्याल रखें। कोई भी घरेलू नुस्खा, लोशन या कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के बगैर लेने से बचें। इसके साथ इस बात का भी बेहद ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी माँ को कंपेयर ना करें। सबका तरीका, सबकी लाइफस्टाइल, सबका रिकवरी पीरियड अलग हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी गलत या सही है। अगर आप किसी भी माँ को किसी भी बात पर कोई अच्छी सलाह देना चाहते हैं तो वो बात उनके सामने ज़रूर रखें, पर इस बात का भी ख्याल रखें कि वो बात पूरे प्यार और संजीदगी से रखी गई हो। वैसे भी ये दौर नई माँ के लिए भावनात्मक उतार चढ़ाव का होता है। इस बात से आप बच्चे और माँ को एक सुरक्षित माहौल देते हैं जहाँ बच्चा भी हेल्दी रहता है और माँ भी। अगर फिर भी प्रसव के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन या किसी भी मानसिक चुनौती का सामना करना पड़े तो आप बेझिझक डॉक्टर्स और काउंसलर्स की मदद लें। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो ये है कि माँ और बच्चे की देखभाल सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। एक संवेदनशील परिवार ही माँ के आत्मविश्वास और मुस्कान को फिर से लौटाने में एक साथ देते हैं। इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर अपने आसपास की हर माँ का थोड़ा सा ख्याल रखिए, उन्हें आराम दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए, और ये एहसास दिलाइए कि इस सफर में वो अकेली नहीं है। दोस्तों, ये तो बातें हुई सेहत की देखभाल की। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। गीत पसंद करने वाले हमारे साथी हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। तखतपुर से हैं जयमुन कोल, दिलीप, भुवनेश्वर और रामायणी कोल। भाटापारा से हमारे साथी हैं गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश। अटौद बाजार लाहौद से हैं कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार, समीर पटेल और राजकुमारी पटेल। इन्होंने पसंद किया है गीत फिल्म रंग दे बसंती से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और AR रहमान की। धुन तैयार की है AR रहमान ने और इसे लिखा है प्रसून जोशी ने। आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।

तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युवा जगत कार्यक्रम। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है yj.air.bilaspur@gmail.com। इसी के साथ दीजिए अपनी दोस्त महक को इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप युवा जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें। श्रोताओं, आज रात 8 बजे संसद समीक्षा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज संध्या 7:30 पर ग्रामीण श्रोताओं के कार्यक्रम ग्राम सभा में बेरा के गोट का विषय रहेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और इसके अलावा भेंटवार्ता के अंतर्गत किसानवाणी गाँव माँ के क्रम में ग्राम पंचायत सिंगारबाड़ी घुटको विकास खंड तखतपुर बिलासपुर के किसानों के मध्य स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं। कार्यक्रम की संयोजक और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं रात 8:15 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 से। ये थी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, और अब एक नज़र हमारे केंद्र से कल यानी गुरुवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा टमाटर के उन्नत खेती।

सुबह 6:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम चिंतन। इसमें होगा आलेख, रचनात्मकता में निष्ठा। आज सुबह कार्यक्रम का समय रहेगा रोज की भांति 7:05 पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 पर। माटी के स्वर कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन सकते हैं 8:30 पर।

श्रोताओं, प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग, प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय। ये कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे 9 बजे। आपकी पसंद कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे 10 बजे। नए तराने कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम प्रसारित करेंगे 11 बजे से, और विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे 11:30 पर। कल दोपहर बाद 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल संध्या 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम में सामयिक चर्चा में सुनिएगा जिंदगी की बकेट लिस्ट। इसके अलावा क्रम होगा पर्यटन स्थल, जिसमें सुनिएगा मेरी यात्रा शीर्षक पर बातें। प्रस्तुति होगी मोनाली ठाकरे की। कल संध्या 7:30 पर किसानवाणी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम चिट्ठी मिली। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा। रात 8:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 9:15 पर। संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात 10 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 6:10 होने वाले हैं। कुछ क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में होए राज्य मंत्री परिषद के बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन ला देगी मंजूरी। मंत्री परिषद हा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेटर कंपनी लिमिटेड के शेयर बाजार में लिस्टिंग के लीन फैसला और प्रदेश भर में गौधाम योजना के तहत 1460 गौधाम के करे जाही स्थापना। अब समाचार विस्तार ले। राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के मदद ले सुशासन नवा तकनीक कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था ला बढ़ावा दे है। एकर बर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अध्यक्षता में मंत्रालय में होए राज्य मंत्री परिषद के बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन ला मंजूरी देगी। बैठक के बाद पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साहा बताइन की ए मिशन 5 बर होही जेमा 500 करोड़ रूपया खर्च करे जाही। इकर अलावा मंत्री परिषद हा राज्य के ऊर्जा अधोसंरचना ला मजबूती दे और आम लोगन मन के संग संस्थागत निवेशक मन के भागीदारी बढ़ाए के उद्देश्य ले छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के शेयर बाजार में लिस्टिंग के फैसला ले है। एकर तहत सरकार कंपनी ला स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करे बर 200 करोड़ रूपया तक के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड जारी करे है। एकर बर राज्य सरकार मूलधन और ब्याज भुगतान में अपन गारंटी दे के संग प्रत्याभूति शुल्क में छूट दे है। एखले राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश ला प्रोत्साहन मिले के संग बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली मजबूत होही। उन्हें छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र के स्थापना पर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ला रियायती दर में भूमि

0: आवंटित करे के प्रस्ताव ला घलो मंजूरी दे हे। ए निर्णय ले राज्य मा निवेश ला बढ़ावा मिले के संग स्थानीय युवा मन बर रोजगार के नवा अवसर बनही। मंत्री परिषद हा लोक निर्माण विभाग मा निर्माण काम के डिजिटल प्रबंधन बर वर्क एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करे के पहली चरण ला मंजूरी दे हे। उहे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना मा अवैया 12 मासी सड़क के निर्माण बर जारी दिशा निर्देश के संशोधन ला मंजूरी दे दे हे। बैठका मा वित्त विभाग के ओ प्रस्ताव के अनुमोदन करेगी जेकर तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक ले छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के क्रियान्वयन बर 15 करोड़ रुपया के अनुदान ले जाही। बैठका मा राज्य के योजना बर स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल लागू करे के प्रस्ताव ला मंजूरी देगी। प्रदेश में 1460 गौधाम के स्थापना करे जाही। पशु चिकित्सा सेवा ले मिले जानबा के अनुसार घुमैया और बेघर पशुधन के विस्थापन बर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग ला प्रदेश भर में गौधाम योजना के तहत 1460 गौधाम के स्वीकृति देगी। पहली चरण में ईसन गौठान के चयन करे गए है जौन राष्ट्रीय राजमार्ग तीर है और जी हाँ सबो जरूरी व्यवस्था हवे। अनुच्छेद 370 ला निरस्त करे जाए के आज 7वां वर्षगांठ है। बछर 2019 मा आज के दिन संसद मा जम्मू कश्मीर ला विशेष दर्जा देवैया अनुच्छेद 370 के प्रावधान ला खत्म करे गे रहिस। सोशल मीडिया पोस्ट मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा कहिन की 7 बछर पहली अनुच्छेद 370 और 35A ला निरस्त करे जाए के बाद ले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगन मन के जीवन मा बड़का बदलाव आए है। उमन कहीन कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश में बुनियादी ढांचा के विस्तार हो है और शिक्षा स्वास्थ्य सेवा उद्यमिता और खेल जैसन क्षेत्र में अवसर बढ़े है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहीन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प ले अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष प्रावधान ला निष्प्रभावी करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले समान अधिकार समान अवसर और विकास के मुख्य धारा ले जोड़ेगी। ए निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत के राष्ट्रीय संकल्प ला साकार करैया युगांतकारी कदम रही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़बो बांचे समाचार कोती। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डहल ले संचालित ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत ग्राम पीड़दा मा ग्राम सूचना केंद्र और पौध स्वास्थ्य परामर्श केंद्र के शुभारंभ करे गए है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य किसान मन तक वैज्ञानिक कृषि तकनीकी के प्रसार फसल संबंधी समस्या के समाधान नवा कृषि जानकारी उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में किसान मन ला वर्मी कंपोस्ट आधारित ट्राइकोडर्मा जैव एजेंट किट के नमूना बांटेगी। शिक्षा मंत्रालय हा एक भारत श्रेष्ठ भारत मा अवैया युवा संगम बर ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दे है। एमा 18 ले 30 बछर के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकत है। चयनित प्रतिभागी अपन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मा 5 ले 7 दिन के शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्रा करही। रायपुर में शांतिनगर स्थित पीजी उमाठे उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय के चयन प्रतिष्ठित ब्रिक्स स्कूल जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट शोकेस बर करे गे रहिस। छत्तीसगढ़ के चयनित एक थीन यह एक विद्यालय है जेमा अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपन नवाचार जियो स्पेशियल परियोजना के प्रदर्शन करके प्रदेश के नाम रोशन करिन। ए उपलब्धि मा कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह काली कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष मा शिक्षिका रीता मंडल के संगे संग छात्रा वर्तिका पाटिल और उमेश्वरी साहूला साल और प्रेरणादायी पुस्तक भेंट करके सम्मानित करिन। कांकेर जिला मा आज भालू डहार ले करेगे हमला मा दो अलग अलग घटना मा 3 लोगन के मौत हो गए। पहली घटना नरहरपुर रेंज के लार गांव मरकाटोला के है जिहां भालू के हमला ले बड़पारा निवासी भाई बहनी के मौत हो गई। उन्हें एक आने नोनी गंभीर रूप ले घायल हो गए है जिला इलाज बर अस्पताल मा

भर्ती कराए गए हे। घटना के जानबा मिलत ही विधायक आशाराम नेताम मौका में पहुंची नौ ओमन हा पीड़ित परिवार ला हर संभव मदद करे के भरोसा दिलाइन। बाद में वन विभाग के टीम हा भालू के रेस्क्यू करीन। उन्हें एक आने घटना में भालू हा सिहरी नाला में खेत जावत सियान ऊपर हमला कर दी जेखर ले ओखर मौत हो गई। महासमुंद पुलिस हा तीन अंतरराजी गांजा तस्कर ला गिरफ्तार करके उखर तीर ले 114 किलोग्राम गांजा बरामद करे है। जब्त गांजा की कीमत करीब 57 लाख रुपया बताए गए है। गोमाखान पुलिस हा मुखबिर ले मिले जानबा के आधार मा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353 स्थित गोमाखान चौकड़ी तीर घेराबंदी करके एक कार ला रोकिन। जांच के दौरान कार ले गांजा बरामद करेगी। पुलिस हा आरोपी मन के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दे है। कोमाखान थाना क्षेत्र में ही पुलिस हा स्कूटी ले गांजा तस्कर करत दो अंतरराष्ट्रीय तस्कर ला घलो गिरफ्तार करे है। आरोपी मन तिर ले करीब 22 किलो गांजा बरामद करे गए है। रायपुर पुलिस हा 1,13,00,000 रुपया के निवेश के नाम मा धोखाधड़ी के मामला मा वॉश एंड वाज ब्लैक मनी स्कैम ले जुड़े अंतरराज्य गिरोह के दो झीन माई लॉगिन आरोपी मल्ला महाराष्ट्र के नागपुर ले गिरफ्तार करे है। आरोपी मनहा एक कारोबारी ला 45 करोड़ रुपया के निवेश दिलाए के झांसा दे के विदेशी तकनीक और नकली केमिकल के जरिया ले काला नोट ला असली नोट में बदले के झूठा प्रदर्शन करी नौ आने आने तरीका ले रुपया ठगलीन। पुलिस के शुरुआती पूछताछ में गिरोह डाल ले नागपुर लखनऊ समेत कई ठीन जगह में इसने निवेश और फंड रिलीज कराए के नाम में ठगी करे के पता चले है। लोक शिक्षण संचालनालय मा अवैया शीघ्र लेखन और मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद डाल ले अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर मुद्र लेखन कौशल परीक्षा के आयोजन तय दिन में ही करे जाही। परिषद के अनुसार 8 अगस्त के अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्र लेखन 8 परीक्षा केंद्र मा, 9 अगस्त के हिंदी कंप्यूटर मुद्र लेखन 9 परीक्षा केंद्र मा, 16 अगस्त के बिलासपुर और सरगुजा संभाग मा एक एक परीक्षा केंद्र मा आयोजित करे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घौं फेर। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में होए राज्य मंत्री परिषद के बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिशन ला देगी मंजूरी। मंत्री परिषद हा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के शेयर बाजार में लिस्टिंग के लीन फैसला और प्रदेश भर में गौधाम योजना के तहत 1460 गौधाम के करे जाही स्थापना। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन एहे सिरावत है। जय जोहार।

छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं और अब लीजिए पेश है ईमेल फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश हमसे आप सभी ने की है। नरगुड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, विरमगाम राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलाईगढ़ से खिकराम देवांगन, रेणु, रजनी और प्रियंका देवांगन, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सौंगा मगरलोड से फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, पोड़ीभाटा अकलतरा से दिलीप चंदन, चुआराम यदु, निखिल, वसुंधरा चंदन और प्रांजल चंदन, मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू, कुंभारगली कुलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्व और हिमाक्ष, पांडरकवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे, बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, कुलदीप, सिमू एकम, दमन और अभिजोत, तिवर्ता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह, सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल मरावी, लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन, देगलूर, नांदेड़ से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। आप सबने सुनना चाहा है इंतकाम फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत है। राजेंद्र कृष्ण के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर, जिसके लिए ईमेल हमें आप सभी ने भेजे हैं। महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुनसर्रत जहां नाज, तलत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, पीयूष कुमार, रोहित राज, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष देवांगन, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, बुड़गांव से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति, कस्बा बराड़ा, अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल, जलंधर से संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत भारत, कमल साहनी, गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविन्द्र और रौनक सेन, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशुष, सोनाली नारंग, बरेली कैंट चनेहटी, उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार।

रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा। आप सबने सुनना चाहा है लूटमार फिल्म का गाना। आशा भोंसले की आवाज़ में ये गीत है, गीतकार हैं अमित खन्ना और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन का।

0: संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें आप सभी ने भेजी हैं। खोंदला उधयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, धुरनी करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा, भिलाई तीन चरोदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जीशान, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू योगिता श्रीवास, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू परमिनी रावत, नीरज शुभम और सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लभ्या, आरब खुराना, एस के पप्पी, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फुलवाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल, इमरान अहमद फुलवाले, आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंतशाह, आसू अहमद फुलवाले, दिल्ली से प्रमिला, हेमा और अनतरा सिंह, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, सोनम वली और आसमा वली। आप सभी ने सुनना चाहा है रात और दिन फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ में ये गीत है। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे आप सभी श्रोताओं की है। गांव फ्रांस से हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सिंह डूडी, रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी और उमा तिवारी, हांसी से राजू मेघलानी, बब्बू डब्बू, बबीता मेघलानी और सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित और तानिया नारंग, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन और युवराज साहू, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सूर सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया से शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, बुलढाणा वड़सिंडी महाराष्ट्र से अनमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राजकेश कुमार, लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहित साहिल और भारती बघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। आप सभी ने सुनना चाहा है याराना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का ये भाग पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। लीजिए सुनिए ये संदेश।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद विज्ञापन और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण

0: आरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी

0: से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन को दी मंजूरी। इस मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में 1460 गौधामों की स्थापना की जाएगी। और कांकेर जिले में आज भालू के हमले में 3 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी। इसके लिए आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मिशन को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
6: इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब बनाई जाएगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी, 6,00,000 विद्यार्थियों और 1,50,000 सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएगी।
5: इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य की ऊर्जा अधोसंरचना को मजबूती प्रदान करने और आम जन तथा संस्थागत निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की शेयर बाजार में लिस्टिंग का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए 200 करोड़ रूपये तक के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड जारी करेगी। इसके लिए राज्य सरकार मूलधन और ब्याज भुगतान पर अपनी गारंटी प्रदान करने के साथ प्रत्याभूति शुल्क में छूट देगी। इससे राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ बिजली उत्पादन और वितरण प्रणाली मजबूत होगी। वहीं छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र की स्थापना के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने लोक निर्माण विभाग में निर्माण कार्यों में डिजिटल प्रबंधन के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम लागू करने के पहले चरण को मंजूरी दी है। वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और विकास योजना के अंतर्गत बारामासी सड़कों के निर्माण के लिए जारी दिशा निर्देशों में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की आज 7वीं वर्षगांठ है। वर्ष 2019 में आज ही के दिन संसद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त किया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प से अनुच्छेद 370 और 35A के विशेष प्रावधानों को निष्प्रभावी कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को समान अधिकार, समान अवसर और विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया। यह निर्णय एक भारत श्रेष्ठ भारत के राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने वाला युगांतकारी कदम था। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम के लिए

ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिए हैं। इसमें 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सकते हैं। चयनित प्रतिभागी अपने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 से 7 दिवसीय शैक्षिक और सांस्कृतिक यात्राएं करेंगे। प्रदेश में 1460 गौधामों की स्थापना की जाएगी। पशु चिकित्सा सेवाएं से प्राप्त जानकारी के अनुसार घुमंतू और निराश्रित पशुधन के व्यवस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग को प्रदेशभर में गौधाम योजना के तहत 1460 गौधामों की स्वीकृति प्रदान की गई। पहले चरण में ऐसे गौठानों का चयन किया गया है जो राष्ट्रीय राजमार्ग के पास है और जहां सभी आवश्यक अधोसंरचना पूर्ण है। रायपुर में शांतिनगर स्थित पीजी उमाठे उत्कृष्ट शासकीय विद्यालय का चयन प्रतिष्ठित ब्रिक्स स्कूल जियोपॉलिटिकल प्रोजेक्ट शोकेस के लिए किया गया था। छत्तीसगढ़ से चयनित यह एकमात्र विद्यालय है जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी नवाचारपूर्ण जियो स्पेशियल परियोजना का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कल कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में शिक्षिका रीता मंडल के साथ ही छात्रा वर्तिका पाटिल और उमेश्वरी साहू को शॉल तथा प्रेरणादायी पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कांकेर जिले में आज भालू द्वारा किए गए हमले की 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना नरहरपुर रेंज के लारगांव मरका टोला की है जहां भालू के हमले से बड़पारा निवासी भाई बहन की मौत हो गई। वहीं एक अन्य बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही विधायक आशाराम नेताम मौके पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बाद में वन विभाग की टीम ने भालू का रेस्क्यू किया। वहीं एक अन्य घटना में भालू ने सिहारी नाला में खेत जा रहे बुजुर्ग पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। महासमुंद पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 114 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 57 लाख रुपए बताई गई है। कोमा खान पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 353 स्थित कोमा खान चौकड़ी के पास घेराबंदी कर एक कार को रोका। जांच के दौरान कार से गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोमा खान थाना क्षेत्र में ही पुलिस ने स्कूटी से गांजा तस्करी कर रहे 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 22 किलो गांजा बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी ने सूबेदार उपनिरीक्षक और संवर्ग प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए 7301 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। रायपुर पुलिस ने 1,13,00,000 रुपए की निवेश के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में वॉश एंड वॉश ब्लैक मनी स्कैम से जुड़े अंतर्राज्यीय गिरोह की 2 महिला आरोपियों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक कारोबारी को 45 करोड़ रुपए का निवेश दिलाने का झांसा देकर विदेशी तकनीक और नकली केमिकल के जरिए काले नोटों को असली नोटों में बदलने का झूठा प्रदर्शन किया और अलग अलग तरीके से रुपए ऐंठ लिए। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में गिरोह द्वारा नागपुर लखनऊ समेत कई स्थानों में इसी तरह निवेश और फंड रिलीज कराने के नाम पर ठगी करने का पता चला है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव कार्यक्रम के तहत ग्राम पिरदा में ग्राम सूचना केंद्र और पौध स्वास्थ्य परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों तक वैज्ञानिक कृषि तकनीकों का प्रसार, फसल संबंधी समस्याओं का समाधान, नवीन कृषि जानकारी उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में किसानों को वर्मी कंपोस्ट आधारित ट्राइकोडर्मा जैव एजेंट किट के नमूने वितरित किए गए। लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत शीघ्र लेखन और मुद्रलेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद द्वारा अंग्रेजी और हिंदी कंप्यूटर मुद्रलेखन कौशल परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर ही किया जाएगा। परिषद के अनुसार 8 अगस्त को अंग्रेजी कंप्यूटर मुद्रलेखन 8 परीक्षा केंद्रों में, 9 अगस्त को हिंदी कंप्यूटर मुद्रलेखन 9 परीक्षा केंद्रों में और 16 अगस्त को बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग में 1-1 परीक्षा केंद्र में आयोजित की जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार 8 अगस्त से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा कल 6 अगस्त को पेंड्रा रोड स्थित सिविल न्यायालय परिसर में 2 नवनिर्मित न्यायालय कक्ष का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे।

0: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित प्रदेश के शासकीय और निजी महाविद्यालयों में चालू शैक्षणिक सत्र में बीएससी कृषि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहले चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 14 अगस्त तक चलेगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज का पाठ्यक्रम शुरू किया है। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। जशपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र महिला अभ्यर्थी 3 अगस्त से 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है और सक्ती जिले के नगरदा स्थित वाटरफॉल से गिरकर देवरमाल गांव निवासी एक युवक की मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिशन को दी मंजूरी। इस मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने 200 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में 1460 गौधामों की स्थापना की जाएगी और कांकेर जिले में आज भालू के हमले में 3 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। लीजिए पेश है ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। कार्यक्रम के पहले गीत की फरमाइश ईमेल के जरिए हमसे आप सभी श्रोताओं ने की है। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी चौधरी, मालती चौधरी। भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, दिकेश, वाशु, डॉली, पूर्वेश साहू। नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर। गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गुदारा, विमला, इंदु पार्वती और हिमांशु गुदारा। रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार। भोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंघनकर, दिशांत और अर्पिता। राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। तखतपुर से मिश्रलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद साहिद। शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना, मैंडी शर्मा। मुरादाबाद दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुप्ता अंजुम। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानु, प्रिया, माधुरी और किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम में रोटी फिल्म का गाना। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल के जरिए फरमाइशें आप सभी ने भेजी हैं। निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, लवप्रीत और करमजीत कौर, वैशाली नबहादुरा नागपुर से वैशाली सलहेश गंवाणकर, टुकटुक गंवाणकर, प्रिंस एकांश, सुमित और ध्वनि गंवाणकर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो, तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुजाता पोहरकार, कांकेर भानबेड़ा, मुंगवाल से भारत राम पडोटी, जयंती हेमंत उमंग और मोक्ष पडोटी, करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इसप्रीत शर्मा, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सरवद और सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वाहकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी बाई, दीपक, जयश्री देवांगन, ऋषभ और ऋषा देवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह, गांधीबाग अकुला से रमेश कटनकर, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा, मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया, दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां और मक्कर जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी। और आप सभी ने सुनना चाहा है देश प्रेमी फिल्म का गीत। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं इस गीत में। आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी मनवर, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल और रक्षिता लोखंडे, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, निवृत्ति आडोकार, नेपानगर से सुदर्शन साह, पल्लवी प्रखर, कुशल नीति, सुरभि अश्विन, मंगलाबेन साह, राजेंद्र साह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल पटवा, सुनीता, हर्ष, विनीत, कृष्टि पटवा, वर्णिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी

आरती अरोड़ा, अड़ार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा, मेहरनगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाणकर, सरिता प्रिंस और एकांश गंवाणकर, पैठण से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नुखेलाल वर्मा, सनावद से मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़, मोहम्मद सादाफ खत्री, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा और रिमझिम गुप्ता, पजौनिया जलाउन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, लसुड़िया पाता राजगढ़ से गोविंद वैष्णव, दिव्या, कुमन, सुमन, कोमल, परी, कृतिका और रमेश चंद्र डांगी। आप सभी ने सुनना चाहा है लोफर फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें आप सभी की ओर से आई हैं। यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्य रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर साहू, राजबत्ती, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, छोटी बलिया, करजत, मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, नागर कोहरा, राजनांदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, आप सब हैं राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर, यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, लूतरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अक्रम, मोहम्मद अजीज, लोहगंट ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह गुरनूर, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, लोहारीडी कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी ललिमा, खुशान साहू और निशान साहू, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा, नवाज और चाहत, आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा रहे हैं सन्यासी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं इस गीत में। विश्वेश्वर शर्मा ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है। लीजिए आनंद इस गीत का।

और अगले गीत के लिए फरमाइशें आप सभी की। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पूनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन, लूतरा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श और आतिका, डांडी लोहारा बलोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया और अल कबीर, सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद, बाग बहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू सेन, तारा और कौशल सेन, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वलीबाई अंसारी, सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश सेन, कंचन सेन और माही सेन, बरकाना से अफजालता, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा और हनुमान बोडखे, पलेरा टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, टोरोवाल नवासहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, सिटी फिल्म सिटी मुंबई से अदीबानाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबान अंसारी, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत और चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी और अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। आप सभी ने सुनना चाहा है चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में शैलेंद्र का लिखा गीत, जिसकी धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं।

चोरी चोरी फिल्म के इसी गाने के बाद ईमेल फरमाइशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का ये अंक पूरा होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। आइए चलते हैं ग्रामीण श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा में।

0: ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम जय जोहार संगवारी हो। पानी की गिरिये ले चारों तरफ हरियर हरियर प्रकृति की गोद है, धरती दाई के जिन कोरा है हरी आग है, सूखे जीवन में एक नवा जीवन आग है। तो नवा जीवन हमला नवा संदेश देते हैं। किसान भाई बहनी हो, हम मेहनत करके फसल लगा था न, फसल जब कभू कहू नुकसान हो जाते, ज्यादा पानी गिर गए, सूखा पड़ गए या प्राकृतिक आपदा आ गए, तो पूरा प्रकृति के मार किसान मतलब झेले पड़ते। मगर अब कोनो बात के डर नहीं है। अब हमला जेन हमार सरकार है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल सुरक्षा यानी कि फसल बीमा करे बर बहुत बढ़िया एक उपाय दे दिए है, जेखर ले हम अपन फसल के बीमा करके और लाभ कमा सकत हन। जहाँ जे नुकसान होते प्राकृतिक आपदा होते तो ओखर भरपाई हमार सरकार द्वारा बीमा के माध्यम ले जतका ओखर आंकड़ा लगा के दिए जाते। ये आवेदन बर आप मन आधार कार्ड, बैंक खाता, जमीन संबंधी जानकारी और बोए गए फसल की जानकारी देना बहुत जरूरी होते। तो आप मन खची अपन जे नजदीक के आप मन के सहकारी बैंक है, ग्रामीण बैंक है, वहाँ आप मन जाके आवेदन दे सकत हो। और ये महीना के 14 तारीख तक हवा है ना, तो एकर लाभ जरूर ले। और अब आवा सुनी संदेश।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
6: देश के युवाओं ने लिया है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, 70 साल के पार सभी बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनाने का, 5,00,000 रुपए के मुफ्त उपचार का उपहार पहुंचाकर भारत को आयुष्मान बनाने का। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों का आयुष्मान वै वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

संगवारी हो, अब जब सावन आते तो मन भावन लगते तो ओकर स्वागत कौन प्रकार ले करथन आवा गीत के माध्यम से सुन लेथन कुलेश्वर ताम्रकार कविता हिरकने के स्वर में।

वाह, बड़ा मन गदगदा गे संगवारी हो, हमरो मन हरिया गे। ये सुघर गीत ल स्वर दे रही ने कुलेश्वर ताम्रकार, कविता हिरकने। अब आप मन ले चलत हन आकाशवाणी गांव के तहत, ग्राम पंचायत सिंगारबाड़ी घुटकू, विकास खंड तखतपुर, जिला बिलासपुर के स्थल ध्वनांकन में आधारित कार्यक्रम, जेकर रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र कुमार साहू राजू भैया, प्रस्तुति एवं संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। तवाओ चलिन आकाशवाणी गांव मां, ग्राम पंचायत सिंगारबाड़ी।

भाई बहनी हो, आज हम आप मल्ला सुनवाथन आकाशवाणी गांव मा। आज यही क्रम मा आप मल्ला प्रगतिशील गांव घुमाए ले चलथन, जिन्हा अरपा नदी के खण मा तट मा बसे है, बिलासपुर ले 16 किलोमीटर दूरिया। ये गांव तो आप ला घुमा बेच करबो, फिर एकर पहली हम आप ला बता दी। रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र साहू के है, प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया।

0: भारतीयन के जैसे हम कहत रहे कि सिंगार बाड़ी घुटकू जाबो ऐसे कह के तो गोठियाते गोठियात हम यहाँ पहुँच गए। यदि देखे तेती ये गाँव हाँ देखिए तो खेती बाड़ी ले भरपूर ये गाँव विकास क्षेत्र में आगू बढ़त ये गाँव निश्चित रूप ले बिलासपुर अंचल में विकास खंड तखतपुर के ये गाँव हाँ अलग चिन्हा हुए। सिंगार बाड़ी घुटकू के रहैया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के राम राम जय जोहार। भोरन पटेल जी आपने जानना चाहबो कि कते कन भूया आपन करा।
1: हाँ मोर लंग एक सीमित खेती है वह 3.5 एकड़ है।
0: हाँ
1: 3.5 एकड़ में ही मैं अभी तक खेती कराता था वही मैं खुश हूँ।
0: का प्रकृति के है आपके खेत है?
1: मोर है वैसे हर प्रकार के लिए उपलब्ध है, जैन भी खेती करना चाहिए वो सबके लिए।
0: अभी आपके खेत में का किसानी के काम चलत है महोदय जी?
1: वर्तमान में तो भुलाए हमन अभी रोपाई के काम चलत है,
0: धान के रोपाई जी।
1: एकर बाद हमन सब्जी के खेती पूरा 12 महीना करत रही थे।
0: तो ये 3 एकड़ में आप मन धान के खेती करत हो। हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन ला बतावा आपके किसानी करे के पद्धति का कैसन है?
1: अभी वर्तमान में अब धीरे धीरे हम मन बदलत जात हन तो वैज्ञानिक तरीका से ही काम करथन कही देवा। जितका हो सकते हम ओला अपनाए के कोशिश करथन।
0: जैविक करत हो कि रासायनिक करत हो?
1: दोनों कर लेथन। अब का है कि हर समय तो जैविक ही उपलब्ध नहीं हो पाए, काबर के छोटे से गांव में रही थन तो वहां तक थोड़ा सा पहुंचे में दिक्कत रही थे, तो जेन स्थानीय मिल जाते ओखरे से खेती करथन, रसायन भी खेती करथन जैविक भी खेती करथन।
0: जेन आप मन भी थरहा लगा था कतेक दिन के थरहा रोपाई करा था?
1: हमन ह धान के जेन रोपाई करथन तेन ला 20-25 दिन के थरहा रोपाई करथन।
0: थरहा उपचारित करथ अपने भी?
1: बिल्कुल शुरुआत में उपचारित करके ही डालथन।
0: हमारे कार्यक्रम के सुनैया किसान भाई बहनी वाला आप ये बतावा कतार विधि से लगा था के सीधा रोपाई करत जाता?
1: नहीं, दोनों पद्धति से हमन हा खेती करथन।
0: हाँ।
1: बाकी ज्यादातर जो पुराना पद्धति है जन ऐसे ही लगा देथन।
0: अच्छा
1: हाँ, कतार विधि से बहुत कम खेती करथन। कई दे
0: तो खेत के जुताई करत घानी का खातो माटी के व्यवस्था करता विस्तार ले बतावा ना?
1: हमन हा खेत के जब तैयारी करथन तो शुरुआत में काहे जुताई करवाथन नांगर से, ओखर बाद आजकल रोटावेटर के समय आ गए है तो रोटावेटर पद्धति से कई देवा जुताई ला करवाथन। जुताई करे के बाद अब तैयारी में लग जाथन। लगथन तो शुरुआत जब हम बेसल खाद जिन लगे थे आधार खाद ओले डलवाथन तो उमा हमन है DAP है यूरिया है और राखड़ के प्रयोग करथन।
0: मजदूर मिल जाथेगा?
1: मजदूर अब पर्याप्त मात्रा में अब का है।
0: हाँ।
1: सबके सहयोग ही रही थे, गांव भर मिल के ही मजदूरी करते हैं। अब एक तरह से कहे जाए तो हमारे यहाँ मजदूरी में ही ज्यादा कई देव खेती होते।
0: अभी 15 दिन ले लगातार पानी यहाँ गिरी से भैया, तो ये पानी के का कैसे उपयोग करे आप मन?
1: हाँ, अब वही जिन पानी गिरी से ऊपरे के ही माध्यम से हमन ओखरे ऊपर ही डिपेंड करथन।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: रोपाई होते तो रोपाई में तो पानी जरूरी है।
0: हाँ।
1: तो पानी ला रोक रोक के राखे रही थन जितका। हाँ। जरूरत रही थे
0: जी
1: ओखरे अनुसार ओखर उपयोग करके।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: हमन खेती ला करथन।
0: अच्छा। पानी बचत के जहाँ तक हम बात करना चाहबो भाई, तो ये समापन के का काम चलत है?
1: हमन अब होते का कि पानी
0: जी
1: आजकल ऐसे है कि पानी की स्तर है तो नीचे गिरत जात है वह। ओखर कारण ये कि हम नीचे के जितना भी पानी है तो ओखर दोहन करके रबी फसल लगा रही थन।
0: हाँ।
1: तो इधर वैसे हमार गांव हर ऐसे हो इसे कि ज्यादा मात्रा में जल स्तर है नीचे होते है क्योंकि ग्रीष्म फसल जिन लगा रहे हैं।
0: हाँ।
1: वो बंद कर दिए हैं।
0: एक बार आप मनला बहुत बहुत बधाई देथन और इसना बूता हर गाँव के किसान भाई मनला करना चाहिए। काबर के ग्रीष्मकालीन धान में बहुत ज्यादा पानी लगते का?
1: हाँ बिल्कुल, काबर की अब ऐसे है कि बरसात में जो है तो ऊपर के ऊपर डिपेंड करथन तो हम लोग बहुत कम दोहन करेल पड़ते।
0: सब्जी बाड़ी में का सब्जी लगा था अपन?
1: हर प्रकार की सब्जी ले लगा था।
0: हाँ।
1: जैसे गोभी है, टमाटर है, भट्टा है
0: जी,
1: मिर्ची है, पूरा पूरा अच्छा। खेती करता हूँ।
0: अच्छा, आप मन थरहा तैयारी कर डरे है?
1: थरहा अब गोभी है के थरहा डले है वह।
0: हाँ।
1: ओला लगाए के तैयारी में जैसे ही वर्षा कम हो ही।
0: हाँ।
1: उखर तैयारी में लग जाबो।
0: आपके काम है भैया?
2: दशलाल पटेल हूँ।
0: पटेल जी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप मन के काका बूता काम चलत है?
2: बस खेती किसानी चलत भैया, साथ में खर एग्रीकल्चर भी है। मैं सिर्फ करेली है, मिर्ची है, जेखर मैं ज्यादा महत्व देता हूँ।
0: अच्छा।
2: और मेरे को मिर्ची खेती 20 साल हो गया मेरे गाँव के अंतर में, तो बहुत से लोग मेरे देख के अनुकरण किए। लेकिन
0: मतलब आप मिर्चा के खेती करके मिर्चा लाल बन गया?
2: हाँ, मेरे यहाँ ऐसा है कि मेरे जो भी हो बाहर से व्यक्ति जो आते हैं बिलासपुर पे सजीव दिखाता हूँ मैं, तो वहाँ से लोग पूछते हैं भाई आप आपके घुटकू क्षेत्र में कौन से लगाते हैं, तो मेरे यहाँ भेजते हैं कि आप

0: ये घुटकू के में उसमें अमुक आदमी जो है इसका एग्रीकल्चर करता है,
1: हाँ हाँ
0: और मेरा देख के अनुकरण करके मेरे गांव के लोग, कई लोग लगाए हैं ये चीज़ को मिर्ची, लेकिन उन लोग सफलता हासिल नहीं किए हैं। लेकिन मैं 20 साल हो गए मिर्ची खेती को, मैं दोनों सीजन में नहीं
1: अच्छा,
0: छोड़ता हूँ।
1: तो ये आपके मिर्ची की खेती करने के पद्धति का है, विस्तार ले जाना चाहो।
0: हाँ, मेरा मिर्ची देखिए, मिर्ची में बहुत ही ज़्यादा सेवा लगता है उसका।
1: जी
0: उसमें सबसे पहले तो खेती का जुताई करते तो सबसे पहले अच्छी तरीके से उसको गहरीकरण जुताई करना चाहिए। जब हमारे खेत तैयार हो जाते हैं तो उसमें गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ उसमें जो आता है ट्राइकोडर्मा है, जो हमारे जड़ को खराब करता है, उस चीज़ को डालना चाहिए। उसके साथ साथ में आजकल क्या है, जैविक है, रासायनिक है, तो जहाँ तहाँ मैं किसान भाइयों को ये कहता हूँ कि यूरिया की मात्रा में बिल्कुल नहीं के बतौर करना चाहिए, क्योंकि यूरिया की मात्रा जो है हमारे जमीन को बहुत ही नुकसान कर रहा है। तो मैं यूरिया की मात्रा नहीं के समान ही करता हूँ। कई लोग बोलते हैं, लगाते हैं, भैया तो मेरे यहाँ तो पूरा वायरस आ गया है, तो मेरे यहाँ ये सब चीज़ नहीं होता है, क्योंकि मैं यूरिया की मात्रा नहीं के समान में डालता हूँ। तो मैं किसान भाई को यही कहता हूँ, जहाँ तक हो सके नाइट्रोजन की मात्रा को कम डालना चाहिए। और मैं मेरा अभी तक के मैं करेली लगा है मेरा, और उसमें जब किसान भाई को ये मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी बीज का अगर चुनाव करें तो समय के साथ अच्छी किस्म के ही चुनाव करें, समय के साथ, तभी किसान को सफलता मिलेगा, है ना। तो
1: तो ये बता दो हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई, मतलब मिर्चा और करेली के बारे में आप बता था, आपके किसानी करे के पद्धति का है, उन्नत तकनीक अपना करा था कि परंपरागत खेती करते थे।
0: नहीं, मैं समय के साथ चलता हूँ। क्या है, देखिए, हमारे पुराने पीढ़ी जो है पूरे गोबर खाद के ऊपर निर्भर था। आजकल हम लोग पूरे हाइब्रिड का जमाना आ गया, लोग हाई फाई, जहाँ 5 किलो यूरिया लगना है वहाँ 10 किलो डाल रहे हैं। इससे हमारे जमीन को भी नुकसान है और पौधे को भी नुकसान है। तो इसके अनुसार क्या है कि समय के अनुसार व्यक्ति अगर ढले तभी सही सक्सेस है। मैं जैसे करेली लगाए हूँ अभी, कंपनी बोलता है 60 दिन में, लेकिन मैं उसको एक महीने में सक्सेस करके तैयार कर दिया हूँ। कंपनी बोलता है 2 महीना में, लेकिन मैं
1: अच्छा,
0: 1 महीने में तैयार करके रख दिया
1: वाह,
0: हूँ।
1: बीजा के चुनाव कैसे करता?
0: बीज के चुनाव जो है अपन लोग कंपनी से संपर्क करते हैं। हमको अच्छी प्रकार के बीज चाहिए, जिसमें टेम्परेचर सहनशील होना चाहिए, मौसम के अनुरूप होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग बीज का चुनाव करते हैं।
1: अभी आपके मिर्चा और करेला के क्या स्थिति?
0: ठीक 1 माह हुआ है
1: जी
0: जिसमें फूल फल आने स्टार्ट हो गया है। कंपनी
1: अच्छा
0: मेरे को बोले 55 दिन में हो जाएगा,
1: हाँ
0: लेकिन मेरा तो
1: हाँ
0: 30 दिन में ही मेरा
1: वाह वाह,
0: तैयार हो
1: तो एक
0: गया।
1: बार आप मन अच्छा सड़े घुरुआ के बात करबो,
0: हाँ
1: के को वर्मी कंपोस्ट के बात
0: हाँ
1: करबो, कुकरी के अच्छा
0: नहीं
1: बचे
0: नहीं
1: खाद।
0: नहीं सबसे अच्छा तो हमारा
1: हाँ
0: गांव है, कंपोजिक खाद वही अच्छा है। और जहाँ तक
1: हाँ
0: यूरिया, लोग यूरिया डालते हैं जल्दी जल्दी पौधा ग्रोथ, लेकिन यूरिया की मात्रा नहीं डालना चाहिए।
1: जी
0: हाँ, तो वो क्या है, पौधे को सही समय उसका देखभाल करना चाहिए, वो बिल्कुल सही समय अपना हो
1: अच्छा,
0: जाएगा।
1: मिर्चा और करेली के फसल आप लगाए कहा था, परेशानी आपके नजर में का थे पटेल जी?
0: परेशानी तो बहुत आता है,
1: हाँ
0: लेकिन उसमें समय के अनुसार उसमें देखभाल करना अनिवार्य पड़ता है।
1: जी,
0: जैसे आप लोग बच्चे को देखभाल करना पड़ता है, उसी प्रकार से उसको देखभाल करना पड़ता है।
1: अपन लड़का कस।
0: हाँ,
1: हाँ,
0: तभी हो है।
1: जैसे फूल आए के अवस्था है
0: हाँ,
1: तो का बात का ध्यान रखता?
0: उसमें क्या है, फूल आने की अवस्था में जैसे हम लोग बच्चे जो होता है, तो हमारे को क्या टा निकला है उसमें अच्छे से प्रकार से खाद डालना चाहिए कि जैविक हो। तो उसमें भरपूर मात्रा में उसमें जब फूल की अवस्था आता है तो उनको बहुत से पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ता है। तो वो पोषक तत्व को ध्यान में रखते हुए अपन को उसको पूर्ति करना पड़ता है।
1: महिला सशक्तिकरण के बात करबो तो निश्चित रूप ले चिंगार बाड़ी घुटकू आगू बढ़ जाते, और हर गांव में दिखे तो पारा टोला माँ हमर दीदी बहनी मन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन के सेवा करते। बहनी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, राम राम।
2: राम राम भैया।
1: कतेक बच्चा हो गया आप ला आंगनबाड़ी के बूता ल करत?
2: मोला तो इसे करीब 16-17 साल हो गए भैया। मोर 2011 से ज्वाइनिंग है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घुटकू सिंगारवाड़ी के सीमा सोनचे बोला था।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: ये बता देवा 0 से लेके 6 बच्चर तक के लड़का मन के देखभाल करना बहुत बड़े जिम्मेदारी है।
2: बहुत बड़े जिम्मेदारी भैया। 0 से 6 साल के बच्चा मन से लेके, सर्वप्रथम तो गर्भवती से किशोरी बालिका से स्टार्टिंग कर देते हैं देखभाल
1: अच्छा
2: कर देवा। हाँ, किशोरी बालिका से फिर गर्भावस्था तक, गर्भवती के देखभाल करथन, गर्भवती से फिर 0 से लेके 6 वर्ष तक के हमन देखभाल करथन।
1: अच्छा, पोषण आहार में का कर देता बहनी?
2: हमन पोषण आहार में तो अभी रेडी टू ईट देथन बच्चा मन ला।
1: जी
2: हाँ, गर्भवती मन ला 900 ग्राम के देथन, शिशुवती मन ला। और 0 से 6 माह के बच्चा ला 900 ग्राम के देथन, और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चा मन ला 750 ग्राम के देथन, कुपोषित बच्चा ला 1200 ग्राम के पैकेट देथन।
1: तो जम्मो को लेके खाते हो?
2: हाँ भैया, घर घर जाके तो हम अब समझा था गृह भेंट के दौरान
1: हाँ
2: केला बच्चा मन ला खिला जा प्रतिदिन माप के अनुसार,
1: हाँ।
2: तब बच्चा मन के ग्रोथ

0: बढ़ ही वजन बढ़ ही कुपोषण के कुपोषण दूर हो ही करके
1: हाँ,
0: बतातन।
1: अच्छा, कुपोषण के बात आप कहे बहनी, तो आप मन के केंद्र में कोनो किस्म के लइका मान कुपोषित थोड़े है?
0: मोर माँ तो गंभीर कुपोषित में नहीं है भैया अभी, लेकिन मध्यम कुपोषित माँ 10 जने बच्चा हवा है।
1: जी, कुपोषित जिसे बच्चा मन हो गए तो उन ला खाए पिए के व्यवस्था करता, उनका पालक मनला माता पिता मनला का सलाह देता आपन?
0: उकर माता पिता मन ला जाके सलाह देथन भैया गृह भेंट के दौरान, कि जैसे को जे बच्चा के वजन नहीं बढ़ाते तेला कुपोषित।

0: हमन।
1: ओकर माता पिता मन ला जाके सलाह देथन भैया गृह भेंट के दौरान कि जैसे को जे बच्चा के वजन नहीं बढ़ाते तेला कुपोषित बच्चा है थोड़ा लेट से खाते ओकर खाना थोड़ा रह के पचते और खा भी में धीरे धीरे करते तो कल ये ओला बार बार बार बार थोड़ा थोड़ा मात्रा में खिलाना चाहिए। जो हमारे आंगनबाड़ी से रेडी ट्वीट लाते तेला गाय गरुआ ला ना खिला करके
0: जी
1: और बच्चा ला प्रतिदिन खिला ही ना तब ओकर वजन ऑटोमेटिक बढ़ जाही।
0: गर्भवती और शिशुवती के जहाँ तक बात करबो, पोषक आहार तो आप देता सरकार के कौन कौन योजना आओ इनला मिलते हैं तेला बतावा ना।
1: सरकार की योजना बहुत सारा है भैया। अभी तो कई देवा महतारी वंदन योजना के चली सेवा कई देवा।
0: जी
1: हाँ अभी ओकर के वाईसी वाईसी के लिए बहुत अभी प्रयास करें हमन। आउ गर्भवती महिला मन ला कई देवा प्रधानमंत्री मातृ वंदना के योजना के तहत प्रथम गर्भवती ला 5,000 हमारे विभाग के महिला बाल विकास विभाग के तरफ से मिलते।
0: जी
1: जब दूसरा बालिका होते ता एक मुस्त 6,000 मिलते।
0: आप जिन बूता करा था ओखले आपके पारा टोला मोहल्ला के अमन खुश हवा के नहीं
1: खुश हवा भैया बहुत जने खुश भी है।
0: देखा महिला बाल विकास के जबर योजना चलते भारत सरकार के और स्वयं सहायता समूह बना के और हमारे दीदी बहनी मन घलो आगू बढ़ जाते तो स्वयं सहायता समूह बनाए बन लोग कुछ प्रेरित करता बहनी आप मन।
1: हाँ स्व सहायता समूह बनाए बर तो अभी सरकार बिहान योजना निकाले कह देवा।
0: हाँ
1: बहुत जने सक्रिय महिला रखे हेवा
0: जी
1: इतने मान संगठित होके महिला समूह बनाते।
0: हम्म
1: हमू मन कही थान के महिला समूह बनाए में आप मतलब बहुत फायदा हेवा सरकार की कुछ भी योजना होकर लाभ ले सका था करके।
0: वाह वाह बहुत बढ़िया जानकारी दिया बहुत बहुत धन्यवाद बहनी। निश्चित रूप ले किसानी के क्षेत्र में घुटगु आगे बढ़ जाते पटेल जी। आप गोभी फूल गोभी की चर्चा चलात रहा नर्सरी तैयार करे बर का करता हो।
2: नर्सरी तैयार करे पर अब वो थोड़ा बहुत गोबर के खाद उखल लिए जुगाड़ करथन। अब
0: जी
2: वो खाद तो मिल नहीं पाए फिर भी नर्सरी तैयार करे पर हमन जो गोबर के खाद जुगाड़ करथन।
0: जी
2: दूसरा चीज आजकल हो का है ट्रे वाला विधि।
0: हाँ
2: तो ट्रे विधि में बहुत कुछ दिन से मतलब ओकर उपजात हन जिन में बहुत जल्दी तैयार हो जाते जिला हमन हा 1 महीना में कर पात रहे 20-25 दिन में आराम से तैयार हो जाते।
0: तो ओकर पहले खेत की तैयारी आप कैसे करता।
2: खेत के तैयारी ला शुरुआत में जोताई ही करवाथन अब ट्रैक्टर के माध्यम से। ओकर बाद राखड़ ला डालथन पोटास भी है पोटास तो जरूरी है आजकल।
0: हाँ।
2: तो पोटास और राखड़ ला डाल के जोताई ला करवाथन फिर पाटा चलवाथन।
0: हाँ।
2: अब आजकल ड्रिप सिस्टम हो गए
0: टपक
2: थोड़ा
0: सिंचाई।
2: सा टपक सिंचाई
0: जी जी
2: तो वो भी करता हूँ मैं। यहाँ
0: वाह वाह ये बता देवा पटेल जी आप मन कार्यक्रम के शुरुआत में कहे कि हमन रति मात्र यूरिया के उपयोग नहीं करन के निश्चित रूप से बधाई के आप पात्र है। जानना ये चाहता हूँ ये प्रेरणा आप लोग कहाँ से मिली।
3: नहीं प्रेरणा तो ये सब चीज सर क्या है कि मैं विज्ञान लेके तो पढ़ा हूँ है ना। तो ये सब चीज मैं अनुकरण करता रहता हूँ कि समय के साथ मैं खुद अपना ये करता हूँ।
0: हाँ।
3: उसके हिसाब से मैं अपने दिमाग से मैं खेती करता हूँ। मेरे हिसाब से जब करता हूँ तो मेरे को सक्सेस ही मिला है अभी तक से।
0: मतलब हमला रासायनिक खेती ला धीरे धीरे कम करना ये करना चाहता।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसमें ना ये क्या है हमारे जमीन की उर्वरक शक्ति को बिल्कुल क्षति पहुंचा रहा है। इसी कारण जो तरह तरह के पौधे में जो बीमारी आता है कारण यही है। हाँ
0: निश्चित रूप से आप सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में बिलासपुर जिला में अलग नाम बना है। आपने जानना चाहबो मिर्चा में देखिए तो पाना कबू कबू कुकड़ी आ जाते।
3: हाँ
0: तो खर उपचार किसे करता।
3: ये मिर्ची के जो कुकड़ीपन है ये बहुत आयत इसमें यूरिया का ही प्रभाव जितना ही यूरिया के प्रभाव है। मिर्ची का जो कुकड़ीपन है इसमें छोटे छोटे माहो जो लगता है चूसक जब उसमें चूसक कीड़ा लगता है तभी कोई भी चीज सिकुड़ता है। अगर इसको चूसक कीड़ा का हम लोग रोकथाम कर लेंगे तो उसमें का सिकुड़न नहीं आता है। मेरे ख्याल से घुटकू में जब से 20 साल हो गया करेली का जब से मैं खेती करेली तब तक मैं अपने गाँव में मेरे सिवाय खेती बहुत कम लोग करते हैं लेकिन मैं कंटिन्यू नहीं छोड़ा हूँ।
0: अच्छा,
3: मिर्ची
0: अच्छा।
3: और करेली का ही
0: हाँ।
3: मैं ये अभी तक के
0: हाँ।
3: जीवन में अपना आ रहा हूँ।
0: बहन जी आप अपन गांव के महिला विकास कार्यक्रम के प्रतिनिधित्व कर रहा था लड़का मन ला टीकाकरण करवाए बर का कैसे करे पर पथे विस्तार ले बताओ ना।
1: लड़का मन के टीकाकरण करे बर सबसे पहले तो गर्भवती से ही स्टार्ट हो जाते भैया। गर्भवती ला जैसे ही 2.5 महीना होते तो हमारे आंगनबाड़ी में पंजीकृत कराते हमन जेल ऑनलाइन हम एंट्री करथन। ओकर बाद फिर ओला प्रथम टीटी के टीका लगते ओकर बाद 1 महीना दूसरा महीना में फिर दूसरा टीका लगते के देवा। मोर सिंगारवाड़ी के करीब करीब सबे संस्थागत ही प्रसव कराते भैया एक जने ही घर में नहीं करा है।
0: बधाई देसन भाई आपला। बोहरन पटेल जी ये बता देवा किसानी के बूता आप मन बहुत बढ़िया ढंग ले करत हो सरकार कोनो योजना के फायदा उठा का आप मन।
2: नहीं सरकार की योजना के फायदा वो आधुनिक जो नियंत्र है वह
0: जी
2: पावर वीडर।

0: पावर
1: टिलर
0: टिलर
1: है,
0: जी
1: एकर
0: जी
1: मन के बिल्कुल
0: हाँ
1: ओखर फायदा लिए हन, जिन में कुछ छूट मिल जाते तो।
0: अच्छा, भगत राम पटेल जी से आप मुलाकात करा था जाना, लगातार पटेल जी आप मन हमारे किसानवाड़ी कार्यक्रम ग्राम सभा के फोन इन कार्यक्रम में जुड़े था, आज तो वहीं आपका मुलाकात होते, राम राम।
1: राम राम राजू भाई।
0: आपके गांव के किसानी के क्या गतिविधि है?
1: हमारे यहाँ वैसे किसान मन के सबसे बड़े उपलब्धि ये है कि समय के रहते किसानी अपन पूरा करते,
0: जी
1: और कुछ कारण है कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था है।
0: जी
1: अगर बरसात के पानी समय में नहीं गिर पाते है, भले ही जमीन पतला है,
0: जी जी
1: रेतीली है, परंतु किसान मन इतना जरूर जानते हैं कि हमार लंग जिन साधन है,
0: जी
1: ओकर साधन की जिन उपयोग है सही समय में करके अपन किसानी सही समय में करबो तो ओकर लाभ ला अच्छा ढंग से पाबो।
0: तो आप मना आकाशवाणी सुनने के बाद किसानी क्षेत्र में का परिवर्तन करे?
1: यह है तो बहुत बड़े आपके बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न है राजू भाई। सबसे बड़े चीज हमारे जिन होते सियान, और सियान जो रास्ता बताते लइका मन रास्ता में चल के, और
0: जी
1: रद्दा जिन है वो काम की बूतल बढ़िया करते,
0: जी जी
1: और ये खर निभाए मन सियानी आकाशवाणी के जिन कार्यक्रम है वो है बहुत सुंदर है।
0: हाँ
1: जिन कार्यक्रम चलते आपके आकाशवाणी से
0: जी जी
1: ओला बढ़िया सुनथन,
0: और
1: मस्तिष्क
0: गुंथन
1: मंथन
0: के अलावा
1: करथन, गुंथन, और चौपाल टाइप के चार जन बैठ करके और सुंदर जिन कार्यक्रम का जिन अच्छा कार्यक्रम प्रसारण होते
0: जी
1: ओला बड़ा ध्यान से सुन करके ओला एक दूसर से
0: बांटते हैं।
1: बांटथन।
0: चला आपके गांव सिंगार बाड़ी घुटकू पहुंचे, निश्चित रूप ले यहाँ के किसानी के अनुभव ला आप तक पहुंचाएं, और बता दी संगवारी हो आकाशवाणी गांव मा ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र साहू के, और ये कार्यक्रम के प्रस्तुति सृजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के। एकरे संग आज के सिंगार बाड़ी घुटकू विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर के स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम आकाशवाणी गांव मा ये कार्यक्रम ले राजू भैया ला द विदा। गांव घुटकू के रहिया जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला राजू भैया के राम
1: राम
0: राम।
1: राम भैया।
2: तो संगवारी हो सुना न भाई, आप सब ला हम आज लेके चले रहे ग्राम पंचायत सिंगारवाड़ी घुटकू विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर के गांव। जी हाँ, आनी बानी के जिन खेती करे के तरीका है, और वहाँ के आंगनबाड़ी के दाई दीदी मन कौन प्रकार ले काम करत है, शासकीय योजना कैसन क्रियान होते आप सुनो, और ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग और संपादन महेंद्र कुमार साहू राजू भैया, प्रस्तुति और संयोजन डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन के रही से। और अब चला सुन लेते ने गीत तोर आगे गुंगवाथे सगा झड़ी म सावन के, तो सावन में कैसे झड़ी लगते और कैसे आगे गुंगवाथे, आवाओ ये भाव भरे गीत सुन लेते नकुल जायसवाल और सावित्री कहार के शर्मा।
3: गुंगवाथे सगा झड़ी मा सावन के ए सगा
4: काय

किसान भाई बहनी हो अही गीत के संग कार्यक्रम ले विदा लेबो पहली ये स्वर दे रही तेला बता दी नकुल जायसवाल सावित्री कहार के आगू कार्यक्रम में भेंट मुलाकात करबो। अब जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।

0: अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद संसद समीक्षा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: अब आप सर फिरोजी से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज राम मंदिर में चढ़ावा चोरी सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे से पहले तक बैठक बार बार बाधित हुई। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक पर 2.5 घंटे तक चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। आज सुबह 11 बजे जब उच्च सदन की बैठक शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए नारेबाजी की और दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री अमित शाह की सदन में मौजूदगी की मांग की। हंगामे के बीच सभापति ने कार्यवाही जारी रखते हुए सदस्यों को लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाने की अनुमति दी। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शून्यकाल में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विभिन्न सदस्यों ने लोक महत्व के मुद्दे उठाए। भाजपा की कविता पाटीदार ने निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के ग्राहकों को दावा निस्तारण में आ रही तमाम कठिनाइयों पर चिंता जताते हुए सरकार से मांग की कि इन दावों को निपटाने में अनावश्यक विलम्ब होने पर संबंधित कंपनियों के विरूद्व प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा सांसद ने सरकार से मांग की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी करते हुए ये अनिवार्य किया जाए कि सरल एवं सहज शब्दों में पॉलिसी के भीतर कवर की जाने वाली बीमारियों और उपचार के बारे में जानकारी हो। इसमें प्रतीक्षा अवधि, दावा स्वीकार या अस्वीकार किए जाने वाली परिस्थितियों, दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और दावा निस्तारण की अवधि भी बताई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने एक ही दवा के अलग अलग मूल्य होने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मरीजों को महंगी दवाएं बेचकर मुनाफाखोरी को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल में एक संसदीय समिति ने भी इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दवाओं के लिए एक रेफरेंस प्राइस रेंज बनाई जानी चाहिए। शून्यकाल में भाजपा की संगीता बलवंत ने 18 जुलाई 2026 को भारत की निजी कंपनी स्काईरूट द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और नवाचार का प्रमाण है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन ने शून्यकाल में अनुबंध कर्मचारी की सेवा को एकाएक समाप्त करने के बढ़ते चलन का मुद्दा उठाते हुए इस पर चिंता जताई। भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाए जाने का स्वागत करते हुए मांग की कि सेवा का विस्तार करते हुए राज्य के पानीपत, रोहतक एवं हिसार को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। शून्यकाल में ही अन्ना द्रमुक के नेता डॉ. एम. थंबीदुरई ने मद्रास उच्च

न्यायालय का नाम बदलकर तमिलनाडु पर करने की मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2016 में तमिलनाडु विधानसभा ने इस बारे में केंद्र से अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया था। भाजपा के सतपाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर से आज ही के दिन 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को केंद्र की हर योजना का लाभ मिल रहा है और वो देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहा है। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर सभापति ने प्रश्नकाल चलवाने का प्रयास किया, किंतु सदन में हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विधेयक में उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रावधान है। विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए कांग्रेस एवं कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए। विधेयक पर चर्चा में हंगामे के बीच ही उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू करवाई। इसमें कांग्रेस के विवेक तनखा, भाजपा की संगीता यादव, नरेश बंसल, भीम सिंह, केसरी देव सिंह झाला, अशोक कुमार मित्तल और मनन कुमार मिश्र, तृणमूल कांग्रेस की मेनका गुरुस्वामी, द्रमुक के आर गिरिराजन और पी विल्सन, बीजू जनता दल के सस्मित पात्रा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के आई एस अनबदुरई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीलालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के विजय चिंता कायला, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव, भारत राष्ट्र समिति के रविचंद्र वद्दीचंद्र, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माझी, शिवसेना के मिलिंद मुरली देवरा और ज्योति नागनाथ वाघमारे, एमडीएमडीए के एल के सुधीश, भाजपा के नरेश बंसल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संदोष कुमार पी, द्रमुक के पी विल्सन, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, मनोनीत उज्ज्वल निकम आदि ने भाग लिया। करीब ढाई घंटे तक चली चर्चा में भाग लेते हुए विपक्षी सदस्यों ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की नियुक्ति में महिलाओं एवं आरक्षित जातियों के सदस्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से अदालतों में मामलों के अंबार को कम करने में मदद मिलेगी। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वो सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय में उन्हीं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जिनकी सिफारिश कॉलेजियम करता है। उन्होंने कहा कि इस मामले में महिलाओं एवं आरक्षित वर्ग के लोगों के बारे में विचार करने का विषय कॉलेजियम का है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। कानून मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके उपरांत सदन में विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व के मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शन

सरकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई और प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी दल संसद की कार्यवाही नहीं चलना देना चाहते और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने संसद परिसर में नाटक करके भगवान राम का अपमान किया है, जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदन में हंगामे के बीच ही बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जब प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। वे अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहरा रहे थे। बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और इसमें सदस्यों को अवसर मिलना चाहिए। मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल चलाने में सहयोग करें। प्रश्नकाल के बाद सभी मुद्दों पर आपसे चर्चा करूंगा। उन्होंने आसन के पास आकर नारे लगा रहे और पोस्टर लहरा रहे सदस्यों से कहा, सदन के अंदर या बाहर नारेबाजी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके और प्रदर्शन करके सदन की गरिमा को गिराना चाहते हैं। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। कार्यवाही फिर शुरू होने पर स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि मैं गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं, मैं शून्यकाल चलाना चाहता हूं। आपके नाम लॉटरी में आए हैं और नीति और राज्य से जुड़े सवाल हैं, मैं आपको बोलने दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर जाइए और शून्यकाल चलने दीजिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल अपने दल के सदस्यों को समझा दें तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष के सदस्य संसद नहीं चलाना चाहते। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी ने हमेशा भगवान राम का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बन रहा था तो विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया। संसद परिसर में जो नाटक किया गया उसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर पाल ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा ने बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 को मंजूरी दी। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस विधेयक को पारित कराने के लिए रखा। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने विधेयक पर संशोधन पेश करने के लिए विपक्षी सांसदों मनोज कुमार, एनके प्रेमचंदन, के सुरेश और कुछ अन्य के नाम पुकारे, हालांकि किसी ने संशोधन पेश नहीं किया। सदन के हंगामे के बीच ही इस विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका, हालांकि सरकार ने कई सदस्यों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि आरक्षित कोच वाली स्पेशल ट्रेन का किराया नियमित निर्धारित ट्रेन की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैष्णव का ये लिखित उत्तर कांग्रेस सांसद संजना जाटव द्वारा स्पेशल ट्रेन के किराया ढांचे और किराया निर्धारित करने के मानदंडों से जुड़े प्रश्नों के जवाब में आया।
सांसद ने ये भी पूछा था कि पिछले 3 वर्षों में कितनी स्पेशल ट्रेन को नियमित सेवाओं में बदला गया है तथा क्या हनुमानगढ़ जयपुर ट्रेन का किराया

0: उसी मार्ग पर चलने वाली अन्य नियमित ट्रेनों की तुलना में अधिक है। रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेल यात्रियों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसके तहत नई ट्रेन सेवाएं शुरू की जाती हैं, मौजूदा ट्रेन का विस्तार किया जाता है, उनके फेरे बढ़ाए जाते हैं तथा उनमें अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा ट्रेन सेवाओं में अतिरिक्त डिब्बे भी लगाए जाते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है जो परिचालन क्षमता, संसाधनों की उपलब्धता और अन्य प्रतिस्पर्धी आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। वैष्णव ने आगे कहा कि त्योहारों, विशेष आयोजनों और यात्रा के व्यस्त सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भारतीय रेल स्पेशल ट्रेनें चलाती है। बाद में यात्री मांग, व्यावसायिक औचित्य, परिचालन व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इन्हें नियमित सेवाओं में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि अप्रैल 2024-25 से लेकर जून 2026 तक भारतीय रेल ने 245 ट्रेन सेवाओं को नियमित किया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं और हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं के लिए रजनीगंधा कार्यक्रम का आज का ये अंक लेकर। कार्यक्रम के इस अंक में सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, जब बॉलीवुड के टॉप अभिनेत्रियों की बात होती है तो उनमें एक नाम काजोल का भी लिया जाता है। 6 फिल्म फेयर अवार्ड समेत अनेक अवार्ड अपने नाम करने वाली काजोल 3 दशक से भी ज़्यादा समय से इंडस्ट्री में सक्रिय है। फिल्मी घराने से आने वाली काजोल ने 17 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। काजोल ने अपने करियर में रोमांटिक किरदारों से लेकर नेगेटिव रोल तक और अब मां तक की भी भूमिकाएं निभाई हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त यानी आज ही के दिन 1974 को मुंबई में हुआ था। वे दिग्गज अभिनेत्री तनुजा और निर्माता निर्देशक सोम मुखर्जी की बेटी हैं। लीजेंडरी अभिनेत्री नूतन उनकी मौसी है। इनकी नानी शोभना समर्थ और पर नानी रतन भाई भी फिल्मी दुनिया से आती थीं। इस तरह काजोल की पृष्ठभूमि पूरी तरह से फिल्मी थी। श्रोताओं, बातें बॉलीवुड और फिल्मों की हों और साथ में फिल्मी गाने न हों तो बातों में कुछ अधूरापन सा लगता है। तो आइए सुनते चलते हैं अभिनेत्री काजोल की फिल्मों के गाने।

फिल्म अभिनेत्री काजोल ने अपने करियर की शुरुआत साल 1992 में बेखुदी फिल्म से की थी। अपनी पहली फिल्म के दौरान काजोल स्कूल में थी। उनके करियर की दूसरी फिल्म शाहरुख खान के साथ आई बाजीगर फिल्म थी। बाजीगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। इसके बाद उधार की जिंदगी, ये दिल लगी, हलचल और गुंडाराज जैसी फिल्मों में काजोल नजर आईं।

साल 1995 काजोल के करियर के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि इस साल काजोल को उनके करियर की सबसे बड़ी और यादगार फिल्म मिली। ये वो साल था जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म न सिर्फ उस साल की बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे यादगार फिल्म बनी। इस फिल्म के लिए काजोल को उनका पहला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसी साल काजोल के खाते में सलमान खान और शाहरुख खान की करण अर्जुन फिल्म भी हिट फिल्म के तौर पर शामिल हुई।

इसके बाद साल 1997 में काजोल रोमांटिक हीरोइन से सन की आशिक के नेगेटिव किरदार में उतर गईं और फिल्म गुप्त में नजर आईं। इस फिल्म में उनके अभिनय ने दर्शकों के होश उड़ा दिए और इतनी संवेदनशील अदायगी उनकी थी। इस फिल्म के लिए काजोल को बेस्ट नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। काजोल इस कैटेगरी में पुरस्कार जीतने वाली पहली और इकलौती अभिनेत्री है। इसी साल काजोल आमिर खान और अजय देवगन स्टारर फिल्म इश्क में जूही चावला के साथ नजर आई थी।

श्रोताओं, साल 1998 काजोल के करियर के लिए काफ़ी सफल रहा। इस साल काजोल ने कई हिट फिल्में दीं। इनमें प्यार किया तो डरना क्या, प्यार तो होना ही था, कुछ कुछ होता है और दुश्मन जैसी फिल्में शामिल हैं। कुछ कुछ होता है फिल्म के लिए काजोल को उनका दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। काजोल ने साल 1999 में अभिनेता अजय देवगन से विवाह किया। शादी के बाद उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं, लेकिन साल 2001 में आई करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम काफ़ी हिट रही और सराही गई।

साल 2001 के बाद काजोल ने फिल्मों से कुछ सालों के लिए ब्रेक ले लिया और वे अपने परिवार पर ध्यान देने लगी थीं। लगभग 5 साल के लंबे ब्रेक के बाद काजोल ने 2006 में आमिर खान के साथ फना फिल्म में फिल्मों में वापसी की। ये रोमांटिक थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और काजोल को इस फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 2010 में करण जौहर निर्देशित फिल्म माय नेम इज खान में शाहरुख खान के साथ नजर आईं। इस फिल्म के लिए काजोल को उनके करियर का 5वां बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। आइए सुनते हैं ये गीत फना फिल्म से।

रजनीगंधा कार्यक्रम के इस अंक के माध्यम से हम अभिनेत्री काजोल को उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और इसी के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार।
2: न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। ये विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
3: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
4: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय

0: मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
2: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में

0: आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
2: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश हैं।
0: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
3: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम ए इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।

0: और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहां उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी के एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहां भी ये जाके आए 8 लोग और वहां इनको लोकल एक स्पोर्ट मुहैया करवाई।
1: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नरेटिव यहाँ एक्सपोज करना चाहते हैं।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई 2 दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एलमुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रूपए पर बंद हुआ।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वली शेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल

0: Gangetic, West Bengal, Odisha, Madhya Maharashtra, Konkan and Goa tomorrow. The IMD has forecast heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Chhattisgarh, coastal Karnataka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharbamang, 7 Indians to enter second round of women's singles. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात 11 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे।
2: मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

0: की कहानी मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपके लिए।

मौसम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजों में। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम आपके लिए विविध भारती से।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस गीत में मौसम फिल्म से इसे लिया गया था। गुलजार ने इसे लिखा, मदन मोहन का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं संपन्न होता है।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

उनके अभिनय, उनकी खूबसूरती पर भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं। फिल्मी पर्दे पर इनकी अदाएं और अभिनय की तारीफ के लिए चांद सितारों के उपमान भी फीके पड़ जाते हैं।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्रियों में से एक हैं। उनके कुशल अभिनय के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था।

काजोल को अभिनय की तालीम तो विरासत में मिली। काजोल की नानी शोभना समर्थ मूक फिल्मों के जमाने से समर्थ अभिनेत्री थीं। बाद के दिनों में उन्होंने कई सशक्त फिल्मों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। शोभना समर्थ की दोनों बेटियां तनुजा और नूतन अपने अभिनय कौशल में माहिर थीं और उन्होंने अपने अभिनय कौशल से लोगों को मोहित किया। माँ तनुजा और मौसी नूतन से काजोल को अभिनय की बारीकियां खुद ब खुद सीखने को मिल गईं।

काजोल की नानी, उनकी माँ और मौसी तो फिल्मी दुनिया की विशिष्ट अदाकारा तो थी ही। उनके चाचा जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी गजब के कलाकार थे। उनके खानदान में और भी एक्टर्स थे, रानी मुखर्जी, मुनीश बहल, ये जवानी है दीवानी जैसी फिल्म बनाने वाले अयान मुखर्जी। परिवार में इतने सारे फिल्मी कलाकारों का जमावड़ा। फिल्मी परिवार के बीच बड़ी चुलबुली और शरारती सी काजोल पढ़ाई में अपना मन लगा रही थी। दोस्तों, काजोल के माता पिता ने पहाड़ों के गोद में बसी जगह पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें दाखिला दिलवा दिया, जहां उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। लेकिन कॉलेज के दिनों में ही उन्हें अभिनय का चस्का लग गया। पढ़ाई के दिनों में ही काजोल को साहित्य में गहरी दिलचस्पी थी। वे साहित्यिक किताबें पढ़ती थीं और बहुत सारी कहानियां पढ़ती थीं। एक बार वे कॉलेज से, पंचगनी से मुंबई आई। वहां राहुल रवेल की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। वहां उन्होंने कैमरे के सामने कुछ परफॉर्म किया। बस वहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 1992 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म बेखुदी में उन्हें एक बड़ा ही सुंदर किरदार मिल गया निभाने के लिए।

और उनके साथ थे नवोदित अभिनेता कमल सदाना और उनकी माँ तनुजा भी इस फिल्म में साथ थीं। काजोल ने इस फिल्म में राधिका का किरदार निभाया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास साबित नहीं हुई, लेकिन काजोल के अभिनय की बहुत बहुत सराहना हुई। और उसके बाद अब्बास मस्तान की क्राइम थ्रिलर फिल्म बाजीगर में उन्हें रोल मिला, जिसमें उनके साथी कलाकार थे शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी।

अभिनय की बारीकियों के कारण काजल को बहुत जल्द बेहतरीन रोल मिलने लगे और काजोल ने अभिनय की चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर दिया और खुद को साबित किया। काजोल ने यूं तो बहुत सारे कलाकारों के साथ काम करके अपने अभिनय का जलवा दिखाया, लेकिन शाहरुख खान के साथ उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी।

सन 1995 में शाहरुख खान के साथ एक बेमिसाल शानदार और जबरदस्त हिट फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में इतिहास का एक खास पन्ना लिख दिया। एक सिनेमा घर में 1000 हफ्ते से भी ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बनाया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म ने।

रोमांटिक सिनेमा घर में आप अभी भी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म देख सकते हैं। सन 1998 में शाहरुख खान के साथ काजोल की एक और हिट फिल्म आई कुछ कुछ होता है।

शाहरुख खान और काजोल की एक और हिट फिल्म आई माय नेम इज खान। दोस्तों काजोल ने सिर्फ बेस्ट हीरोइन का ही रोल नहीं किया बल्कि नेगेटिव रोल में भी काजोल बेस्ट एक्ट्रेस कहलाई। उन्होंने फिल्म गुप्त में रोल किया नेगेटिव लेकिन रिजल्ट रहा पॉजिटिव। इस तरह काजोल ने साबित कर दिया कि काजोल हीरोइन का रोल करें या खलनायिका का रोल करें रहेंगी वे उत्कृष्ट अदाकारा।

0: हर लड़की के जीवन में एक रोज एक राजकुमार आता है। वो राजकुमार उसके सपनों में नए रंग भरता है। काजोल के फिल्मी करियर और निजी जिंदगी के हीरो बने अजय देवगन।
1: देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए।
0: अजय देवगन के साथ काजोल ने कुछ बेमिसाल फिल्में दी। ये फिल्म है इश्क।

फिल्म दिल क्या करे। इस फिल्म में उनके साथ थे अजय देवगन। 1994 में आई फिल्म हलचल में काजोल ने शर्मिली सिन्हा की भूमिका निभाई थी। सन 1998 में फिल्म आई थी प्यार तो होना ही था, जिसमें काजोल ने संजना पटेल का किरदार अदा किया था।

राजू चाचा, गुंडा राज और यूमी और हम अजय देवगन के साथ ये हिट फिल्में काजोल ने दी। फिल्म यूमी और हम में काजोल अल्जाइमर्स नाम की बीमारी से ग्रसित होती हैं। अजय देवगन के साथ ये एक मार्मिक फिल्म थी।

सन 2006 में काजोल की फिल्म आमिर खान के साथ आई थी। फिल्म थी फना, जिसमें उन्होंने एक नेत्रहीन कश्मीरी लड़की की भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि इस फिल्म में ऋषि कपूर पर्दे पर नजर आए थे।

आमिर खान के साथ कुछ फिल्में और की थी काजोल ने, जैसे फिल्म इश्क। हालांकि फिल्म इश्क में आमिर खान के साथ थी जूही चावला। काजोल की बेहद कमर्शियल फिल्म आई थी हम आपके दिल में रहते हैं। इस फिल्म में काजोल के साथ पर्दे पर नजर आए थे अनिल कपूर।

काजोल बनी थी मेघा वर्मा। सन 2000 में आई फिल्म राजू चाचा। सन 2001 में फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी। मुझ में

0: कुछ कुछ मीठी।
1: दोस्तों, काजोल को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए 6 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1996 में काजोल को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

सन 1999 में फिल्म कुछ कुछ होता है के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड। सन 2002 में कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए मिला काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर। अभिनेता थे शाहरुख खान। सन 2007 में आमिर खान के साथ काजोल की फिल्म आई फना, जिसके लिए मिला उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 2011 में फिल्म मायने मिस खान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म में अभिनेता थे शाहरुख खान।

सैफ अली खान के साथ काजोल की एक और फिल्म आई थी ये दिल्लगी, जिसमें साथ में अक्षय कुमार भी थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म आई थी काजोल के फिल्मी करियर की सन 1998 में दुश्मन, जो बदला लेने वाले की भूमिका निभाने के लिए उनकी बड़ी प्रशंसा हुई थी।

काजोल के फिल्मी करियर की एक बड़ी बेहतरीन फिल्म आई थी तानाजी, जिसमें अजय देवगन बने थे तानाजी मालूसरे, काजोल बनी थी सावित्री बाई और सैफ अली बने थे उदय भानु सिंह राठौड़। बहुत सारे फिल्मी

काजोल की अभिनय यात्रा आज भी जारी है। सन 2015 में उनकी एक कॉमेडी फिल्म आई थी, दिलवाले। फिल्म खूब चली थी।

सन 2021 में आई फिल्म त्रिभंगा, इसके बाद सन 2022 में आई फिल्म सलाम वेंकी। काजोल ने कुछ वेब सीरीज भी की, जैसे कि दी ट्रायल। काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए। वे कहीं चुलबुली लड़की के रूप में पर्दे पर नजर आईं, कहीं गंभीर स्त्री, तो कहीं बेहद रूमानी प्रेमिका या पत्नी।

फिल्मों में अभिनय के अलावा काजोल एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और विधवाओं और बच्चों के साथ अपने काम के लिए वे काफी चर्चित हैं। काजोल ने सन 2008 में कुछ रियलिटी शोज भी किए जिसमें एक टैलेंट जज के रूप में भी उन्होंने काम किया।

0: काजोल का फिल्मी करियर काफी विराट है। उनके पूरे करियर को समेटकर सारी फिल्मों का जिक्र करना एक कार्यक्रम में संभव नहीं है। आज बस इतना ही।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री काजोल पर।
1: जाती हूँ मैं,
2: जल्दी है क्या,
1: धड़के जिया
2: वो क्यों भला।
0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: आज के फनकार।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन एक अधूरी कविता सा है ना? ये अधूरापन मन को सालता है, लेकिन लगातार आपका पीछा करता रहता है। कुछ लफ्ज अधूरे रह जाते हैं, कुछ ख्वाब, कुछ सपने, तो कभी कुछ मुलाकातें भी। हाँ, कुछ इश्क अधूरा रह जाता है, और तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं। हाँ, तब कुछ आप अधूरे रह जाते हैं।

जब मेरी किताब छपेगी ना तो लोग पढ़ेंगे तुम्हारी हंसी की कहानियां, तुम्हारी नाराजगी के किस्से, तुम्हारी बेरुखी की दर्दनाक गाथाएं और हाँ तुम्हारी बेवफाई भी। पर कोई नहीं पढ़ पाएगा मेरा वो खालीपन, वो अधूरापन जिसे मैं हर पल महसूस करती हूँ तुम्हारी भी।

कभी रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो रही होती है, तब अधूरी कहानियां जेहन में तैरने लगती हैं। कहते हैं अधूरी मोहब्बत पूरी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी होती है। शायद इसीलिए अधूरी कहानियां जिंदगी की किताब में सबसे गहरी लकीर छोड़ जाती है।

इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती, वे टुकड़ों में मौजूद होती हैं। एक वाक्य अधूरा छूट जाता है, एक कथानक छूट जाता है और कभी कभी एक नोटबुक अधूरे विचारों से भर जाती है। हाँ, हमें सिखाया जाता है कि हर कहानी का अंत होना चाहिए, पात्रों को अपने अंत तक पहुंचना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। ये पात्र अपने अधूरेपन के साथ पड़े रहते हैं, चुपचाप किसी कागज के कोने में, दिनों, महीनों और कभी कभी तो जीवन भर।

कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, हाँ जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस। कोई बिसरी हुई अधूरी याद मुलाकात, चरागाह में खो गई गाय है, जो रास्ता तलाशती हुई एक दिन आ जाती है वापस, और बंद दरवाजों के बाहर रंभाती है। पर धीरे धीरे ये रंभाना सुनाई नहीं देता है। अपने अधूरे होने का एहसास या अधूरेपन का दर्प जिद्दी बना देता है मन को, तब मन टस से मस नहीं होता अपनी जगह से।

आज जब किताबों की अलमारी खोली तो सामने आई किताब गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का ये उपन्यास हमने मिलकर पढ़ा था, याद है?

कहाँ याद होगा। हाँ, आज फिर एक बार उस अधूरे प्रेम के लिए दिल भारी हो गया है। इश्क का वो पहला खत कभी फाड़ा नहीं गया मुझसे। वो प्रेम, वो जुड़ाव, वो बेबसी हर शब्द जैसे आज भी सांस ले रहा है। अपनी अधूरी प्रेम कहानी की याद दिलाता है ये खत। और हाँ, तब मन को समझा लेती हूँ ये सोचकर कि हम सब अधूरे होते हैं एक आस में। हाँ, हम सभी तो अधूरे होते हैं एक आस में।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है।

0: के 11 बजे हैं। कुछ क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: वाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
3: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा, तो नागरिक तो वहां खुश है।
2: विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू होने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
4: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
2: मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए आज भारत सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मुंबई उच्च न्यायालय ने मेटा एक्सकॉर्प तथा गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। तथाकथित यौमे इस्ते सहल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले 12 रैट माइनिंग श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे का बचाव अभियान हाल के वर्षों के सबसे कठिन अभियानों में से एक था। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया।

0: India enjoyed a mixed day at the Korea Masters badminton tournament in Asan, with seven players advancing to the second round of women's singles, while all six men's singles players crashed out in the opening round. In the women's singles, Anmol Kher, Tanvi Sharma, Mansi Singh, Rakshita, Ramraj, Ashmita Chaliha, Isha Rani Barua and Shreyansi Valishetty progressed to the second round with impressive victories. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का सायंकालीन प्रसारण संपन्न होता है। कल सुबह के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 5:55 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।